0: हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
1: हम टाइम चेक, हम न्यूज, ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
2: Good afternoon, I'm KM Adams with the latest at midday. National has unveiled extended paid parental leave as an election promise, pledging to extend leave from 26 to 30 weeks over the next 3 years. Leader Christopher Luxon says they will also address the issue of parents having to stop KiwiSaver contributions.
3: From the 1st of July next year, the government will make a contribution to a parent's KiwiSaver while they're on paid parental leave at the default rate, even if they're not contributing themselves.
2: One person is dead and 17 injured after a vehicle was driven into a crowd at a pride event in Berlin. In a social media post, Berlin police say a manhunt is underway for the driver of a white vehicle. The government hopes a new AI biosecurity tool could be a boon for the industry. It's currently being trialled in an attempt to modernise the import health standard process. But the Greens want a one-year moratorium on new AI data centres to allow intentional regulations to be developed. Co-leader Chloe Swarbrick says currently data centres can be consented to behind closed doors with no community input. A US congresswoman is demanding that Barron Trump testify about his relationship with Andrew Tate. Democrat Yasemin Ansari is pointing to reports of extensive communications between Donald Trump's youngest son and the controversial influencer recently arrested in Florida. New Zealand's newest Commonwealth Games medalist is overwhelmed by the feat she achieved this morning. Hazel Auerhand won her first medal of the Games, a bronze in the 50 metres butterfly, and she couldn't hide her emotions on Sky Sport.
4: 20 years for a medal, so I'm really, really happy.
2: Former boxing heavyweight champion Anthony Joshua secures a second round knockout in his comeback fight against Christian Pringer. The win now sets up a showdown between Joshua and Tyson Fury.
1: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
5: Hum par shok suchnaye aap tak late hai, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
6: सूचित किया जाता है कि वैसारूबा फिजी के स्वर्गीय नगैया नायडू के पुत्र हेमलता बेन मूर्ति के पति मनोज कुमार और एनजेड की पूनम सिंह के पिता सदापिल्ले केशवन चिन्नैया और चंद्रकांता के भाई सेंगा रियलिटी के कृष्णामूर्ति की मृत्यु मिडल मोह हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज शाम 3 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइड क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0827-0312 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि वैसारूबा फिजी के स्वर्गीय नगैया नायडू के पुत्र हेमलता बेन मूर्ति के पति मनोज कुमार और एनजेड की पूनम सिंह के पिता सदापिल्ले केशवन चिन्नैया और चंद्रकांता के भाई सेंगा रियल्टी के कृष्णमूर्ति की मृत्यु मिडल मोह हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज शाम 3 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0827-0312 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि रावी रावी बा फिजी के स्वर्गीय अर्मोगम रेड्डी की पुत्री सिमला लोटोका फिजी के स्वर्गीय यंकटेश परमाल अर्जुन सामी की पत्नी पापटोय के अरविंद सामी की मां शेख मनोर सामी की मृत्यु मिडल मोह हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार मंडे 27 जुलाई को 11 बजे सुबह एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0437-348 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि रावी रावी बा फिजी के स्वर्गीय आर्मोगम रेड्डी की पुत्री सिमला लोटोका फिजी के स्वर्गीय यंकटेश परमाल अर्जुन सामी की पत्नी पापटोय के अरविंद सामी की मां शेख मनोर सामी की मृत्यु मिडल मोह हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार मंडे 27 जुलाई को 11 AM एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0437-348 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि शेरोन संजेश और शिमल कुमार के पिता सुशीलावती कुमार के पति साम्बेतो नेंडी फिजी के भूतपूर्व निवासी वेली कॉन्क्रीट लेयस के सत्येंद्र कुमार उर्फ बादू की मृत्यु मिडलमो हॉस्पिटल में हो गई। दर्शन के लिए आप आज शाम 6 PM to 7 PM एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी जा सकते हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार सोमवार मंडे 27 जुलाई को 3:30 PM किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0244-5080 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि शेरोन संजेश और शिमल कुमार के पिता सुशीलावती कुमार के पति साम्बेतो नेंडी फिजी के भूतपूर्व निवासी वेली कॉन्क्रीट लेयस के सत्येंद्र कुमार उर्फ बादू की मृत्यु मिडलमो हॉस्पिटल में हो गई। दर्शन के लिए आज आप शाम 6 PM से लेकर 7 PM तक एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी जा सकते हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार सोमवार मंडे 27 जुलाई को 3:30 PM किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0244-5080 पर कॉल कर सकते हैं।
5: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
7: Playing Bollywood's biggest hits. Just chill.
1: You're listening to Avineet.
6: क्या रहा बुला सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ अवि, जुड़ गया हूँ आपके साथ में। जबकि आज है संडे 26th of July, ऐसे में जस्ट चिल का कारवा लेकर आया हूँ आपके लिए ओनली ऑन योर फेवरेट डाल हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। मैं अभी आपका साथ देता रहूंगा अभी से लेकर 6 तक, और जबकि जस्ट चिल का प्रोग्राम है तो बिल्कुल आपके साथ में कुछ गपशप रहेंगी, कुछ अपनी कहेंगे और कुछ आपकी भी सुनेंगे। इसके साथ साथ आपकी सुनने के लिए 5599 पर आपका टेक्स्ट आना ज़रूरी है, और इसके अलावा 800-004-866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और कुछ करंट अफेयर्स, कुछ न्यूज़ की जो झलकियां हैं आपके साथ में बांटता रहूंगा। ये सभी कुछ रहेगा आज आपके साथ में, जबकि बाहर CBD में मौसम बिल्कुल क्लाउडी है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और एक नज़र मौसम पे भी डालेंगे ताकि पता तो चले कि आने वाला सप्ताह जो वीक है कैसा रहेगा। ये सभी कुछ हमारे साथ में औसम अभी के साथ में आपका साथ देता रहूंगा इसी तरह से। बस आप भी साथ देने का वादा करिए और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं इस गाने के साथ में, जबकि इश्क जलाकर स्टूडियोज आया हूँ आपके साथ।

हम पर एक ब्यूटीफुल नंबर जिसे निभाया है अरिजीत सिंह और साथ में पलक मूछल ने, जबकि आज है जस्ट चिल का प्रोग्राम, तो ऐसे में चिल करने वाले गाने ही आपके लिए लेकर आएंगे और बीच बीच में कुछ स्पाइसअप भी करेंगे। मौसम को देखते हुए आपको बता दें, जो मेट सर्विसेज ने फोरकास्ट किया है शावर्स सम हेवी और इसके साथ में शायद बाद में चलकर आफ्टरनून में थोड़ा सा क्लियर होगा और इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म्स का भी सामना करना पड़ेगा अंटिल लेट आफ्टरनून। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आज कई जो ओवरनाइट मिनिमम टेम्परेचर रहेगी एट अ वेरी कोल्ड 3 degrees तक ये ड्रॉप हो सकती है, सनसेट एट 5:32 PM टुनाइट। तो ये सभी कुछ आपके लिए है और नेशनली अगर जो देखें तो काफ़ी जगहों पर बताया जाता है, खासकर कायटाया फांगरे में जो बारिश है काफ़ी ज़ोरों से हो सकती है, ऑकलैंड में शायद थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा और साउथ आइलैंड में देखें तो क्वींसटाउन, टिमरू साथ में डनीडन के लिए और सनशाइन फोरकास्ट किया गया है। तो साउथ आइलैंड के लिए एक ब्यूटीफुल वेदर मौसम है, लेकिन नॉर्थ आइलैंड के लिए जनरली एक मिक्स्ड डे सा रहेगा और ऑकलैंड के लिए कि जैसा कि हमने कहा है आज रात का जो मिनिमम टेम्परेचर है एट अ वेरी कोल्ड 3 degrees तक ये ड्रॉप हो सकता है। ये सभी कुछ हमारे साथ में है ऑन जस्ट चिल। और आपको बता दें फेसबुक पेज पर, हम के फेसबुक पेज पर आपके लिए हमने एक बहुत ही प्यारा सा एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड किया है, आप भी इसे जाकर चेकआउट करें और अपना जो ओपिनियन है कमेंट्स के सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखिए और उसको लेकर इतना ही आपसे बताएंगे कि कुछ लोगों की कुछ हैबिट्स होती है जो कहीं ना कहीं दूसरों को अनोए कर देती है। तो आप इस वीडियो को चेकआउट करके जो हैबिट आपको बुरी लगती है और आपको अनोय कर देती है इसके बारे में आप अपना जो कमेंट है फेसबुक पेज पर हमारे लिख सकते हैं।

0: Media.
1: Streaming on Rover.
2: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
3: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals, plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7, Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel, and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
6: Is your marketing budget feeling the squeeze? You need marketing assets that keep delivering. Great Signage does exactly that. Speedy Signs creates bold, professional signs that draw attention and reinforce your brand every single day. From sharp shop fronts to standout vehicle graphics, they make sure your business gets seen. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
7: Bollywood ke sabse bade hit gaane
8: kabhi bhi kahi bhi mast malang jo.
9: हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अभी आपके साथ में, और जो लेटेस्ट न्यूज़ कल रात का है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। कल एक एक्सीडेंट हुआ स्टेट हाईवे 1 पर, जहां पर ईस्ट तमाकी के ओफ्रेम के आसपास एक एक्सीडेंट हुई और यहां पर एक व्यक्ति की जान चली गई, और पुलिस ने कन्फर्म किया था जो व्हीकल इन्वॉल्व थी इस रोड एक्सीडेंट में, एक सिंगल सोल ऑक्यूपेंट था गाड़ी में, और इस क्रैश के बाद में जो मोटरवे है इसको भी बंद किया गया था साउथ बाउंड ट्रैफिक के लिए, और फिर जो व्यक्ति है उसको फिर बाद में उन्होंने अपने जान भी खो दी। तो ये कुछ कल रात से, ऐसे में ज़रूरी है कि जबकि आज बारिश का मौसम है और रास्ते पर भी आप जब ड्राइव कर रहे हो तो सावधानी बरतिएगा, बी सेफ आउट देयर। और इसके साथ में जो मंगनुई से एक न्यूज़ आई है कि स्टफ ने रिपोर्ट किया है ओवर द वीकेंड माउंट मंगनुई जो कैंप साइट, आपको याद होगा एक इंसिडेंट पहले हुई थी जहां पर एक मेन लैंडस्लाइड हुई थी जहां पर कुछ लोगों ने अपने जान को खो दिया था, ऐसा ही एक रीएक्टिवेशन हुआ है जो ओवर द वीकेंड रिपोर्ट किया गया है। और यहां पर चलते हुए कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि एक्सेस रिटेन किया जाए रेसिडेंस के लिए, और कुछ अलग अल्टरनेट पाथ्स भी बनाए गए हैं ताकि लोग इस खतरे से बाहर या दूर रहें। तो ये सभी कुछ न्यूज़ है। और अलग एक न्यूज़ आया है, जबकि तारानाकी में पुलिस ने कुछ 50 इन्फ्रिजमेंट नोटिसेस इशू किए हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया है और 3 गाड़ी को इम्पाउंड किया है अलॉन्ग विद अ मोटरसाइकिल फॉर डेंजरस ड्राइविंग। ये सभी कुछ हुआ एक स्ट्रीट रेसर क्रैकडाउन ऑपरेशन के तहत, जहाँ पर पुलिस ने ऐसे सख्त कदम उठाए हैं। और यहाँ पर ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी को भी कुछ क्षति पहुँचाई गई। तो ये सभी कुछ हुआ तारानाकी में। और इसके अलावा एक ये भी इंटरेस्टिंग और गुड न्यूज़ ये है कि जो लोटो का $40 million प्राइज मनी है, इसे किसी दो लोगों ने जीत लिया है। $20 million तक यह प्राइस शेयर होगा, जबकि जो रिपोर्ट से कुछ ऐसी आई है कि दोनों विनर्स ओकलैंड से ही है। इस पर और भी जानकारी बस थोड़ी देर में। क्या आपने अपने नंबर्स मिला लिए हैं? चेक कर लीजिए, शायद कल आपको काम पर नहीं जाना पड़ेगा।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: जश्न में आप हमारा साथ दे रहे हैं और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और द सेंसेशनल करण औजला आ रहे हैं आपके लिए पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर ओकलैंड और इनको देखना काफ़ी लोगों की ख्वाहिश होती है जबकि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग आर्टिस्ट और इनकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पर है तो अगर जो आपको टिकट्स चाहिए तो आप जाकर hum.rova.nz पर ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अलावा livenation.co.nz पर भी आप जाकर और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और ये बता दें कि इनका जो कॉन्सर्ट है 25th ऑफ अगस्त को रहेगा लेस देन अ मंथ अवे नाउ एट द स्पार्क अरीना और इनके साथ में रहेंगे स्पेशल गेस्ट इकी और यहाँ पर आप जाकर जितने भी फैंस हैं करण औजला के आप जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं हाँ लेकिन अभी के लिए आप को डबल पासेस जीतने हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान कर देंगे आपको सिर्फ इतना ही करना होगा अपने फेवरेट करण औजला का जो भी गाना आपको पसंद है जो आप हम पर रेडियो पर सुनते हैं या फिर स्पॉटिफाई पर सुनते हैं आपको जो भी पसंद है आप उस गाने को लिखें और उससे पहले लेटर्स के और ए लिखें और फिर अपने फेवरेट गाने को लिखें और 5599 पर अपने नाम के साथ में मैसेज कर दें तो इतना ही करके आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा जहां आपके हाथ अगर जो आप लकी हुए डबल पासेस लग सकते हैं तो ये सभी कुछ आपके साथ में है और हाँ जैसे कि आप अपना फ़ोन उठा रहे हैं ये मैसेज करने के लिए उसी समय हम फेसबुक पेज पर जाइए जहां पर हमने अपना वीडियो अपलोड किया है टॉकिंग अबाउट ऐसे ट्रेड्स ऐसे हैबिट्स जो आपको अनोय करते हैं तो यहाँ पर इस फेसबुक पेज पर अभी तक आहुति और साथ में श्रुति ने अपने अपने कमेंट्स अपलोड किए हैं आपसे एंगेज करना चाहते हैं इसीलिए तो वीडियो बनाते हैं हम फेसबुक पेज पर तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप जाकर पार्टिसिपेट करें अपना जो कमेंट्स है ये भी अपलोड करें जैसे कि हमने कहा कि करण औजला का जो फेवरेट गाना है आपको भेजना है 5599 पर तो रोशनी ने भेज दिया है तोबा तोबा लिखकर तो दैट्स प्रिटी गुड आप काफ़ी क्विक हो तो इसी तरह से हम फेसबुक पेज पर जाकर वो पोस्ट भी चेकआउट कीजिए जिसे अपलोड किया है और हाँ अभी भी समय है आप अपने जो फेवरेट करण औजला सॉन्ग्स है आप टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर के लिखे और अपने नाम के साथ में एंड एट द सेम टाइम हम फेसबुक पेज पर हेड कीजिए और वीडियो चेकआउट कीजिए अपना प्यार दीजिएगा मैं हूँ अभी आपके साथ में टिल 6

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
2: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
3: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats? Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. Hamari good brands here.
6: Just chill.
7: जस्टिल में मैं हूं अभी आपके साथ में। और अगर जो आप कोई स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, 5599 इज़ द नंबर, यहां पर आप हमारे पास में अपने प्यारा से मैसेज भेज सकते हैं और वी विल गिव यू अ शाउट आउट।

0: हाउस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90, or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
3: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox, in a dash. Now that's a good call.

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूँ अवि, आपका साथी, आपका साथ दे रहा हूँ हम पर, लेकर आया हूँ जस्ट चिल, जबकि हमारे स्टूडियोज में 1 बज रहे हैं। आपको बता दें, शाम को 3 बजे, शायद आपने सुना नहीं या फिर मिस आउट कर दिया होगा, ओकलैंड FC साथ में इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो टीम है टोटनहम हॉटस्पर, इनके बीच में एक फ्रेंडली होगा, फ्रेंडली मैच एट ईडन पार्क आज शाम को 3 बजे। और इसके अलावा अगर जो अभी भी आप मन बना रहे हैं देखने के लिए, सो देयर आर सम टिकट्स अवेलेबल, अगर जो आप चाहते हैं, शायद ये एक ऐसा मौका रहे जहां पर आप एक इंग्लिश प्रीमियर लीग के फुटबॉल क्लब को लाइव देख सकें, तो ये सभी कुछ चांस है आपके पास में, जबकि ये इवेंट आज शाम 3 पर रहेगा। और इस आवा की शुरुआत करते हैं राहत फ़तेह अली खान के साथ में, जबकि इस इनका जो इवेंट था जो कल हुआ, इसको हमने हम पर प्रमोट किया आपके साथ में, और इट वाज अ फुल हाउस इवेंट, लेकिन जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, और ख़ासकर जब ये गाना इन्होंने गाया तो द क्राउड वेंट वाइल्ड।

हम पर 1:18 हुए हैं और याद रहे स्ट्रेट आफ्टर 2 आपके लिए रहेगा एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जिसे बहुत प्यार से हम रिसर्च करके आपके लिए लेकर आते हैं। इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है और आज का जो चैलेंज है बिल्कुल डिफिकल्ट होने वाला है, मैं अभी से आपको बता दूं, क्योंकि शायद ये जो गाना है या जो फिल्म से हमने लिया है इस गाने को, काफ़ी लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि ये 80s के ईरे की फिल्म है जिसे ये गाना हमने लिया है। और बेस्ड ऑन क्लूज ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा आपको फिगर आउट करने के लिए स्ट्रेट आफ्टर 2। लेकिन इन द मीन टाइम आपको भी कुछ सुनना है अलग, तो 5599 पर आप अपने रिक्वेस्ट डेडिकेशंस हमारे पास में भेज सकते हैं।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Savers. Conditions apply.
5: It's the final days of game-winning savings at Rebel. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store-wide. Don't get left on the sidelines. Deals end Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
6: Branchy Group, Tree Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Mali ne prastut kare chhe Raj Ghadri live in Auckland.
7: Hey, hello, bhai, hello, hello.
6: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજગઢવી, સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
8: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
9: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
10: Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dia heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
11: Non-stop Bollywood.
12: Hum.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
13: Just chill.
14: That's right, ये है Just Chill with Avi और अब समय हुआ आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव करने का. एक सवाल है आपके साथ पूछने को, जो शायद कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करेगा. तो क्वेश्चन ये है, जी के जैसा कुछ सवाल है, सॉरी फॉर देट, लेकिन सवाल है तो हमने कहा आपसे पूछ ही लेते हैं. ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाय लो न्यूजीलैंड के पास में 2 है, इंडिया के पास में 1 है और रशिया के पास में 11 है. तो सोचिएगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाय लो न्यूजीलैंड के पास में 2 है, इंडिया के पास में 1 है और रशिया के पास में 11 है. क्या आपको जवाब मालूम है? 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट करें अपना जवाब को और अपने नाम के साथ में.
15: घड़ी

चिल। जस्ट चिल में मैं हूं अभी और लगता है हमने आपको परेशान कर दिया। ये सवाल जो हमने आपसे पूछा है अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है और सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं आपके लिए। बायलो न्यूजीलैंड के पास में दो है, इंडिया के पास में एक है और रशिया के पास में 11 है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो रशिया के पास 11 है, इंडिया के पास एक है और न्यूजीलैंड के पास बायलो दो है? इसका ही जवाब आपको देना है। जबकि 1:30 बज रहे हैं, ऐसे में थोड़ी देर में आपके साथ में जवाब शेयर करेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम 5599 पर आप अपने जो जवाब है हमारे पास में सेंड कर सकते हैं।

0: आपको हम पर जस्ट चिल में क्लू दे देता हूँ कि ये जो चीज़ है जो रशा के पास 11 है, इसे सभी को फॉलो करना पड़ता है। और अब की बार कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमसे, इस गीत को लिया है सुदेश भोसले की आवाज़ में, और चलो इसे भी एंजॉय करते हैं जबकि कुछ 25 मिनट्स बाकी है 2:02 पर आपके लिए रहेगा समाचार भी।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक।

और यही कहानी हम पर हमारी है, एक दूसरे के लिए बेकरार। हम 104.2 FM साथ में रोवा पर, मैं हूं अभी आपके साथ में। और जो सवाल किया था, एक ही जवाब आया, 64726। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया। हम बातें कर रहे थे टाइम जोन की, और जबकि टाइम जोन के बारे में बात हो रही थी, अभी तक मेरा ये ख्याल था कि इंडिया के पास में भी एक से ज़्यादा होगा कंसीडरिंग उसका लेन में साइज़। लेकिन इंडिया हैज़ ओनली वन ऑफिशियल टाइम जोन, जिसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, और देट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। इसके साथ में न्यूजीलैंड के लिए जो दो टाइम जोन्स है, न्यूजीलैंड खुद UTC+12 पर चलती है स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन चैटम आइलैंड्स के लिए बताया गया है चैटम स्टैंडर्ड टाइम है, तो इसीलिए दो टाइम जोन हुए न्यूजीलैंड के लिए, जबकि पूरी की पूरी न्यूजीलैंड अपार्ट फ्रॉम चैटम आइलैंड्स कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम फॉलो करती है UTC। इसके साथ में रशिया के पास में 11 टाइम जोन्स है, और बिकॉज इसकी जो लेन साइज़ है काफ़ी मैसिव ईस्ट वेस्ट साइज़ है, स्ट्रेचिंग ओवर 10,000 किलोमीटर्स अक्रॉस यूरोप और एशिया, इसी कारण से इनके पास में 11 टाइम जोन्स है। तो ये थी कुछ बातें आपके साथ में, और 64726, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने ढूंढा, और चलो कुछ हमें भी आज नया पता लगा, मालूम हुआ।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर हमारे स्टूडियोज में 2:02 हो रहे हैं और अब समय हुआ आपके साथ में खेले एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहां पर वीकली बेसिस पर आपके लिए एक नया चैलेंज लेकर आते हैं एक गाने के फॉर्म में। और लास्ट वीक इस कंपटीशन को जीता था दिवनेश आनंद ने, जबकि उन्होंने गेस किया था 3 Idiots से ऑल इज वेल के गाने को। तो आज एक और एक नया इंटरेस्टिंग और यूँ कहें कि थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है, क्योंकि ये फिल्म जो हमने चूज़ किया है और साथ में जो गाना है ये कुछ रिलीज़ हुई थी 1980s, यूँ कहें लेट 80s में, तो शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। लेकिन जो भी हो, खेल बड़ा आसान और साथ में मज़ेदार है, जबकि आपको यहाँ से क्लूज बताते रहेंगे और उन्हीं क्लूज के बेसिस ट्रिविया पर बेस्ड आपको फिगर आउट करना है कि किस गाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जैसे ही आप फिगर आउट करें अपने जवाब को, उस गाने को, अगर जो आप फिल्म का नाम लिखते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन गाने को आप लिखकर 5599 पर मैसेज करें और जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है और अपना जवाब भेजता है वही उस वीक यानी कि इस वीक के कंपटीशन का विजेता हो जाता है। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग और साथ दीजिएगा, खेलते रहिएगा, सुनते रहिएगा थोड़ा ध्यान से। एंड हियर इट गोज़। आज का चैलेंज इंटरेस्टिंग है जैसे कि हमने कहा है, क्योंकि ये फिल्म 1988 में आई थी और ये फिल्म जो है इसको डायरेक्ट किया था एन चंद्रा। इट वाज अ एन चंद्रा प्रेजेंटेशन। रिलीज़ होने पर ये फिल्म 50 वीक्स तक सिनेमाज में चली थी। उन दिनों ये फिल्म की सक्सेस नापने की एक बेरोमीटर या क्राइटेरिया थी, जहां पर कितने दिन फिल्म सिनेमाज में चलती है उसकी बेसिस पर आपको पता लग जाता था कि लोगों ने फिल्म को कितना पसंद किया है और कितनी कमाई बॉक्स ऑफिस पर हुई है। एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म ये रही और वन ऑफ द एलियस्ट मूवीज जहां पर आपने लीड पेज अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को साथ में एक बार देखा। और इस फिल्म के रेजिंग सक्सेस के बाद ये जो हिट पे आया है, इन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ काम किया, यानी कि ये जो जोड़ी है काफ़ी बार रिपीट की गई फिल्मों में। सपोर्टिंग कास्ट में चंकी पांडे, साथ में अनुपम खेर, अनु कपूर और जोनी लीवा जैसे आर्टिस्ट थे। फिल्म की प्लॉट, अनुपम खेर प्ले करते हैं मोहिनी, ये आपका पहला क्लू। मोहिनी के फादर प्ले करते हैं जो एक शराबी और जुआरी है, जिसके कारण मोहिनी यानी कि माधुरी दीक्षित को स्टेज शोज करने पड़ते हैं। ऐसे ही फिल्म की शुरुआत में आज का जो गाना है वो एक स्टेज शो में फीचर होती है। आपका पहला क्लू गाने से पहले ये है कि क्राउड जोरों से चिल्लाती है मोहिनी मोहिनी और ये कहकर उनको चिया करती है। इस गाने के बाद, ठीक गाने के बाद फिल्म में किरण कुमार का जो करेक्टर है मोहिनी को किडनैप कर लेता है। और आपको अगर जो पता लग रहा है कि किस गाने के बारे में बात हो रही है तो अपना जो जवाब है 5599 पर भेजें। अनिल कपूर नज़र आते हैं एस महेश देशमुख, अ यंग कैडेट ऑफिसर जो बाद में अपने पेरेंट्स की डेथ की वजह से मुन्ना एक हार्डन्ड क्रिमिनल बन जाते हैं। तड़ी पार भी है और कैसे वो मोहिनी को इस विशियस साइकिल से अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मिलकर बचाते हैं, बस इतनी सी स्टोरी है। वापस गाने पर आते हैं, इसको म्यूजिक से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर ने। जावेद अख्तर ने अभी हाल में बताया कि इस गाने का ट्यून जो है रेडी था और लिरिक्स लिखने के लिए म्यूजिशंस ने क्या किया था, डमी वोट्स का इस्तेमाल किया। और जावेद अख्तर को ट्यून समझने और गाने लिखने में आसानी हो तो उसी कारण वो डमी वर्ड्स यूज़ किए गए थे। बल्कि यूँ कहे वो डमी वर्ड्स ही नहीं थे लेकिन नंबर्स थे, 1 से लेकर 13 तक नंबर्स डाले गए थे। जावेद अख्तर ने सुना तो सोचा ये तो सुनने में मेलोडियस है, इसे ही यूज़ करूँगा। ये सुनकर जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स तक ये बात पहुंची तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स को काफ़ी हैरानी हुई कि जब नंबर्स यूज़ करोगे तो फिल्म गाना में कम और स्कूल करिकुलम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जावेद अख्तर ने फिर कन्विंस किया कि इस नंबर्स को बाकी वेसेस में जस्टिफाई करूँगा और रिलीज़ होने पर ये गाना एक रेज था। इस फिल्म के गाने को आपने बागी 2 में भी रिक्रिएटेड वर्जन देखा है जिसमें जैकलिन फर्नांडिस ने काम किया और यहाँ पर उन पर पिक्चराइज हुआ था। माधुरी दीक्षित ने इस गाने पर बात करते हुए बोली, ये गाना एक चैलेंज था क्योंकि इससे पहले उन्होंने क्लासिकल नंबर्स ही किए थे फिल्मों में। ये उनका पहला आउट एंड आउट बॉलीवुड नंबर था। सरोज खान ने काफ़ी मेहनत रिहर्सल्स में करवाया और तब जाकर ये गाना शूट हुआ। रिलीज होने पर फिल्म तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, गाने भी काफ़ी पसंद किए गए, खासकर आज का ये जो गाना है। इसके अलावा इस फिल्म में और सारे गाने हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा या फिर आपकी जो मेमोरीज है रिफ्रेश हो जाएंगी, ताज़ा हो जाएंगी। इसके साथ फिल्म को अवार्ड्स भी काफ़ी दिए गए। अनिल कपूर का पहला फिल्म फेयर एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड ये था। साथ में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ठहरी थी। बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान को अवार्ड दिया गया और बेस्ट डायलॉग के लिए कमलेश पांडे को अवार्ड दिया गया। तो एक ऐसी फिल्म जो जहां पर आपने अनिल कपूर को एक हार्डन क्रिमिनल प्ले करते हुए देखा था, महेश देशमुख से ये मुन्ना बने थे और इसके लिए उनको अवार्ड भी दिया गया था। तो आपको समझ में आया कि किस गाने के बारे में बात हो रही है। 5599 पर आपको जल्द से जल्द भेजना पड़ेगा क्योंकि अब बारी है फिल्म तेजाब से ये गाना बजाने की।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

इसी गाने को आपको पहचानना था, जबकि तेजाब से इस फिल्म से हमने इस गीत को आपके लिए लिया था और काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया और जवाब भी काफ़ी सही आए हैं। आपको मालूम है क्या इस गाने को मेल वर्जन में भी फिल्माया गया है, अनिल कपूर पर पिक्चराइज किया गया जबकि अमित कुमार ने गाया था, लेकिन ये जो वर्जन है इज़ द पॉपुलर ऑफ द टू। और अगर जो जवाब की तरफ देखें तो अमित आपने भी जवाब भेजा और इसके लिए शुक्रिया। आपने फिल्म का नाम लिखा था जबकि गाने का टाइटल भी चाहिए था। इसके अलावा एनजी आपका भी जवाब आया है, आपने सही पहचाना गाने को भी और फिल्म को भी। इसके अलावा 23159 आपका भी जवाब आया, आपने टाइटल भेजा हमारे पास में। धवल आपने सही जवाब भेजा 1 2 3 लिखकर। इसके साथ फाल्गुनी आपका भी जवाब आया है, जबकि मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था तो फाल्गुनी आपने इस गेम को कुछ 5 बार जीते हैं। और इसके अलावा 7938 आपने भी लिख कर भेजा था सही जवाब, और विद्युल आपका भी जवाब आया। लेकिन एक धमाके के साथ आज के जो हमारे विनर ठहरे हैं ये है एश फ्रॉम वेलिंगटन, सबसे पहला पहल आपका जवाब आया, जबकि आपने इस कंपटीशन को 26 अप्रैल को जीता था, जबकि करण अर्जुन से आपने ये बंधन दो प्यार का बंधन है इस गाने को पहचाना था। आज एक बार फिर विद अ बैंग आप एक विनर ठहरे हैं और इस गाने को पहचाना, सबसे पहला पहल जवाब आपका आया था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जितना भी टाइम निकाल कर इस कंपटीशन में भाग लिया, थैंक यू सो मच। और अगले वीक एक और एक नया चैलेंज लेकर आएंगे आपके लिए। आपसे एक गुजारिश है, आप जितने लोगों ने अभी जवाब भेजे इस कंपटीशन में भाग लिया है, आप सभी जाइए और हम फेसबुक पेज पर मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसे भी चेकआउट करिए, और वहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में है आप भी अपने कमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इंटरेक्टिव रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, जो वीडियोस हम बनाते हैं मेहनत करते हैं आप उन्हें पसंद करेंगे, वहाँ पर कमेंट करेंगे, इट विल बी नाइस ऑफ यू। और आप लोगों ने जितने ही कॉम्पिटिशन में भाग लिया है आपके लिए अगला ये गीत नाम करते हैं आपका।

हाँ, सावन में लग गई आग, जबकि इधर सीबीडी में तो डाउनपो हो रही है और इट्स वेरी क्लाउडी और साथ में ड्रिजल हो रही है। और इसके साथ आपको बता दें, थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे टेलीफोन ऑफेंस के बारे में, कुछ जानकारी आपको देंगे कि कैसे टेलीफोन ऑफेंस न्यूजीलैंड में क्राइम है और इसके बारे में बस थोड़ी देर में आपके साथ में इन्फॉर्मेशन ये जो है शेयर करेंगे।

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rain, सिर्फ रोवा पर.
1: It's the final days of game-winning savings at Rebel. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store-wide. Don't get left on the sidelines. Deals end Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
6: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
7: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
8: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, noodles with friends on Karanga Hape Road in just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
9: Trade Depot home appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और बातें हो रही थी टेलीफोन ऑफेंसेस के बारे में। ऐसा क्यों आपको बता रहे हैं? क्योंकि ओवर द वीकेंड साउथ आइलैंड में एक टाउन है वेस्ट पोर्ट, जहाँ पर किसी ने इमरजेंसी सर्विसेज को एक होक्स कॉल किया और बताया कि मेस कैजुअल्टी इवेंट हुई है वेस्ट पोर्ट में, जहाँ पर ऐसा रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट दी गई कि स्टेबिंग का रिपोर्ट या इंसिडेंट के बारे में वो बता रहे थे। जबकि इसको लेकर पुलिस ने काफ़ी सीरियसली इस पर एक्ट किया है, रिस्पोंड किया विद 2 एम्बुलेंसेज एंड 4 हेलीकॉप्टर्स, लेकिन कुछ देर बाद उनको स्टूट डाउन किया गया जबकि दे वे नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसे में जब भी कोई टेलीफोन ऑफेंस कमिट करता है, यानी कि टेलीफोन का मिसयूज़ करता है, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके हैरान करता है जबकि इनकी रिसोर्सेज यूज होती है, तो दैट पर्सन कैन बी चार्ज्ड अंडर द टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2001, उसके तहत आपको चार्ज किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर जो आपको कोई लगातार आपके टेलीफोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल करके आपको परेशान कर रहा है, आपको या फिर ऐसे ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं जो कि आपको हैरेस कर रही है या कर रहा है, तो ऐसे में आप इसके बारे में भी पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर्सन को चार्ज किया जा सकता है अंडर टेलीफोन ऑफेंस। और अगर जो आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो आपको भी जानना पड़ेगा कि ये भी आप एक क्राइम है और इसके तहत आपको भी चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। तो टेलीफोन ऑफेंसेस के बारे में आपको बता रहे थे कि काफ़ी लोग इमरजेंसी सर्विसेज को भी हैरान करते हैं, रिंग कॉल करके, उनको फ़ोन करके काफ़ी ऐसे ऐसे फॉल्स रिपोर्ट्स देते हैं जिसके बाद में जो रिसोर्सेज है ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ये एक्ट है, टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2001, इसके तहत जो टेलीफोन ऑफेंस है इन इफेक्ट है इन न्यूजीलैंड।

हाँ, पर अब समय हुआ कि आपको कुछ हम अपनी तरफ से दें, यानी कि एक मौका आपको दे रहे हैं डबल पास जीतने के लिए। और जैसे ही आप हमारे पास में मैसेज करेंगे, आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जबकि गरबा नाइट विद राज गढ़वी ये रहेगा लाइव इन ओकलैंड, जिसके बारे में आपको बताते आ रहे हैं। सैटरडे 1 अगस्त को इनका जो इवेंट है महात्मा गांधी सेंटर में रहेगा, जहाँ पर जाकर आप झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, गरबा खेल कर सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। टिकट्स जो है बहुत फास्ट बिक रहे हैं। अपना जो है टिकट ये सिक्योर कर सकते हैं eventstickets.co.nz पर, या फिर स्वप्निल को आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी के लिए 02243947 पर। लेकिन अभी के लिए आपके पास में मौका है, आपको सिर्फ लेटर्स आर और जी, शॉर्ट फॉर्म फॉर राज गढ़वी, आर और जी लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर भेजिए और आपकी एंट्री को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। Who knows, शायद आप ही का नाम ड्रॉ में निकले और आपको ये जो टिकट्स है ये मिल जाए।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
3: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
4: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7. Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. Hamari good brands here.
7: हम पर रवि के साथ है और कॉमनवेल्थ गेम्स भी स्कॉटलैंड में जारी है, इसे आप भी चेकआउट कर सकते हैं. और हमारे स्विमर्स ने काफ़ी कमाल किया है, जबकि इन्होंने सिल्वर मेडल्स अपने नाम किया है, साथ में ब्रॉन्ज मेडल्स भी. इस पर और जानकारी थोड़ी देर में आपको देंगे, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स पूरे पैमाने पर जारी है और इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, जबकि स्कॉटलैंड में इसको किया जा रहा है इस साल. और दे केम इन एज अ लेट लेट रिप्लेसमेंट फॉर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया.

हम पर कम्युनिटी न्यूज में ओकलैंड रामायण संस्था की जो मासिक रामायण कथा है, ये फ्राइडे 31 जुलाई को होने को है 7:15 PM पर, और आपको सिर्फ जाना होगा ARST कम्युनिटी हॉल सिचुएटेड एट 53 स्किप्टन स्ट्रीट मेंगरे। यहाँ पर जाकर आप रामायण में भाग ले सकते हैं।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals, plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7, Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: VG is on sale now at Flight Center. Take the family to Plantation Island with 7 nights plus flights from $1,499 per person. Book in store today. Departs Auckland. Fees, T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
1: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, हम पर टी कॉफी एंड अवि जबकि 3 बज रहे हैं. ऐसे में कई जगह पर जो चाय की केटली है पानी उबाल रही होगी और लोग अपने अपने टी टाइम की तैयारी कर रहे होंगे. ऐसे में आप भी उनमें से हैं. व्हाट इज योर फेवरेट गो टू, यानी कि विंटर के मौसम में आपका फेवरेट स्नैक क्या है, खासकर इस समय अगर जो आफ्टरनून टी ब्रेक की बात करें तो अपने चाय के साथ में आप क्या लेते हैं, कौन सा स्नैक आप ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर अपने कॉफ़ी के साथ में कौन सा स्नैक ज़्यादा पसंद करते हैं. इसका जवाब 5599 पर आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं. मेरा पर्सनल फेवरेट है अनियन पकौड़ा. जी हाँ, मैं पसंद करता हूँ और अपने चाय के साथ में स्पेशली ऑन अ संडे जब भी मैं फिनिश करता हूँ यहाँ से घर पर जाकर यही मज़े लेता हूँ. और आपको बता दूँ खबरों में ये न्यूज़ सामने आई है कि आज लगभग अराउंड कल 12 PM के नज़दीक कुछ अवनी में एक और एक क्रैश हुआ था जहाँ पर एक मोटरसाइकिलिस्ट ने अपना लाइफ खो दिया था एक टू व्हीकल क्रैश में. और ये जो है मोटरसाइकिलिस्ट, आप अक्सर परेशान भी होंगे काफ़ी मोटरसाइकिलिस्ट से, क्योंकि कैंपेन तो चलता है कि लुक अगेन, आप दोबारा देखें मोटरसाइकिलिस्ट को. लेकिन जब आप मोटरवेज पर ट्रेवल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से इन बिटवीन कार्स, इन बिटवीन लेन्स आकर अपना खुद का रास्ता बनाकर चले जाते हैं. तो ऐसे मौसम में इनका भी ध्यान रखिएगा. अगर जो आप रास्ते पर हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो बी अ लिटिल कॉशियस और एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये आपके साइड से होकर गुजर जाते हैं. तो 5599 पर अपना जो जवाब है आप हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं, आपकी खुद की पसंद क्या है फॉर टी ब्रेक.

हम पर मैं हूँ अवि, और जो सवाल किया था कि आपको क्या पसंद है अपने चाय के साथ में, स्वाति ने लिखा है कि शी लाइक्स फ्राइड कसावा और विद टी। तो थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। इसी तरह से प्रोग्राम भी इंजॉय करते रहिएगा। अब समय हुआ कि जितने भी हमारे करण ओजला के फैंस हैं आपको बता दें, जबकि ये लेकर आ रहे हैं पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू ओकलैंड, और ये रहेगा 25 अगस्त को एट द स्पार्क अरीना। तो यहाँ पर अब आपको मौका देते हैं एक डबल पास जीतने के लिए। बिल्कुल सिंपल है, आपको यही करना होगा, अपने जो फेवरेट करण ओजला का गाना है लेटेस्ट के ई पहले लिखें, क्योंकि इनके बिना अगर जो आप ये लेटेस्ट नहीं लिखते हैं तो आपके एंट्री ड्रॉ में शामिल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले लेटेस्ट के ई लिखें, फिर अपने फेवरेट करण ओजला का जो गाना है जो आप पसंद करते हैं वो लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर भेजें, ताकि आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाए जहां पर आपके हाथ डबल पास लग सकते हैं। और जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हम rova.nz विजिट कीजिए, या फिर livenation.co.nz पर जाकर और भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये सभी कुछ रहेगा एक अमेजिंग कॉन्सर्ट ऑन द 25th of August एट द स्पार्क अरीना। तो अभी आपके पास में समय है, टेक्स्ट इन योर फेवरेट सॉन्ग और लेटेस्ट के साथ में और अपने नाम के साथ में ऑन 5599।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
2: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
3: IKEA.
4: रांची ग्रुप थ्री इवेंट न्यूजीलैंड अने अरवाहा ऑटोज साथे मरीने प्रस्तुत करे छे राजगढ़वी लाइव इन ऑकलैंड। तैयार थई जाओ एक यादगार सांझ माटे ज्यां हशे म्यूजिक मस्ती अने नॉन स्टॉप गरबा। सैटरडे नाइट 1st ऑगस्ट द महात्मा गांधी सेंटर राजगढ़वी साथे मनाओ एक शानदार गरबा नाइट। गरबा विद राजगढ़वी सैटरडे नाइट 1st ऑगस्ट। टिकट्स माटे जाओ events.tickets.co.nz।
5: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
8: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
9: Sorry about that.
8: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
9: Kogan Mobile, true Aussie value.
8: Terms and conditions apply.
10: Non-stop Bollywood.
11: Hum.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
12: हम पर आपको बता दें न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो 22nd और 23rd अगस्त को रहेगी एट बेकन हेड स्काउट्स होल। तो कहीं ना कहीं आपने अपने कैरम बोर्ड को सेट असाइड कर दिया था, इट्स टाइम कि आप उसको फिर से वापस निकाल कर उसी गेम पर लोड कर जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं किसी भी स्किल लेवल के आप हो, आपको इनक्रेज किया जा रहा है पार्टिसिपेशन करने के लिए और रजिस्ट्रेशन। साथ में इन्फॉर्मेशन के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को 021-090-850-67 पर कॉल कर सकते हैं।

हम पर आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद को, और पुलिस ने, न्यूजीलैंड पुलिस ने अभी हाल ही में एक रिक्वेस्ट जारी किया है जहां पर जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काफ़ी सावधान रहे अगर जो आप कुछ नया आइटम ऑफ सोशल मीडिया ले रहे हैं, अगर जो किसी ने एडवर्टाइज़ किया है एक नए आइटम की, तो इसको लेकर आप काफ़ी सतर्क रहें, क्योंकि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जहाँ पर चोरी किए गए आइटम्स को दोबारा लिस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, और हम जैसे जनरल पब्लिक जैसे हैं और इनोसेंटली ये शिकार बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। तो पुलिस ने कहा है कि कैसे आप इसको लेकर सावधान रह सकते हैं, अगर जो किसी ने एडवर्टाइज़ किया है सोशल मीडिया पर, तो आप जाकर उनके प्रोफाइल को पहले चेक करें, और यही आइडेंटिफाई करेगा कि क्या ये एक जेन्युइन सेला है या नहीं, क्योंकि जो इनकी प्रोफाइल होती है अक्सर ये एक बिल्कुल नई प्रोफाइल होती है, इन पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं और प्रोफाइल काफ़ी ब्लैंक होती है। तो अगर जो आप कम अक्रॉस करते हैं एक ऐसे प्रोफाइल को जो सोशल मीडिया पर किसी आइटम को बेच रही है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर चांसेस कि ये एक स्टोलन आइटम हो सकती है।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, कुछ 16 मिनट बाकी है 4 बजने में, और जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड स्टेशन है, ऐसे में बॉलीवुड की दुनिया से भी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, आप तक पहुँचाते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए एक क्विज है आपके साथ में। अनिल कपूर और साथ में गोविंदा, दोनों 90s के सुपरस्टार्स, काफ़ी फेमस, और यहाँ तक कि अनिल कपूर एट द एज ऑफ 70 आज भी काफ़ी रेलेवेंट है। हमारा सवाल आपसे ये है कि आप क्या बता सकते हैं कितने फिल्मों में इन दोनों अभिनेता ने, गोविंदा और साथ में अनिल कपूर ने, काम किया है, और अगर जो आप उन फिल्मों का नाम भी बता सके तो इट वुड बी वंडरफुल। तो कितने फिल्मों में गोविंदा और साथ में अनिल कपूर ने साथ में काम किया है, और अगर जो आपको नाम भी पता है 5599 पर ज़रूर हमारे पास में भेजिएगा, और आगे चलकर उन्हीं की एक फिल्मों का एक फिल्म का एक गाना ज़रूर आपके लिए प्ले करेंगे।

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, और जो खेल स्पर्स और साथ में ओकलैंड एफसी के बीच में हो रहा है, इसमें हाफ टाइम पर स्पर्स की जीत ओकलैंड एफसी के खिलाफ 1-0 से हो रही है। और सवाल पर वापस आते हैं, सुपरस्टार्स गोविंदा और साथ में अनिल कपूर ने कितने फिल्मों में साथ काम किया, यही आपको बताना है। और अगर जो आपके पास में टाइटल्स भी है मूवी का, तो ये भी हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं। 4 पर आपके लिए न्यूज़ भी रहेगा।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Grab a new generation Samsung foldable phone from Spark with a huge deal. Upgrade now and save at least $1,200 on the all-new Samsung Galaxy Z Fold 8 or Galaxy Z Fold 8 Ultra over 24 or 36 months interest-free on eligible Spark plans with any trade-in. Plus, you'll save the trade-in amount of your phone on top. Get amazing savings on the all-new Samsung foldable phones at Spark. Minimum $99 deposit, trade-in and store only. T's and C's apply.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: The Bedzara's birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzara's, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
4: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
5: Winger Motors.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर 4:02 हो रहे हैं, जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। ये है जस्ट चिल आपके लिए। और इस आवर पर जैसा कि हमने आपसे सवाल किया था कि सुपरस्टार्स गोविंदा और साथ में अनिल कपूर ने कितने फिल्मों में साथ काम किया, तो सुनैना ने जवाब भेजा, इसके साथ में रवीन ने भी भेजा। और सुनैना ने लिखा है 3, आवारगी इन 1990, साथ में दीवाना मस्ताना इन 1997, उसके बाद में सलामे इश्क में भी दोनों नजर आए। जी हाँ, तो दीवाना मस्ताना अगर जो आपने नहीं देखी है, डायरेक्टेड बाय डेविड धवन, और यहाँ पर दोनों एक्टर्स के बीच में एक फन बेंटा, एक एंटरटेनिंग फिल्म ये रही है। और जबकि आपका फेवरेट बॉलीवुड डाल हम है, तो इसी तरह से आपके साथ में बॉलीवुड से कुछ ट्रिविया और इन्फॉर्मेशन, गपशप आपके लिए लेकर आते रहते हैं।

हम पर आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा की खूबसूरत अदाकारी, और जब भी गाते हैं दिल से गाते हैं और इनकी आवाज़ दिल को छू जाती है। क्या आप ब्राउज करते वक्त सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, जो भी प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं आप उनसे कन्विंस हो जाते हैं और परचेस कर लेते हैं? क्योंकि मार्केटिंग का रूल है, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो कुछ भी आप देखते हैं शायद कई हद तक, कुछ हद तक ये सही भी ना हो। तो इस पर और भी बातें करेंगे बस थोड़ी देर में, और आपको बताएंगे कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स जो भी आपको दिखा रहे हैं या फिर बेचने की कोशिश कर रहे हैं सब सही नहीं होता।

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7. Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: Dibba khul gaya.
4: Bharat bhai, tiffin khul gaya uche. Sanjana ka dibba khul gaya.
5: Jab Kashish Spices se khana banega, to saare office ki nazar mein rahega. Phir yahi to hoga. Dibba khul gaya. Haldi, mirchi, garam masala. Kashish Masale, Achhe Wale. Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: हाँ, अच्छा
6: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
10: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
11: Flooring Extra. Adore your floor.
12: When customers are harder to win, visibility matters more than ever. If your signage is tired, unclear or outdated, you're making it easy for people to walk on by. Speedy Signs helps businesses clean up their look with beautiful, professional signage that demands attention. From illuminated storefronts to full fleet graphics, they make sure people can see you, trust you and remember you. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
13: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
14: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और बातें हो रही थी कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स आपको कन्विंस कर लेते हैं जो भी आप देखते हैं उनको प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए किसी भी सोशल मीडिया पर, और क्या ये सही होता है या फिर अक्सर ये गलत प्रमोशन होता है. तो 14 फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को FMI यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी ने कॉन्टेक्ट किया है एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट कि जहां पर क्रैकडाउन किया जाए जो लोग कुछ झूठ बोलकर और ऐसे फॉल्स प्रमोशन करके और प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं. न्यूजीलैंड में FMI जो है ये फोकस्ड है काफ़ी पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और RNZ के एक मुताबिक के अनुसार कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर सोशल मीडिया पर गलत बताकर, झूठ बोलकर और प्रोडक्ट्स को बेचा गया है. इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रहे थे कि जो भी आप देखें उनको या उन पर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, और अक्सर अपना जो रिसर्च है आप खुद करके और तब कहीं जाकर जो प्रोडक्ट्स है आप इनको खरीदें.

हम पर जसिल का ये कारवा है और कुछ कम्युनिटी न्यूज भी हमारे पास में इसे आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। श्री राम मंदिर एट 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, ये लेकर आ रहे हैं अखंड रामायण पाठ जो रहेगा फर्स्ट और सेकंड अगस्त को, सैटरडे एंड संडे। और सैटरडे की जो प्रोग्राम है सुबह 7 पर रोड पूजा के साथ में शुरू होगी। 8:45 AM से रामायण पाठ जो है, अखंड रामायण पाठ, ये शुरू होगी और चलती रहेगी संडे सुबह 10 बजे तक। और इसके बाद में हवन और आरती भी रहेगी, महाप्रसाद सेव किया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। और जानकारी के

0: शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7. Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: It's back to school at Woolworths. Get Mother Earth Baked Oaty Slice Bars 6-pack just $3.59 each. Or Fresh and Fruity Regular Yogurt 6-pack just $3.99 each. Back to school at Woolworths. T's, C's and exclusions apply.

0: Hollywood's biggest hits.
1: FM साथ में रोवा पर आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. ऐसे में बॉलीवुड से जो लेटेस्ट अपडेट्स है आपके साथ में शेयर कर लूं. जबकि एक फिल्म आई थी किक, सलमान खान इसमें इन्होंने इसमें स्टार किया था और इस फिल्म को 12 इयर्स हो चुके हैं. तो अभी 12th एनिवर्सरी पर जो फिल्म के डायरेक्टर थे साजिद नाडियाडवाला, इन्होंने बताया कि जो कास्टिंग हुई थी यहाँ पर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर जो रोल था इस पर काफ़ी बहस हुई थी, जबकि और एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया था, लेकिन फाइनली इनके जहन में इनके दिमाग में आया कि क्यों ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अप्रोच किया जाए. हालांकि इनके HOD जो थे, इनके डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोडक्शन के भी जितने हेड्स थे, इन्होंने इनको डिस्करेज किया कि कहा नहीं, ये रोल इनके लिए नहीं है और किसी और को देखते हैं या फिर किसी और को अप्रोच करते हैं. लेकिन साजिद नाडियाडवाला बताते हैं कि convinced कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस रोल को काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे. और वही हुआ, जब फिल्म रिलीज़ हुई तो सलमान खान की चर्चा तो हुई लेकिन साथ ही साथ में लोगों ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के काम को भी काफ़ी पसंद किया.

हम्पर ये है जस्ट चिल और एक और एक ऐसा डेट है जिसे आपको अपने कैलेंडर पे मार्क करना होगा 8th of August इसे आप मार्क कर लीजिए क्योंकि कीवी फिन इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट अलोंग विद हम एज मीडिया पार्टनर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामलीला जो 8th August को ही रहेगी एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोई में और यहाँ पर जो इवेंट है इसके लिए टिकट प्राइजेस है $10 पे पर्सन और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है और अगर जो आप स्टॉल्स को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं तो मास्टर अशोक को 0211-795-459 पर कॉल कर सकते हैं 0211-795-459 पर आप इन्हें कॉल करें और लगे हाथ इनसे टिकट्स के बारे में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
6: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स।
5: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
6: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
5: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
7: एवरीडे बर्न हैजर्ड्स आर हॉटर देन दे लुक। एक्ट फास्ट। Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
0: You're listening to Avineet.
9: हम पर हमारे स्टूडियोज में इज जस्ट आफ्टर 5 और ये है फाइनल आवर ऑफ द शो। देखते देखते हम इस आवर पर पहुंच गए हैं जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 12 से आपने हमें कंपनी किया है और इस आवर पर भी आप हमारे साथ में बने रहिएगा। और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं।

हम पर यह है जस्ट चिल का सिलसिला और अक्सर अलोंग विद एंटरटेनमेंट हम पर आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लेकर आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। इसी तरह से सैंडी और रुजबे ने अपने अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में बातें की हैं शनील लाल से, जिन्होंने खुले दिल से LGBTQ को लेकर और उनके राइट्स को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सामने रखा है। हम एज अ कम्युनिटी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जब हम वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो अपने राइट्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और सपोर्ट भी दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ जानने के लिए आप ड्राइव लिखें और टेक्स्ट करें ऑन 5599 और आपको पूरा का पूरा ऑडियो जो है ये मिल जाएगा। इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट केचअप जो है आप अगर जो मिस कर देते हैं, विजय एंड पूजा हर सुबह ब्रेकफास्ट शो लेकर आते हैं, तो इसके लिए आप BF लिखकर 99 पर भेज सकते हैं।

0: हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
7: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
9: An award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
0: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
11: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
12: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
11: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
12: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
11: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
13: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
14: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और बातें कर लेते हैं मौसम को लेकर, खासकर ओकलैंड की वेदर को लेकर, क्योंकि जहां तक फोकास्ट किया गया है ओकलैंड में आज रात टेम्परेचर एज लो एज सिंगल डिजिट ड्रॉप हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कल सुबह जब आप जागोगे तो काम पर जाने के लिए तो टेम्परेचर कुछ हद तक 5 to 6 degrees तक हो सकती है। और जबकि बच्चे कल स्कूल जाएंगे तो इनका भी खास ख्याल रखिएगा आप, इट विल बी फ्रीजिंग कोल्ड। तो बी वेल प्रिपेयर्ड और आपको यही बता सकते हैं मौसम को लेकर। और जो भी है झेलना तो पड़ेगा जबकि विंटर का मौसम है, लेकिन प्रिपेयर भी हम कर सकते हैं।

हम पर हंसते खेलते जसशील का यह कारवा चल रहा है। मैं हूं अभी आपके साथ में और 6 पर आपके लिए न्यूज भी रहेगी और न्यूज के बाद में आपका साथ देने के लिए हमारे एक और एक साथी आपके साथ में हो जाएंगे। दैट विल बी सैंडी। जी हाँ, सैंडी आज इवनिंग का जो प्रोग्राम है आपके लिए लेकर आएंगी।

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

हम पर आपके चॉइसेस को खासकर ध्यान में रखकर आपके लिए हम म्यूजिक स्टेशन पर रोवा पर हम रिवाइंड, जहां पर बॉलीवुड के 60s और 70s के गाने आप सुन सकते हैं। इसके अलावा 80s के अलग से हम 80s जुग बॉक्स पर इन गानों को स्टोर किया गया है। इसके साथ ही साथ में फिजी भजन जो है, जो 24/7 आप फिजी भजन अपने कन्वीनियंस पर सुन सकते हैं, ये भी रोवा पर है। और इसके साथ ही साथ चढ़ती कला फॉर ऑल दी पंजाबी हिट्स, ये भी आप विद अ प्रेस ऑफ अ बटन सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ फिजी कीर्तन संग्रह, फिजी के भक्ति रस कीर्तनों को जिन्हें गाया है फिजी के प्रमुख कलाकारों ने अपनी आवाज़ में, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में राहत फतेह अली खान, इनके गाए हुए सूफी और कवाली भी आप जाकर सुन सकते हैं। तो आपकी पसंद को ध्यान में रखकर हम म्यूजिक स्टेशन पर ये सलेक्शन प्रोवाइड किया गया है, इसे रोवा पर ज़रूर चेकआउट कीजिए।

0: comment section.
1: Lovable investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
2: हम पर आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। 12 बजे से आपके लिए लेकर आए थे जसचिल और ये कारवा अब तो ख़त्म हुआ और यहाँ से अब हम निकलते हैं, लेकिन कल के लिए जबकि एक नया वीक है तो आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, एक नए माइंडसेट के साथ में, एक नई पॉजिटिविटी के साथ में, एक नए जज्बे के साथ में इस वीक को भी आप शुरुआत करें। तो आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल रात को, जबकि लेकर आएंगे आपके लिए नाइट कैफे। लेकिन आज के लिए इंजॉय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डू टेक केयर। फिर मिलेंगे, बाय।

दिल से आप ले शुरू हो चुका है अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 12 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है संडे नाइट मेलोडीज में. सो आपका वीकेंड कैसा गया? हाउ वाज योर वीकेंड? क्या होता है कि यूजली मैं ड्राइव शो में वीकडेज में आपसे पूछती हूँ कि आपका पूरा का पूरा हफ्ता कैसा गया, लेकिन आज तो वीकेंड के रैपअप में मैं आपके साथ हूँ. सो बताइए, जो वीकेंड है इसको अगर आपको रेट करना हो आउट ऑफ 10, अगर आपको रेट करना हो कि आपका वीकेंड कैसा गया, तो क्या रेट करेंगे? 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? मैं अपने वीकेंड को रेट करना चाहूँगी 7. या 7 इज़ अ परफेक्ट नंबर. सो व्हाट अबाउट यू? आप अपने वीकेंड को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? शेयर कर सकते हैं संडे नाइट मेलोडीज में. कुछ रिक्वेस्ट डेडिकेशंस भी यहाँ पे हम आपके लिए प्ले करते हैं जो ओवर द वीक या फिर लास्ट वीकेंड पे भी आती है. अगर आपकी कोई डेडिकेशन है तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5599 पर.

संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड इस हफ्ते जो हुआ दुनिया भर में न्यूजीलैंड में इसके बारे में भी यहाँ पे अक्सर आपके साथ हम रैप अप करते हैं। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड में जो इस बार इकोनॉमी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इसको लेके जो लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा रिवील हुआ, इन्फ्लेशन ने सर्ज किया टू 4.1%। सो इट एक्चुअली सरपास द रिजर्व बैंक प्रेडिक्शन ऑफ 3.9%। एनालिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने एट्रीब्यूट किया कि जो स्पाइक है ये कॉम्बिनेशन है इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी का एंड ग्लोबल प्रेशर्स का भी, जिसमें फ्यूल प्राइस इंक्रीज जो है ये है बिकॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो करंट स्टैट्स है ये बताता है कि काफ़ी स्ट्रेन था ऑन हाउस होल्ड्स विद 51% ऑफ माउरी हाउस होल्ड जो थे इन्होंने एक्सपीरियंस किया फूड इनसिक्योरिटी को। एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ये 19% है। सो काफ़ी और अनाउंसमेंट्स भी हुई थी। हेल्थ एंड पब्लिक सर्विसेज को लेके अगर बात करते हैं तो आईटी आउटेज हुआ, मेजर आईटी आउटेज था एट हॉस्पिटल्स अक्रॉस द वाइकाटो डिस्ट्रिक्ट। एंड पीएसए ने एट्रीब्यूट किया कि ये जो फेलियर्स है ये है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कट टू हेल्थ न्यूजीलैंड आईटी वर्कफोर्स, जिसकी वजह से 1000 स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो थे अपनी जॉब से गए इन द लास्ट 2 ईयर्स। सोशल हाउसिंग को लेके रिपोर्ट आई थी जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि $140 मिलियन जो है ये हाउसिंग प्रॉमिस में है जो कि ऑन ट्रैक है। दो क्रिटिक्स ने इसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया कि इसमें से 263 जो है ऑफ द प्रॉमिस्ड इतना ही हुआ है, 1500 एडिशनल सोशल होम्स जो है ये बिल्ट हुए हैं वाइल नियरली 20,000 लोग जो है ये अभी भी वेट लिस्ट में हैं। वेल, ये सब कुछ यहाँ पे न्यूजीलैंड में इसके बारे में हाईलाइटेड न्यूज़ रही। अगर आपको कुछ पता है, कुछ हाईलाइट हुआ इस पूरे के पूरे हफ्ते में आपके लिए, तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 555 पर।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
7: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
8: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
10: अच्छा
9: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
13: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
14: Dash!
15: At Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74. Or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Lowest prices are just the beginning.
16: Danny didn't think he needed a DVS system.
17: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
16: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
17: Nah, only one room. It was just too noisy.
16: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पे सुन रहे हैं। इस हफ्ते के बारे में रैप अप के हम जहाँ पे बातें कर ही रहे हैं, तो ऑफकोर्स फीफा वर्ल्ड कप को हम कैसे भूल सकते हैं। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में एपिक वर्ल्ड कप मैच हुआ, जहाँ पे स्पेन ने जीत हासिल की। बहुत ही वन साइडेड मैच था वैसे, स्पेन ने बहुत अच्छा ये मैच खेला था, तो मेरा हार्ट ब्रेक भी हुआ था कि अर्जेंटीना नहीं जीती। बढ़िया, स्पेन डिजर्वड इट। एंड आपके सुपर सिटी में वैसे कुछ इवेंट्स होने वाले हैं। सैटरडे 1 अगस्त को महात्मा गांधी सेंटर में गरबा नाइट होने वाली है राज गढ़वी के साथ, जो कि एक सुपर्ब इवेंट रहने वाला है। लोटस प्रोडक्शन, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आपके लिए ये एक कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर लेके आ रहे हैं, विच इज गरबा विद राज गढ़वी। टिकट्स अपनी आप बाय कर लीजिए eventstickets.co.nz पे जाके। स्वप्निल से बात कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ऑन 0224394736। लेकिन अगर आप टिकट यहाँ पे जीतना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। RG यानी कि राज गढ़वी, RG स्पेस अपना नाम लिख के भेज डालिए 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा। सो मेक श्योर कि एंट्री आप अभी से अपनी भेज रहे हैं, RG स्पेस अपना नाम, द नंबर इज 5599 और आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा, जहाँ पे इस गरबा के लिए डबल पास आपके नाम हो सकता है।

दिल से आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड पूरे के पूरे वीक का रैप अप करते हैं। तो वैसे आपको बता दूंगी, बॉलीवुड में भी काफ़ी हलचल रही थी चीज़ों के बारे में, बिकॉज जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे दिल्ली में जंतर मंदिर में, काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आगे पहुँचे सपोर्ट करने के लिए। हैट्स ऑफ टू शबाना आज़मी, शी वॉज नॉट जस्ट वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर में, इनफैक्ट जब वो प्रोटेस्ट जब उन्होंने किया, जब रैली उन्होंने की, तो वहाँ पर भी वो शामिल थी एंड शी गॉट क्वाइट इमोशनल अबाउट एवरीथिंग एज वेल। बहुत सारे एक्टर्स जो थे इन्होंने वॉइस आउट किया एंड रिसेंटली इमरान खान जो थे ये भी वहाँ पे पहुँचे थे, आयशा खान जो कि बिग बॉस फेम से एंड धुरंधर में इनका जो गाना है, इनको तो खैर अरेस्ट भी कर लिया पुलिस ने, लाइक नसीरुद्दीन शाह एंड इन्होंने भी अपने जो व्यू से ये खुल के बोले। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस मेरे को लगता है कि वो सिचुएशन को थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे थे, बिकॉज उनके साथ भी बहुत कुछ होता रहता है। स्टैंड अप कॉमेडियंस ने बहुत स्टैंड लिया इन चीज़ों को लेके। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था कि ऑन थर्सडे एक्चुअली में फ्यू सेलिब्रिटीज़ लाइक सलमान खान ने पहले पोस्ट किया इस चीज़ के बारे में एंड देन मेरे को लगता है भाई की पोस्ट के बाद सबको हिम्मत आ गई पोस्ट करने के लिए। एंड देन इट वॉज अ सीरीज़ जो बहुत अजीब है कि सीरीज़ ऑफ पोस्ट आती है और उसके बाद देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाइन

फाइनली 25 दिनों के बाद पोस्ट करते हैं. एंड सोनम वांगचुक, इन्होंने अपना फास्ट तोड़ा बिकॉज बात हुई काफ़ी चीज़ों के बारे में. सो अभी तक रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, उसके ऊपर वैसे कोई बात नहीं हुई है, जिसकी वजह से 21 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ली है, मतलब पेपर लीकेज की वजह से. एंड इसको लेके काफ़ी सारे सवाल जो है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर भी उठे कि बड़ी से बड़ी चीज़ें होती हैं, यही यंगस्टर्स हैं जो उनके मूवीज़ देखने जाते हैं तो वो इनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते. मुझे लगता है कि बॉलीवुड को तो हम हमेशा सॉफ्ट टारगेट बना देते हैं चीज़ों को लेके. अब बॉलीवुड जो है जब सिस्टम के साथ पंगे लेने शुरू कर देगी, चाहे वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है वो नहीं हमें पता, लेकिन जब वो पंगे लेने शुरू कर देंगे तो उनका खाना पीना गायब हो जाएगा यार. मतलब उनका तो घर जहाँ से चलता है, द थिंग्स आर क्वाइट कनेक्टेड विद ईच अदर. सो इसलिए मुझे लगता है कि नॉट जस्ट बॉलीवुड बट और भी बहुत सारे लाइक कॉर्पोरेट्स काफ़ी होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं जैसे क्रिकेट, उसमें से भी कोई नहीं बोल पाता है ऐसे इश्यूज़ को लेके, जहाँ पे उंगली जो है वो प्राइम मिनिस्टर या एक लीडिंग पार्टी की ओर होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे एक डर, एक फियर होता है. सो मे बी दोज अदर रीजंस. बट एनी वे या दिस वॉज क्वाइट अ हाईलाइट दिस वीक कि कौन बोल रहा है. राजकुमार राव को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल किया गया था काफ़ी चीज़ों के लिए, बाद में उन्होंने बोला कि गिव मी चांस टू प्रूव माई सेल्फ.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: It's the final days of game-winning savings at Rebel. Score an epic 20-40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store-wide. Don't get left on the sidelines. Deals end Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
3: Dash!
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi brand nahi hai.
4: Dil se, dil se, dil tak.
6: Dil se, aap yahan pe sun rahe hain. Hafte mein waise jahan pe Bollywood celebs protest ka hissa ya nahi hissa bane, lekin और भी बहुत कुछ हुआ, जैसे कि काफ़ी सारी मूवीज़ के बारे में अनाउंसमेंट हुई। रामायणा ये मूवी का जो ट्रेलर है, प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने प्रीव्यू किया इवेंट्स को एंड ट्रेलर्स की स्क्रीनिंग्स की फॉर द मेगा बजट प्रोजेक्ट, जहां पे कोलैबोरेशंस के बारे में हाईलाइट किया, जहां पे एआर रहमान, हंस जिमर एंड श्रेया घोषाल इनके बारे में बातें हुई। देन देर वॉज अनदर टॉक्सिक का जो ट्रैक था ये भी रिलीज़ हुआ। थ्री इडियट्स के बारे में बातें की गई कि इसको री रिलीज़ शायद किया जाए। वुड हैव बीन परफेक्ट टाइम जब ये सब कुछ चल रहा है उसी के बीच में थ्री इडियट्स को रिलीज़ करो। बट विदु विनोद चोपड़ा की जो मूवी थी, इन्होंने बाद में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि वो थ्री इडियट्स को दोबारा से थिएटर्स में रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। एंड डायरेक्टर अनीस बज़मी रिपोर्टेडली ही इज़ इन टॉक विद कार्तिक आर्यन फॉर भूल भुलैया 4। सो 4 भी शायद आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं।

संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पे सुन रहे हैं और ये आवर मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, नॉस्टैल्जिया नाइट। सो नॉस्टैल्जिया आवर एक्चुअली में ये रहने वाला है। नॉस्टैल्जिया नाइट्स जो है एक्चुअली में इस पे कुछ बातें करेंगे जहाँ पे वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वी रियली लव्ड वंस अपॉन अ टाइम। नॉस्टैल्जिया नाम से आपको क्या नॉस्टैल्जिया फील होता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत मिस करते हैं कि दिस वॉज योर फेवरेट पार्ट ऑफ योर लाइफ? मे बी आपके बचपन का वो एक पार्ट हो सकता है, वाइल यू वॉज ग्रोइंग अप, आपके कॉलेज डेज, टीनेजर, कोई भी वो पार्ट हो सकता है। शेयर कीजिए अपना भी नॉस्टैल्जिया यहाँ पे 5599 पर, और मैं भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। एंड लेट मी नो इन चीज़ों के साथ अगर आप रिलेट करते हैं। 5599 इज़ द नंबर।

संडे नाइट मेलोडीज में नॉस्टैल्जिया नाइट्स फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। नॉस्टैल्जिया के बारे में बात करते हैं, बीइंग नॉस्टैल्जिक के बारे में बात करते हैं। यू नो आजकल तो हमारे पास स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल है, अमेज़न म्यूजिक है, लिस्ट इज ऑन एंड ऑन, रोवा भी है जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक स्टेशन हैं। बट पहले ये सब नहीं था, सो पहले तो एक मिक्स टेप हर कोई बनाता था। अभी तो मिक्स टेप एल्बम्स का नाम होता है, बट दे यूज टू बी मिक्स टेप्स जो कि हाई स्टेक्स आर्ट फॉर्म होता था। यू हैड टू गो टू एक लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप और वहाँ पे अपने गानों की लिस्ट आप देते थे कि मेरे ये फेवरेट गाने हैं। एंड देन देर वॉज अ वेटिंग टाइम, लाइक यू हैव लाइक गुड 2 to 3 days वेटिंग टाइम, कभी कभी हफ्ता भी। एंड देन आपको वो मिक्स टेप मिलती थी, अल्टीमेट एक स्ट्रगल होती थी। एंड वो मिक्स टेप जो है देन वो लेके आते थे आप, एंड यू नो उसको आप सुनते थे, अपने फेवरेट गानों को आप सुनते थे। अभी तो जस्ट हम एक लिस्ट बना लेते हैं अपने स्पॉटिफाई में, रोवा में जाके आप अपने गाने सुनते हैं कहीं पर भी। एंड यू नो दीज आर माई सॉन्ग्स, फेवरेट सॉन्ग्स, इट्स वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट, फ्यू सेकेंड्स में। बट मुझे लगता है इवन दैट वॉज क्वाइट फन, अपनी लिस्ट बनाना देन शॉप में जाना। आपने क्या किया है ये मिक्स टेप अगर आपने कभी बनाई है, मैसेज करके बताइए 5599 पर। ऐसी कौन सी एल्बम थी जो आपने बनाई, ऐसे कौन से गाने थे जो आपने बनाए मिक्स टेप में, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 पर मैसेज करके। सो एक कैसेट लेना, एंड ऑल्सो यू नो वो कैसेट को अगर ठीक करना हो तो अगर आपने कभी पेंसिल के साथ वो जो कैसेट है उसकी लूज रील को आपने ठीक किया है यूजिंग, मेरे को तो नटराज की पेंसिल याद है, नटराज पेंसिल के साथ वाइंड अप करना लूज रील को विदाउट स्नैपिंग द टेप, वो स्किल हुआ करती थी, एक अलग ही लेवल की स्किल। सो मैसेज एंड टेल मी ऐसी कौन सी कैसे टेप थी जो आपने पहले बाय की अपनी पॉकेट मनी से, या फिर आपके आपने खरीद के, या फिर आपको गिफ्ट मिली, आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। 5599 इज़ द नंबर।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: It's double points week with Everyday Rewards. Boost, spend and scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas and Milk Run by Sunday 2nd of August to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
2: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
3: संडे नाइट मेलोडीज में नॉस्टैल्जिया नाइट्स फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने मिक्स टेप के बारे में बातें की एंड काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मैसेजेस किए हैं जो मिक्स टेप्स इन्होंने बनाई थी, मतलब यानी कि कैसेट शॉप में जाके रिकॉर्ड करवाना, अपने फेवरेट गाने जो है ये रिकॉर्ड करना। अनदर नॉस्टैल्जिया में यू नो इट वॉज अबाउट संडे मॉर्निंग्स। सैटरडे वीकेंड होता था ये मुझे याद नहीं है। बचपन में स्कूल में हाफ डे होता था, इट वॉज नॉट अ वीकेंड, इट वॉज अ हाफ डे इन द स्कूल, लेकिन संडे तो फुल छुट्टी हुआ करती थी। सो संडे मॉर्निंग जो थे इट वॉज नॉट जस्ट अ डे ऑफ, वो एक इवेंट हुआ करता था। सो इंटायर फैमिली जो है ये सुबह सुबह उठ जाना, सर धोना होता था उस दिन, इट वॉज अ हेड वॉश डे बेसिकली संडे का। एंड लेकिन सुबह सुबह उठ के वो सब करना एंड देन टीवी के आगे बैठ जाना, बिकॉज आइकॉनिक सीरियल्स एंड कार्टून्स जो है ये एक्चुअली में टीवी पे आते थे। सो इसलिए वो बाद में देखने, एंड देन मेरे को लगता है दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर, मूवी भी आती थी, देन वी यूज टू वॉच द मूवी एज वेल। सो हमने तो अपने घर पे टीवी एंटीनास भी सेट किए हुए हैं टू गेट अ प्रॉपर चैनल। सो जब वो केबल टीवी का टाइम आया था, यू हैव टू सेट द केबल ऊपर से टीवी चैनल कुछ आप सेट करते थे अच्छे से ताकि जो चैनल है ये क्लियरली आए। आपने भी कभी ऐसा किया है तो वो भी आप यहाँ पे शो आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसा कौन सा सीरियल था जो या कार्टून थे जो आपको देखने होते थे? I remember DuckTales. DuckTales was one जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। There was another one, यार वो भालू के साथ था, बियर था उसमें, भालू था something कुछ ऐसा, तो वो भी कार्टून काफ़ी ज़्यादा देखा है। बट DuckTales तो अंकल स्क्रूज वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद है। सो आप भी यहाँ पर शेयर कीजिए 5599 इज़ अ नंबर। नॉस्टैल्जिया में ऐसे कौन से सीरियल्स या कार्टून्स थे? वो एक मेरे को याद है, वॉज दैट चंद्रमुखी, नहीं समथिंग, जिसमें वो एक विलन था उसमें, और उस विलन का नाम था क्रूर सिंह, मतलब बहुत ही डरावनी विलन था वो। उसको बनाया भी वैसा था कि उसके ब्लैक कलर के ऐसे कुछ कपड़े थे एंड बाल भी उसके थोड़े अजीबोगरीब थे। क्रूर सिंह उसके विलन का नाम था, चंद्रकांता, या इट्स नॉट चंद्रमुखी, इट्स चंद्रकांता। एंड चंद्रकांता लाइक ब्यूटीफुल ऐसी कोई प्रिंसेस होती है जिसके पीछे करूर सिंह बड़ा है और उसका अपना कोई हीरो भी है। सो या दिस आई डेफिनेटली रिमेम्बर। आप भी लिख के भेजिए अपने 5599 इज़ द नंबर।

0: पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री। परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
3: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
4: It's the final days of game-winning savings at Rebel. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store-wide. Don't get left on the sidelines. Deals end Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
5: Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dia heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
9: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol served everywhere this winter with a lime.
10: हम
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

संडे नाइट मेलोडीज में नॉस्टैल्जिया नाइट्स फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। नॉस्टैल्जिया हो कि हमने याद किया कुछ टीवी सीरियल्स को भी, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मालगुड़ी डेज भी मेरे पास मैसेज आया है, रामायण मेरे पास आया है, महाभारत, येस आई डू रिमेंबर महाभारत, वॉचिंग महाभारत एंड या ये सब मेरे पास एक्चुअली में यहाँ पे मैसेजेस आए हैं। हम पाँच भी किसी ने लिख के भेजा है, आप भी क्या देखते थे यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं 5599 पर। अनदर नॉस्टैल्जिया मुझे जो लगता है वो है कि फ्यू कैंडीज आई विल से, सो देवर हमारे स्कूल के कैंटीन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती थी, नॉट जस्ट स्कूल कैंटीन लेकिन स्कूल के बाहर जो ठेले रेड़ियाँ वगैरह जो लगी होती है वहाँ पे भी। एक तो वो नाम सिगरेट्स, नॉट प्रॉपर सिगरेट की बात नहीं कर रही मैं, खाने वाली सिगरेट की बात कर रही हूँ, वो फैंटम सिगरेट्स हुआ करती थी जो आप, जो कि कैंडी थी, वो सिगरेट की शेप में कैंडी थी, वो बताओ कैसी कैंडीज बनाई थी सिगरेट की शेप में कैंडीज, वो होती थी एक। एंड देन आई रिमेंबर फ्यू कोल्ड ड्रिंक्स जो मुझे लगता है कि अब तो शायद गायब ही हो चुकी है, गोल्ड स्पॉट वॉज देयर एंड मरिंडा, आई ऑलवेज लव मरिंडा बिकॉज प्योर मैंगो फ्लेवर हमेशा उसमें रहता था एंड या बहुत सारी ऐसी भी थी। सो वट वॉज योर फेवरेट वन, अगर आपके कोई ऐसी कैंडीज, कोई ऐसी स्नैक्स, अंकल चिप्स, यस अंकल चिप्स में मतलब पैकेट ले लेना, आधी तो उसमें हवा ही होती थी लेकिन वो एंड में थोड़े से होते थे, सो वो अंकल चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें। व्हाट इज़ योर फॉन्ड मेमोरी ऑफ स्नैक्स कैंडीज, आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 इज़ अ नंबर।

संडे नाइट मेलोडीज में नॉस्टैल्जिया नाइट्स के बारे में बात कर रहे थे एंड मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए. मैंने पूछा था कि आपकी यू नो फेवरेट कैंडीज ये सब कुछ क्या हुआ करती थी स्नैक्स. मेरे पास फ्रूट बर्स्ट, मिल्क टॉफी एंड बताया कि फिजी में एक्चुअली में कैसिप शायद इसका नाम है, स्मॉल कलरफुल हार्ड कैंडीज हुआ करती थी ये और डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स की ये हुआ करती थी. आप भी यहाँ पे मैसेज करके यहाँ पे चटपटे ये भी मेरे पास आंसर आया है. आई थिंक आई नो चटपटे या ये तो मैंने खाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे. वो इमली के गोले बड़े सही लगते थे यार. एंड मेरे पास ऑल्सो एक मैसेज आया है, इन्होंने बोला कि नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं, हाउ कैन वी फॉरगेट द क्लासिक फ़ोन. या क्लासिक फ़ोन जब मोबाइल फ़ोन अभी इतना सर्विस में नहीं आए थे, स्पेशली स्मार्टफोन्स तो खैर थे ही नहीं, लेकिन हर घर में एक प्रॉपर फ़ोन सेट ज़रूर हुआ करता था जो मुझे लगता है कि अभी गायब हो चुका है. दे यूज़ टू बी अ फ़ोन सेट सबके घर पे. सो यस, अगर आपके घर पे भी फ़ोन सेट हुआ करता था, कौन सा फ़ोन सेट था वो? किसी के घर पे वो गोल घुमाने वाला था, वो मैंने मेरे घर पे कभी नहीं आया है जिसमें ऐसा राउंड पूरा घुमाते थे. मैसेज करके बता सकते हैं. 5599 इज़ अ नंबर.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands nahi hai.
4: Dil se, dil se.
6: संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पर सुन रहे हैं और इस आवर में कुछ कॉम्पिटिशन्स है आपके लिए जहाँ पे कुछ इवेंट्स के डबल पासेस जीतने का मौका आपको मिलने वाला है. अनप्लग्ड सॉन्ग्स, बॉलीवुड के वो गाने जो कि कवर सॉन्ग्स है, अनप्लग्ड सॉन्ग्स है, डिफरेंट वर्जन में ये गाने आज यहाँ पे इसी आवर में आप सुनने वाले हैं. सो आपका कोई फेवरेट अनप्लग्ड है तो आप भी मैसेज कर सकते हैं. 5599 इज अ नंबर.

अनप्लग्ड सॉन्ग्स इस आवर में बिटवीन 8 टू 9 संडे नाइट मेलोडीज में आप सुनते हैं। अगर आपका कोई फेवरेट गाना है आप भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। रिमेम्बर 5599 इज द नंबर। इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, वैसे करण औजला आपके सुपर सिटी में आने वाले हैं। बहुत ही सुपर शो इनका स्पार्क अरीना में होने वाला है 25th अगस्त को। और इनसे पहले स्पेशल गेस्ट इकी परफॉर्म करने वाले हैं। सो ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके आ रहे हैं, which is going to be one of the biggest concert of this year. Tickets ke liye you can go to hum.rova.nz ya fir jaiye livenation.co.nz pe. Lekin agar ticket yahan pe aap jeetna chahte hain to iske liye aapko karna kya hai, bahut hi easy hai. Aapko ka yani ki Karan Aujla, ka space Karan Aujla ka aisa kaun sa gana hai jo aapko bahut pasand hai, बस वो लिख के भेज डालिए 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहां पे इस इवेंट के लिए डबल पास आपके नाम हो सकता है।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: weekdays, 6 to 10 a.m.
1: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7. Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
3: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
4: Sunday Night Melodies में unplugged songs आप यहाँ पे सुन रहे हैं. You know, I was reading about this कि history क्या है unplugged songs के. काफी समय से हम सुनते हैं इसके बारे में. ये जो idea है, actually में ये कोई नया idea नहीं है unplugged का. It became globally famous in the late 1980s and even early 1990s. So origin कहाँ से हुआ? 1980 से पहले जो म्यूजिशियंस थे ये पहले परफॉर्म क्या करते थे, कुछ अकाउस्टिक वर्जन्स ऑफ द सॉन्ग्स को रेडियो, टीवी या इंटीमेट कॉन्सर्ट्स के लिए. काफ़ी फोक आर्टिस्ट जैसे कि बॉब डायलन, जॉन बेस एंड साइमन, ये सब ऑलरेडी नॉन थे अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस के लिए. उस समय पर नाम अनप्लग्ड नहीं था. फिर क्या हुआ, द टीवी चैनल MTV हैपेंड इन 1989. MTV ने लॉन्च किया MTV Unplugged, एक टीवी सीरीज थी जहाँ पे पॉपुलर आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे गिटार्स के साथ, पियानोस के साथ, स्ट्रिंग सेक्शंस के साथ, और मिनिमल एम्पलीफिकेशन उनके गानों में हुआ करती थी. जो आइडिया था वो था टू शोकेस द म्यूजिक एंड वोकल्स विदाउट द हैवी प्रोडक्शन ऑफ स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स जो कि हम बाकी सॉन्ग्स में सुनते हैं. ये जो शो था ये बहुत ही बड़ा ग्लोबल फिनोमिनन बन गया बिकॉज जो ऑडियंस थी they got to hear very जो hits है in a very completely different way. कि hit गाने थोड़े और relaxing way में वो actually में सुन रहे हैं, तो जिसके कारण जो गाने थे उस समय पर unplugged, ये जो version था actually में ये hit हो गया. MTV ने शुरू किया but then unplugged जो था ये actually में hit हुआ. So it doesn't always literally means कि इसमें no electricity means कि microphone, speakers या some instruments are still amplified though, लेकिन heavy amplification जैसे बाकी गानों में studio recordings की होती है वो unplugged में नहीं होती.

अनप्लग्ड सॉन्ग्स इस आवर में आप यहाँ पे सुन रहे हैं। अनप्लग्ड, वैसे मैंने आपको बताया तो कि ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, जो कि एमटीवी से शुरू हुआ, बाद में और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ। बॉलीवुड के बारे में बातें करते हैं तो लेट 90s एंड अर्ली 2000s में बॉलीवुड कंपोजर्स जो थे ये रिकॉर्ड करने शुरू हो गए सॉफ्टर एंड ऐसे वर्जन गानों के जो कि प्रमोशंस या लाइव कंसर्ट्स के लिए वो बनाते थे। ये जो वर्जन्स थे इन्हें बाद में ऑफिशियली ब्रांड उन्होंने करना शुरू कर दिया, अनप्लग्ड वर्जन्स। सो अराउंड 2005 एंड 2007 एंड सारे गमापा इन्होंने स्पेसिफिकली एक टाइटल रिलीज किया एल्बम का, जिसका नाम था बॉलीवुड अनप्लग्ड, जिसमें कि क्लासिक हिंदी गाने थे। एंड देन एमटीवी अनप्लग्ड इंडिया में भी लॉन्च हुआ 2011 में, जहाँ पे यू नो अमेरिकन फॉर्मेट से ह्यूजली इंस्पायर्ड थे। लेकिन द परफॉर्मर्स लाइक मोहित चौहान, रवि शेरगिल, रेखा भरद्वाज, शिल्पा राव, जावेद अली, इंडियन ओशन, यूफेरिया जो थे ये ऑटोमेटिकली पॉपुलर हुए। तो सुनते हैं अनदर अनप्लग्ड सॉन्ग फ्रॉम सनम बैंड।

0: को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
2: Keen to score 15 cents per litre off your fuel? From Friday to Sunday, scan your Club Plus card when you spend $100 at Pack and Save, Newworld or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers.

संडे नाइट मेलोडीज में अनप्लग सॉन्ग्स आप यहाँ पे सुन रहे हैं। द सक्सेस ऑफ अनप्लग जो थी, ये बॉलीवुड में कंपोजर्स एंड सिंगर्स को इसकी सक्सेस ने काफ़ी इनकरेज किया कि और भी अनप्लग्ड जो वर्जन्स है बाकी सिंगर्स बनाए, जो कि इंडिपेंडेंटली भी बनाने शुरू हो गए। ऑडियंस को क्यों अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये जो गाने आप अनप्लग सुन रहे हैं, ये आपको क्यों अच्छे लगते हैं, आप भी लिख के भेज सकते हैं 5599 पर। लेकिन जो इन्होंने रीजंस निकाले वो ये थे कि क्लीनर वोकल्स है, वोकल्स आप जो है ये म्यूज़िक में ज़्यादा गायब नहीं हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम हैं, डिफरेंट मेलोडीज़ एंड अरेंजमेंट्स हैं, एंड मोर इंटीमेट फील आती है एक ओरिजिनल साउंड ट्रैक से। सो जिसके कारण जो थे अनप्लग सॉन्ग्स, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने शुरू हो गए। सो फैंस यूज टू गेट अ फ्रेश टेक ऑन फेमिलियर हिट्स। काफ़ी लोगों को ये जो गाने हैं मोर इंटीमेट एंड इमोशनल भी लगते हैं। मतलब आपको अनप्लग्ड गाने क्यों पसंद है, आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो, और आपका फेवरेट अनप्लग्ड गाना कौन सा है वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। 5599 इज़ अ नंबर।

संडे नाइट मेलोडीज में अनप्लग सॉन्ग्स आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे मेरे पास सुहेल, आपने भी मैसेज किया है कि आपको अनप्लग्ड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं अपने घर पे, इवनिंग्स में यूजली आप ट्यून इन करते हैं अनप्लग सॉन्ग्स। यू नो, काफ़ी लोगों को लगता है कि बॉलीवुड ने इन्वेंट किया अनप्लग सॉन्ग्स, बट द फॉर्मेट एक्चुअली बिकेम वेरी पॉपुलर इन 1989, जैसे कि मैंने आपको बताया। इंडिया ने अडॉप्ट किया कॉन्सेप्ट अबाउट 22 ईयर्स लेटर, 2011 में। सो इट टुक क्वाइट अ टाइम इंडिया को ये जो ट्रेंड है, इंडियन सिनेमा को, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को ये ट्रेंड जो है ये अडॉप्ट करने के लिए। अभी तो इनफैक्ट ये भी हो चुका है कि पहले तो इंडिपेंडेंटली गाने आते थे, अभी तो कई बार एल्बम के बीच में भी कई अनप्लग गाने जो है ये रिलीज होना शुरू हो चुके हैं।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स दिल से
2: संडे नाइट मेलोडीज में गजल आवर आपके लिए शुरू हो चुका है एंड इस आवर में ऐसा कुछ करने वाली हूँ जो मैं यूजली अपने शोज में नहीं करती हूँ. आई विल बी रिसाइटिंग फ्यू शायरीज. सो अगर आप भी अपनी शायरी भेजना चाहते हैं 5555 नंबर जहाँ पे अपनी शायरी आप भेज सकते हैं. गजल्स प्ले हो रही है तो शायरी क्यों ना मैं यहाँ पे बोलूँ. वन देर इज़ वेरी ब्यूटिफुल शायरी जो मैंने देखी है एंड दिस शायरी इज अबाउट अनस्पोकन लव एंड मेमोरीज. सो क्या होता है इरशाद, राइट? इरशाद, कुछ बातें हैं जो सिर्फ खामोशी समझती है. कुछ बातें हैं जो सिर्फ खामोशी समझती है. हर बात को लफ्जों में ढलना जरूरी नहीं होता. कुछ पुराने खत और यादें ही काफी है. हर मुलाकात को मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता. क्या बात है यार, क्या बात है. दिस इज लाइक मुझे लगता है कि चन्ना मेरिया की शायरी है ये. एनीवे, गजल एंजॉय कीजिए. अगर आपकी कोई शायरी है आप भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5555 इज़ अ नंबर.

संडे नाइट मेलोडीज में गजल आवर आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड शायरीज आपके लिए मैं कुछ यहाँ पे रिसाइट कर रही हूँ बिकॉज गजल्स है यहाँ पे जो अभी आप गाना सुनने वाले हैं ना उससे पहले ये शायरी तो डेफिनेटली बनती है. सो अगर आपके पास कोई शायरी है वैसे आप भी भेज सकते हैं 5599 पर. इरशाद, ना शिकायत है कोई ना कोई गिला है, ना शिकायत है कोई ना कोई गिला है, जो मिला है वो भी कहाँ कम मिला है. फर्क बस इतना है कि पहले हम मुस्कुरा के जीते थे और अब मुस्कुरा के गम छुपाते हैं. वाह, इसी बात पे सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल.

Sunday Night Melodies में गजल्स आप यहाँ पे सुन रहे हैं. गजल जो है ना, ये ओरिजिनली फॉर्म है पोएट्री का, नॉट जस्ट अ म्यूजिक. सो गजल जो होती है ये एक, अगर शायरी हम कहते हैं कि जो डिफरेंट यहाँ पे हम करते हैं, शायरी को जब हम इंडिपेंडेंट शेयर्स को जब हम एक साथ कर देते हैं तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत देखा जाए तो गजल बन जाती है. जैसे कि गुलजार की बहुत सारी ऐसी शायरी है जिसको अगर हम एक साथ कर दें तो वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल गज़ल बन जाएगी. वैसे ये जो वर्ड है गज़ल, ये एक अरबिक वर्ड है जो कि ओरिजिनली रेफर करता है टू टॉकिंग लविंगली टू बिलव्ड, अपने प्रेमी के साथ प्यार से बात करने के लिए. देन द फॉर्म इट ट्रेवल थ्रू द पर्सिया एंड देन कनेक्टेड विद उर्दू लिटरेचर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मुझे लगता है ना कि अगर उर्दू सीख ली जाए ना, उर्दू के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स अगर आप कंबाइंड में बोल दो तो शायरी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बन जाएगी. मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज लगती है उर्दू. सो अभी एक और गज़ल सुनते हैं एंड उससे पहले एक शायरी तो गज़ल आवर में ज़रूर बनती है. तुम्हारी मुस्कुराहट का असर कुछ ऐसा है, तुम्हारी मुस्कुराहट का असर कुछ ऐसा है कि उदास दिल भी खुशियों से भर जाता है. तुम पास रहो या दूर कहीं, हर पल बस तुम्हारा ख्याल आता है.

0: गजल्स की खास बात ये होती है कि गजल्स रोमांटिक भी यूज़ होती है, वही जो है वहाँ पे हार्ट ब्रेक भी हो जाता है. हर एक इमोशन को मेरे को लगता है कि गज़ल अच्छे से कैरी करती है. सो देखें ना कितनी डाइवर्स होती है गज़ल्स भी. वैसे बातें करते हैं तो एक शायरी मैंने देखी है जो वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड टिपिकली सूट्स जो अभी हम गज़ल सुनने वाले हैं. हर लफ्स में तेरा जिक्र करते हैं, हर लफ्स में तेरा जिक्र करते हैं, हर ख्वाब में तेरा इंतज़ार करते हैं. ये दिल भी अजीब मुसाफिर है, जहाँ जाता है तेरा ही दीदार करता है. इसी बात पे आशा भोसले एंड जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल सुनते हैं.
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

संडे नाइट मेलोडीज में गजल आवर आप यहाँ पे सुन रहे हैं। गजल्स जो मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा था, बहुत ही ब्यूटीफुल गजल्स जो है ये रिलीज होती थी, अब का टाइम ऐसा नहीं रह चुका है। वाई वी गो बैक टू गजल्स जो हम सुना करते थे, वो इसलिए शायद बिकॉज अब प्रॉपर गजल जो रिलीज नहीं हो पाती है। वेल, जो अभी आप गजल सुनने वाले हैं उसके लिए शायरी है। दिस शायरी इज अबाउट डिस्टेंस एंड नॉस्टैल्जिया। वक्त की धुंध में कुछ इस तरह खो गए हम, वक्त की धुंध में कुछ इस तरह खो गए हम। शहर बदला, मकान बदला, बस नहीं बदले तो वो यादें जो हर शाम चिराग बनकर दिल में जल उठती है। इसी बात पे दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग जो मुझे लगता है बहुत लोगों को नॉस्टैल्जिक एंड इमोशनल कर देता है।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हमिंग अलोंग विद सैंडी, एंड 12 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है। थोड़ी देर पहले हमने गजल्स सुनी एंड बहुत सारी शायरी भी यहाँ पे की गई। थैंक यू सो मच आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे। तो अभी कुछ डेडिकेशंस जो मेरे पास आई है, ये गाने भी आपके लिए यहाँ पे प्ले करती जा रही हूँ। सो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 पर। डेडिकेशन के लिए, शाउट आउट्स के लिए भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। थोड़ी देर में कम्युनिटी न्यूज़ भी आपके लिए रहने वाली है, क्या आपके आसपास हो रहा है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। स्टे ट्यून्ड।

संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पे सुन रहे हैं कम्युनिटी में. वैसे ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की मासिक रामायण कथा जो है ये 31 जुलाई को होने वाली है 7:15 बजे यानी कि 7:15 PM. सो ARST कम्युनिटी हॉल में आप जा सकते हैं जो कि 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी में लोकेटेड है. अगर आपको बात करनी है डिटेल्स में आप बात कर सकते हैं ऑन द नंबर 0226705271 पर. इट्स 0226705271. रवीन कुमार से बात कीजिए जहाँ पे और भी डिटेल्स आपको पता चलेगी. एंड ऑल्सो न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री राम लीला लेके आ रहे हैं एंड ये होने वाली है 8th ऑफ अगस्त को. तो इस डेट को भी सेव कर लीजिए.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
3: मुझे भी।
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।

संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि कई बार जो हमारे पेरेंट्स ने हमें चीज़ें बोली होती है वो अब जाके हमें समझ में आती है जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कि यार जो उन्होंने बोला था ना सही बोल रहे थे। उस समय पर हमें ऐसा लगता है कि क्या लेक्चर दे रहे हैं, ये हम नहीं समझ पा रहे, ऐसा थोड़ा होता है, उस रिश्तेदार को ऐसा बोल रहे हैं, उस पर्सन को ऐसा बोल रहे हैं, इनका ये कहना है ये तो गलत है। लेकिन जब हम उस स्टेज पे आते हैं जहाँ पे हमारे सर पे जिम्मेदारी होती है, तो हमें काफ़ी बातें सच लगना शुरू हो जाती है कि जो कहा था उन्होंने सही कहा था। मैंने ये स्टेटमेंट अभी मेरे को लगता है रिसेंट अपनी लाइफ में बहुत बार बोली है, सही कह रहे थे। किसी पर्सन के बारे में भी अगर बात है, रिश्तेदार तो रहती है ना उसमें, किसी रिश्तेदार के बारे में भी बात है तो सही बोला था इसके बारे में, ऐसी है ये। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ है आप भी शेयर कीजिए यहाँ पे। सो 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे आप अपनी बातें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं।

संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। एंड जहाँ पे 90s के गाने आप यहाँ पे सुन रहे हैं, 90s के मेरे को लगता है गाने काफ़ी लोगों के फेवरेट गाने रहे हैं, बिकॉज वाइल ग्रोइंग अप काफ़ी लोगों ने इन गानों के साथ ग्रो किया है। एंड काफ़ी लोगों के कैसेट्स के इसके साथ मेमोरीज है, काफ़ी चीज़ों की मेमोरीज, आपकी कॉलेज या लाइफ के किसी मोड की मेमोरीज, किसी स्टेज की मेमोरीज जो है कनेक्टेड हो सकती है इन गानों के साथ। आपका 90s का फेवरेट गाना कौन सा है आप भी यहाँ पे लिख के ज़रूर भेज सकते हैं। वैसे अंकिता ने यहाँ पे मैसेज किया है, थैंक यू सो मच अंकिता यहाँ पे मैसेज करने के लिए। अंकिता ने थोड़ी देर पहले हम कुछ बातें कर रहे थे कि यू नो हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो समय बोलते थे सही बोलते थे, एंड अंकिता ने यहाँ पे लिख के भेजा है कि आपको जब भी आपके घर में आप लाइट्स ऑन करके छोड़ के जाती थी तो सब आपके पीछे पड़ जाते थे कि लाइट्स क्यों ऑन की है, बंद करो, एंड नाउ यू आर डूइंग सेम। आई टोटली एग्री, इवन आई डू सेम। अगर फालतू की लाइट्स ऑन देखती हूँ तो भाग के जाके सबसे पहले तो लाइट्स बंद करती हूँ कि ये लाइट क्यों ऑन है यहाँ पे। दिस इज वन थिंग वी डेफिनेटली डू। वेल आप भी यहाँ पे मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। 555 इज अ नंबर।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम। Does your vacuum cleaner suck? Lawn mower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimize landfill waste. To find out what's accepted, where to place it, and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, All Together Auckland.
2: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ, अच्छा?
2: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह।
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: सैंडी एंड्रोस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड्रोस पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywood's biggest hits. दिल से
3: संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पे सुन रहे हैं। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। 12 बजे तक मेरा और आपका साथ है यहाँ पे एंड उसके बाद बैक टू बैक कुछ हिट गाने यहाँ पे आप सुनने वाले हैं अंटिल मॉर्निंग। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे विजय एंड पूजा आपका साथ देने के लिए यहाँ पे पहुँच जाएंगे ब्रेकफास्ट शो में। खूब मस्ती, बहुत सारे टॉपिक्स, कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ वो आपके लिए लेके आते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी आपके लिए यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि आपकी सुपर सिटी में होने वाले हैं, जिसकी टिकट जीतने का मौका भी आपको मॉर्निंग शो में, ब्रेकफास्ट शो में यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड।

संडे नाइट मेलोडीज आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। एंड मेरे पास रितेश ने यहाँ पे मैसेज किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। थैंक यू सो मच रितेश आपके मैसेजेस के लिए। एंड आपने दो तीन एक्चुअली भी मैसेज किए हुए हैं यहाँ पे। इन्होंने शेयर भी किया है कि यहाँ पे वो नए आए हैं, वो 3 महीने हुए हैं उनको न्यूजीलैंड में आए, एंड स्टिल अभी भी वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लिविंग इंडिया। सो मेरे को लगता है कोई भी जब अपनी होम कंट्री से यहाँ पे आता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं, तो वहाँ पे रेडियो एक फॉर्म बन जाता है कनेक्ट करने के लिए। समथिंग यू मिस समथिंग आउट देयर, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको कनेक्ट करती है अपनी होम कंट्री के साथ। सो थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे वैसे सुनने के लिए। एंड काफ़ी लोगों की जो स्ट्रगल होती है यहाँ पे, उससे क्या होता है कि रेडियो जब आप सुनते हैं ना तो एक कनेक्टिविटी फील होती है कि यह शायद कोई है हमारे साथ यहाँ पे, तो वो एक फीलिंग बन जाती है आपके लिए, एक साथ बन जाता है आपके लिए। वेल आपकी आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड में आए कितना समय हो चुका है, आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। 5599 इज़ अ नंबर।

0: Good Branch near.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
7: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: Puccini.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Night Flight.

अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: मीडिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: फॉर 30 इयर्स अवारा कॉस्मेटिक एंड लेजर क्लिनिक हैज हेल्प्ड कीवीज लुक एंड फील द बेस्ट। Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। Night Flight.

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसी ने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari koi branch nahi hai.
6: Night Flight.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
4: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।

जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

ना राग है ना द्वेष है, अघोर शिव महेश है, है, है, है। ना राग है ना द्वेष है, अघोर शिव महेश है, ना राग है ना द्वेष है, अघोर शिव महेश है।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में?
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow, today. Call 0800-77-HEETA. North End Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advisor.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
6: पेट्रोल पंप देखते ही टेंशन हो जाती है अब टाइम है उसके पास से मुस्कुराते हुए निकलने का टाटा नैनो ऑटो ग्रुप ईवी और हाइब्रिड सुपर साइट में ब्रांड न्यू ईवीज और हाइब्रिड्स सिर्फ 29,990 से 7 साल की वारंटी के साथ अवार्ड विनिंग लीप मोटर बाइक एसयूवीज एंड द फेमस डोंगफेंग रेंज ट्रेड-इन्स वेलकम फाइनेंस भी अवेलेबल है फ्यूल पर पैसे बचाइए ग्रेट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाटा नैनो फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
1: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The terrorist suspect wanted in the Berlin Pride attack has been shot and killed by police. The 21-year-old had been on the run after driving his van into a crowd that left one person dead and 29 others injured. Speaking through a translator, Chancellor Friedrich Merz says extremists have no place in society.
8: This is poison for our freedom. Let us not be afraid.
7: There are concerns that Nationals' campaign to raise paid parental leave gives with one hand but takes from the other. Council of Trade Unions' Rachel McIntosh is sceptical.
9: They spent 3 years reducing the ability for working people to have decent lives and then running up to an election, they dangle what looks like a carrot but has a downside.
7: Auckland Council wants its ban on late-night liquor sales extended to online retailers. It introduced the 9pm cut-off time for off-licence stores in 2024. Spokesperson Ben Brooks says remote sales aren't covered.
10: We'd like to see that loophole closed, and the government is currently doing a review of the Sale and Supply of Alcohol Act, so we've asked them to do that.
7: Tauranga City Council is unsure if a cordon will be lifted today around Mount Maunganui. A slip at the weekend has seen major regression at the site of the original landslide that killed 6 people in January. To sport, New Zealand high jumper Hamish Kerr has pulled out of the Commonwealth Games in Glasgow due to burnout. The Olympic and world champion was due to compete tomorrow morning. In motorsport, with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty, Liam Lawson's back in the points in Formula. The RB driver finishing 8th at the Hungarian Grand Prix thanks to a 2-stop strategy.
11: Really good job. Very good call on the strategy as well. Very, very good job.
7: McLaren's Lando Norris won from pole.
0: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
13: Suchit kiya jata hai ki Ravi Ravimba Fiji ke swargiye R. Mogam Reddy ki putri yane Simla Lautu ka Fiji ke स्वर्गीय यंकटेश पेरमाल अर्जुन सामी की पत्नी पापा टोयटोय के अरविंद सामी की मां शेख मनोर सामी की मृत्यु मिडल मो हॉस्पिटल में हो गई अंतिम संस्कार आज दिन में 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210437348 पर कॉल कर सकते हैं याद रहे रवि रविम्बा फिजी के स्वर्गीय आर मोगम रेड्डी की पुत्री यानी सिमला लौटो का फिजी के स्वर्गीय यंकटेश पेरमाल अर्जुन सामी की पत्नी पापा टोयटोय के अरविंद सामी की मां शेख मनोर सामी की मृत्यु मिडल मो हॉस्पिटल में हो गई अंतिम संस्कार आज दिन में 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021 0437-348 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि शेरोन, संजेश और शिमल कुमार के पिता सुशीलावती कुमार के पति यानी सांबेतो नेंडी फिजी के भूतपूर्व निवासी वैली कॉन्क्रीट लेयर्स के सत्येंद्र कुमार उर्व बादू की मृत्यु मिडलमो हॉस्पिटल में हो गई। दर्शन के लिए या माफ कीजिएगा अंतिम संस्कार आज शाम 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम इन अनसाइड क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0244-5080 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे शेरोन, संजेश और शिमल कुमार के पिता यानी सुशीलावती कुमार के पति सांबेतो नेंडी फिजी के भूतपूर्व निवासी वैली कॉन्क्रीट लेयर्स के सत्येंद्र कुमार उर्फ बादू की मृत्यु मिडलमो हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज शाम 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-0244-5080 पर कॉल कर सकते हैं।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
14: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
13: आज के मौसम के बारे में कहा गया इट्स गोइंग टू बी अ फाइन डे। वैसे खूबसूरत हवाओं का साथ आज दिन भर बना रहेगा। सनराइज अगले घंटे 7:23 AM पर होगा और आज का सनसेट 5:33 PM पर। हाई ऑफ 13 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर, जबकि ओवरनाइट टेम्परेचर आज 4 डिग्रीज तक रहने वाला है।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
0: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल। ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको। इंग्लिश heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast catch up. The breakfast show with VJ and Pooja.
15: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
13: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आज है मंडे 27th of July और मैं पूजा आ गई हूँ आप सभी का साथ देने के लिए आज के हमारे ब्रेकफास्ट शो के इस सफर में। अनफॉर्चुनेटली विजय वोंट बी जॉइनिंग अस फॉर द ब्रेकफास्ट शो फॉर दिस वीक, क्योंकि कुछ अर्जेंट चीज़ें हैं दैट ही नीड्स टू अटेंड, विच इज वाई हम पर ऑन द ब्रेकफास्ट शो मैं आपके साथ जरूर बनी रहूंगी। आई मीन माइनस विजय, आई नो द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा होता है, बट एटलीस्ट आई एम हियर to keep you all company and I hope कि मेरी company आपको पसंद आए और breakfast show का मजा आप हमारे साथ जरूर ले। वैसे अभी से लेकर ठीक दिन में 10 बजे तक हमारा और आपका ये साथ बना रहेगा। So 104.2 FM या Rover app पर अगर आप हमें फिलहाल सुन रहे हैं, thank you so much आप सभी के साथ और समय के लिए। तबीयत थोड़ी सी खराब है, गले में शायद कुछ हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है, बट आई होप इवन विद दिस वॉइस आज हम आपके साथ बने रहें और आप सफर हमारे साथ जरूर इंजॉय करें। मौसम भी ऐसा है ना कि क्या कहें, कभी कुछ तो कभी कुछ, और ऐसे बदलते मौसम में तबीयत पर बहुत गहरा असर पड़ता है, विच इज़ वाई बहुत ज़रूरी है कि आप बदलते मौसम के साथ साथ अपने आप का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बिकॉज इट जस्ट कीप्स ऑन बॉदरिंग यू, यू नो। अभी एनीवेज लिविंग ऑल दैट असाइड, आज मंडे है, एक नई सुबह एक नए सफर के साथ हो रही है आज की शुरुआत और वीकेंड उम्मीद है आप सभी का बहुत बढ़िया बहुत कमाल का गया हो। और वीकेंड जबकि आप सबने अपना अपना एंजॉय किया, आज वापसी कर रहे हैं बैक टू रियलिटी वी कॉल इट इजंट इट, मतलब ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल भेजना एंड द किड्स गोइंग टू स्कूल। शायद आप भी सुबह सुबह जाग चुके हैं बिकॉज यू नीड टू बी इन स्कूल एन अ पर्टिकुलर टाइम एंड इतनी सुबह जागना पड़ता है आपको टू बी एट स्कूल ऑन टाइम। सो वट एवर द सिचुएशन इज, वैसे कहते हैं ना कि सुबह जागते हैं जब तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम अपनी सुबह को प्लान करते हुए दिन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो वट एवर योर सिचुएशन इज, यू आर ऑन हम राइट नाउ द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा सुन रहे हैं आप। थैंक यू वंस अगेन, सफर की शुरुआत आप सभी के साथ हम कर रहे हैं। रिमेंबर दिस इज ब्रेकफास्ट कैचअप, जहां पर खबरों के साथ तो कैचअप करेंगे ही करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे थोड़ी देर बाद एक बहुत ही हैप्पी न्यूज के साथ। सनी साइड अप में कमिंग अप वेरी शॉर्टली।

0: Side Up. Absolutely sunny side up आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, और जैसे कि हमने कहा था कि आपके लिए कुछ ऐसी हैप्पी स्टोरीज दैट विल मेक यू फील यू नो सो पॉजिटिव अर्ली इन द मॉर्निंग, की आपको भी खुशी होगी जानने में कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना सारा पॉजिटिविटी और लव जो है ये स्प्रेड करते हैं, एंड इनकी वजह से यू नो यू फील हैप्पी, स्पेशली ऐसी खबरों के साथ जब आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो अच्छा लगता है. और ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि क्या है वो हैप्पी स्टोरी जो आपके लिए हम लेकर आए हैं. सबसे पहले आपको हम बता दें कि आज की कहानी जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स से है, मिजोरी से है, और ये जो कहानी है बहुत खूबसूरत है. इट्स अबाउट अ लेडी और इनका नाम जो है बताया जा रहा है इज शैम्पेल एंडरसन. शैम्पेल जो है इनके बारे में कहा गया है कि शी इज़ अ हेल्थ केयर वोका, और अपना जो काम है ये फिनिश करने के बाद ये दरअसल घर जाती हैं और प्रिपेयर करती हैं और पैक करती हैं मोर देन 100 फ्रेश लंचेस एवरी स्कूल डे अपने नेबरहुड में जो बच्चे हैं उनके लिए. शी प्लेसेस द मील्स ऑन अ टेबल आउटसाइड अ हाउस, और ये श्योर करती हैं दैट एनी चाइल्ड हु नीड्स फूड कैन टेक अ लंच, एंड ये कोई भी सवाल उनसे नहीं पूछती हैं. व्हेन शी स्टार्टेड एज अ स्मॉल सेल्फ फंडेड एक्ट ऑफ काइंडनेस, इनका ये जो छोटा सा इनिशिएटिव है ये बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि पूरी की पूरी कम्युनिटी आज शैम्पेल को सपोर्ट करती है, एंड शी होप्स कि इनका जो मिशन है ये और आगे जाए और आसपास जो फ्री यूथ सेंटर्स हैं बच्चों के लिए, लोकल चिल्ड्रन के लिए, उन तक भी ये अपनी यू नो काइंडनेस जो है पहुंचा पाए. एंड इट्स ब्यूटीफुल रिमाइंडर कि एक केयरिंग पर्सन ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है कितनी खूबसूरती के साथ बदल सकती है. सो यू नो वी हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज हियर इन न्यूजीलैंड एज वेल, और न्यूजीलैंड की बातें अगर जो हम करें तो यहाँ पर भी ऐसे सिचुएशंस आपने सुने होंगे. वी हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम सो मेनी टीचर्स सेइंग कि बच्चे जो है उनके स्कूल्स जब आते हैं तो उनके पास नाश्ता नहीं होता, प्रॉपर शूज़ नहीं होते, बैग्स नहीं होते, एंड कुछ स्कूल्स जहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो लंच प्रोग्राम है वो तो अवेलेबल है, बट हैविंग सेड अबाउट दैट वी नो कि गवर्नमेंट का जो लंच प्रोग्राम है रिसेंटली क्या कुछ चेंजेस के बाद उसे कितना क्रिटिसिज्म मिला एंड ऑल, बट वी एक्सपीरियंस सर्टन थिंग्स हियर इन न्यूजीलैंड as well. एंड ऐसी एक कम्युनिटी अगर यहाँ पर भी आसपास के बच्चों को हेल्प करने में लग जाए, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन हु एक्चुअली डू ऑल दीज थिंग्स, तो इमेजिन कि कितने बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा स्कूल में, एंड दे डोंट एक्चुअली हैव टू फील एम्बेरस्ड बिफोर दे आस्क फॉर हेल्प. सो अ पर्सन लाइक शैम्पेल एंडरसन, शी इज अमेजिंग, शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और ऑफकोर्स बहुत सारा लव और पॉजिटिविटी जो है ये अपने आस पास अपनी नेबरहुड में स्प्रेड कर रही हैं, एंड विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट. तो आज की ये सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए, उम्मीद है यू also get this positive vibe to start your morning with us.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Hey, dekho maa gaye.
3: Ladies and gentlemen.
4: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniya hoti hai raw. Emotions hote hai real. Aur conversations hote hai bina mask ke.
5: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
4: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
6: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
7: Good news, tradies. This Saturday, Micro 10 Mega Botany IA for a free sausage, supplier demos on site or giveaways, range, convenience or aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Micro 10 Mega Botany.
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
9: Mike here from Novus Glass. When this happens...
10: Ah!
3: Novus.
9: Just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
10: Show us your crack.
11: Ah, Novus!
12: Takanini Auto Group mein electric or hybrid cars or SUVs. Brand new. Sirf 29,990 se. Leap Motor, Dongfeng or bike ke latest hybrid or EV models. Trade-ins welcome. Finance bhi available hai. Visit Takanini Supersite. Petrol or diesel ke crazy prices ko boliye goodbye. Aur nai ya quality used EV ya hybrid ghar le jaiye. Aur haan, ye almost sab kuch trade kar lenge. Bas, aapki mother-in-law ke ilawa. Takanini Auto Group. 170 Great South Road, Takanini. Fees, C's, D's and credit criteria apply.
4: The beat of Bollywood.
13: World's best. Hamari good brands bhi hai.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Global headlines.
0: आज इस सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में सबसे पहले कहा गया है थाउजेंड्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है इसकी वजह से फ्रेश वाइल्ड फायर्स अक्रॉस वेस्टर्न कनाडा रिपोर्ट किए गए हैं वाइल मोर देन 250,000 लोगों ने इवैक्यूएट किया है मेजर वाइल्ड फायर्स कंटिन्यू टू बर्न अक्रॉस पार्ट्स ऑफ फ्रांस एंड स्पेन एज वेल और इसके अलावा कहा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है द डेथ्स ऑफ 8 फैमिली मेम्बर्स जो कि मिशिगन में एक घर में आग लगने के बाद हुई और इस पर जो भी रिपोर्ट सामने आएंगे डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे साइंटिस्ट ने कल यानी कि संडे 26th ऑफ जुलाई को शॉर्टेस्ट डे ऑफ 2026 बताया विद Earth rotating slightly faster than usual. While the difference is only a fraction of a millisecond, experts ka kehna hai it could have a small impact on accuracy of GPS and satellite systems as well. और भारत की खबरों में अगर देखा जाए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया आफ्टर वीक्स ऑफ नेशन वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स ओवर अ मेजर नेशनल एग्जाम पेपर लीक नीट एग्जाम के बारे में बातें जो है ये हो रही हैं और गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है रिफॉर्म्स टू द एग्जामिनेशन सिस्टम फॉलोइंग एन अग्रीमेंट विद प्रोटेस्ट लीडर्स एज वेल फिजी की खबरों में कहा गया है फिजी टीचर्स यूनियन गवर्नमेंट से मांग कर रही है टू अर्जेंटली रिजॉल्व ongoing payroll delays. Teachers ka kehna hai ki they deserve to be paid accurately on time. Aur agar hum Glasgow mein ho rahe Commonwealth Games ki baat kare to kaha gaya hai Australia jo hai ye filhal Commonwealth Games dominate kar rahi hai the medal tally aur 13 medals unke paas hai including 6 golds. Nigeria filhal second position par hai followed by host nation Scotland aur New Zealand has won 1 gold and 1 bronze medal so far jabki India has opened its account with a bronze in para powerlifting. Olympic silver medalist Mirabai Chanu jo hai, she begins her campaign today as India looks to add its medal tally. Let's see inka ye पूरा का पूरा जो रिजल्ट है ये कैसा सामने आता है सो रिमेंबर ग्लासगो में हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जिससे जुड़े अपडेट्स आपके लिए हम डेफिनेटली लेकर आते रहेंगे
4: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
16: मैं लाऊं अपना ए गेम
4: ब्रॉट टू यू बाय इनडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: बॉलीवुड की खबरों में देखा जाए तो एक शो है जिसके बारे में आज हम आपसे बातें करना चाहते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर शो जो कि आई कैन से कि इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं, विच इज़ बेसिकली आदर्श बाल विद्यालय. अगर देखा जाए तो आदर्श बाल विद्यालय एक कॉमेडी ड्रामा है एंड इट्स अबाउट अ स्ट्रगलिंग गवर्नमेंट स्कूल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. स्कूल के हेड मास्टर है ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिसे के मेनन ने प्ले किया है. एंड ही ड्रीम्स ऑफ विनिंग अ गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन, जहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ द टॉप 10 स्कूल, उनको एक ट्रिप मिलेगा टू कैम्ब्रिज इन लंदन. और ये गोल अचीव करने के लिए वो पुश करते अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को टू इम्प्रूव देयर एग्जाम रिजल्ट्स. लेकिन इस पूरे सिचुएशन में कैसे कैसे ऑब्स्टिकल्स वो फेस करते हैं, जिसमें लैक ऑफ फैसिलिटीज, पुअर फंडिंग, और स्टूडेंट्स जो सिर्फ स्कूल आते हैं फ्री मील्स के लिए, पढ़ाई पर उनका कोई ध्यान नहीं होता, साथ में यू नो करप्ट पॉलिटिशियंस जो इंटरफियर करते हैं स्कूल के मामलों में, ये पूरी की पूरी कहानी इस तरह से आपको देखने को मिलेगी. वैसे इस शो में के मेनन, प्रसन्ना बिष्ट, अभिमन्यु सिंह जैसे बहुत सारे कमाल के कलाकार आपको दिखेंगे, मेमोरेबल कैरेक्टर्स जो है ये प्ले करते हुए. और कुछ बहुत ही ज़रूरी यू कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम से जुड़े इश्यूज़, रियल इश्यूज़ पर ये कुछ ना कुछ अपनी कहानी जो है ये दर्शाते हैं. वैसे आप ज़रूर ये देख सकते हैं, इट्स अवेलेबल. आई थिंक आदर्श विद्यालय जो है ये अभी ऑनलाइन आ चुका है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो फाइंड आउट कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रहा है, बिकॉज इस पर्टिकुलर जो शो को, वेब सीरीज को मैंने अभी तक नहीं देखा. आई हैव सीन बिट्स एंड पीसेस हियर एंड देयर, बट आई हैवन सीन द होल यू नो सीरीज. सो मैं भी जरूर समय निकाल कर इसे देखूंगी, टाइम निकाल कर देखूंगी. बट इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल, अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे देखने के लिए तो आदर्श बाल विद्यालय ये आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं. आई थिंक द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नो इज क्वाइट एंटाइसिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपको भी पसंद आएगी. सो अमेजोन प्राइम वीडियोज पर ये अवेलेबल है, 7 एपिसोड्स है इसके, जो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं. ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
1: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Accurate traffic.
3: New tasty rise bars and bites in supermarkets.
4: Final day today, lots of sunshine. Cool though, got a high of 14. Into the city, Northern Motorway just slowing down at Silverdale, and we're slow Greville to Glenfield. 20 minutes Constellation Drive to the CBD, 40 from Silverdale. Northwestern, 21 in from Massey, bit of traffic west of there and slow close to the city. Southern, we're slow Drury on and off to Monaco, 23 minutes Monaco to town, 43 Drury to the city.
3: New tasty rise, low carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking.
5: Coffee, the usual.
6: How about the unusual?
7: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
8: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognized qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
12: SIT Online. Learn without limits.
13: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है, तो इसका जवाब है टाकानिनी ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट. ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू, 7 साल की वारंटी के साथ. एसयूवी हाइब्रिड्स, फोर व्हील ड्राइव्स, परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है. विजिट टाकानिनी ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाकानिनी. ट्रेड-इन्स और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल. फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. टाकानिनी ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाकानिनी.
14: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने.
15: ले ले तुम
16: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
17: द
2: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye on hum lekar aa rahe hain playing Bollywood's biggest hits. वैसे breakfast catch up aapke liye jaari hai. And just to let you all know ki agar abhi tak aapne hamara award winning Unfiltered with Sandy and Roozbe ka podcast ye nahi check out kiya hai, then you definitely need to do that. Kyunki recent episode mein aaye hain none other than Shanil Lal, who has broken all the barriers and spoken about the LGBTQ+ community, their rights, racism, representation and of course the search for equality. शनील जो हैं ये दे देम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं और ये एक जर्नलिस्ट हैं, अ पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड LGBTQIA+ एक्टिविस्ट है. इन्होंने कन्वर्जन थेरेपी एक्शन ग्रुप जो है इसे फाउंड किया था एंड ही लीड्स द सक्सेसफुल कैंपेन दैट हैज रिजल्टेड इन न्यूजीलैंड बैनिंग कन्वर्जन थेरेपी इन 2022. ही वाज नेम्ड द यंग न्यूजीलैंड ऑफ द ईयर 2023 में और शनील ने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है, इंक्लूडिंग ऑकलैंड प्राइड, रेनबो यूथ एंड अधिकार आउट एरोआ एज वेल. तो इस कन्वर्सेशन में उन्होंने बहुत सी जरूरी चीजों पर बातें की है कि क्यों फैमिली सपोर्ट मैटर करता है, कैसे एवरीडे न्यूजीलैंडर्स जो है ये बेटर एलाइज हो सकते हैं और यू नो पब्लिक डिबेट्स एंड ऑपोजिशन from groups like a particular organization, कैसे वो discriminate करते हैं LGBTQ+ community के लोगों को, और एक campaign जो इन्होंने कैसे एक इतना बड़ा campaign किया जो conversion therapy है इसको New Zealand में ban कराने के लिए. तो ये सारी चीज़ों पर इन्होंने बातें की हैं जो आप ज़रूर जाकर checkout कर सकते हैं Unfiltered के latest podcast के episode में. और याद रहे अगर आपको ये पूरा का पूरा audio चाहिए इस podcast का तो आप drive लिखकर 5599% send कर सकते हैं, हमारे पास लिंक आप तक पहुंच जाएगा. बट डोंट फॉरगेट आज है मंडे 27th of July और आज की सुबह जबकि आपके नाम हम कर रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो, रिमाइंडिंग यू ऑल कि अगर आज आपका बर्थडे है या शादी की सालगिरह हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा. अगले घंटे हम आपको विश भी करेंगे एंड कमिंग अप वेरी शॉर्टली इस घंटे का सवाल भी आपके लिए हम लेकर आएंगे जिसका जवाब देते हुए हमारे साथ आप शामिल हो सकते हैं आज के हमारे इस सफर में. सो बने रहिएगा.

0: Great South Road.
1: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
3: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
4: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us, Manuka. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
5: Breakfast catch up. Throwback.
7: उम्मीद है कि हमारा ब्रेकफास्ट कैचअप का सफर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आप एंजॉय कर रहे हैं. और फिलहाल मंडे द 27th ऑफ जुलाई है. बस फ्यू मोर मिनट्स एंड 7 बज जाएंगे, जिसके बाद आपके लिए न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट्स हम जरूर लेकर आएंगे और शुरुआत करेंगे अगले घंटे के सफर की, विच इज बेसिकली मॉर्निंग मैडनेस. बट बिफोर वी डू दैट, मैंने कहा था ना इस घंटे का सवाल भी आपके लिए लेकर आएंगे. आज आपको गेस करनी है ये बॉलीवुड मूवी, जिसका एक बेसिक सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी. बेसिकली जो प्लॉट है ये डिस्क्राइब करूंगी. You have to identify कौन सी फिल्म है. So, इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से कि it starts as a rivalry over showing up late to an interview between two people. And this particular situation changes जब ये दो complete strangers end up sharing an apartment. कुछ situations उनकी life में होते हैं जिसके बाद वो अपनी life से जुड़ी हर एक चीज को question करना शुरू कर देते हैं. कौन सी फिल्म ये हो सकती है? So, remember, this particular movie is something about an argument and rivalry that started because someone showed up late for an interview, jiske baad things change and these two complete strangers share an apartment together. Fir kuch consequences hote inki life mein which makes them question everything related to their life. If you know, you know, because bahut hi popular film thi ye jab ye film aayi thi, when it released. Details isse jude zyada main dene wali nahi, otherwise jawab bata do wahi acha hoga. But if you've got the answer, BF likhna hai aapko, apna naam likhna hai aur 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट कर देना है. अगले घंटे देखेंगे आप में से कितने लोगों ने हमें सही तो कितने लोगों ने गलत आंसर्स दिए हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सो लास्ट वीक तो काफी खराब मौसम था, मतलब जिस तरह से बारिश हो रही थी, कुछ कुछ टाइम पर हैवी रेन थंडरस्टॉर्म्स भी हो रहे थे, बट आज के लिए बताया गया है पॉसिबली इट्स गोइंग टू बी अ फाइन वेदर और हल्की हल्की हवाओं के साथ ऐसे दिन भर बना रहेगा। सनसेट 5:33 PM पर, सनराइज इसी घंटे 7:23 AM पर होगा।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजय एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मन। English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Morning madness. The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
1: Good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं पूजा आपका साथ दे रही हूँ on the breakfast show with Vijay and Pooja. आज है Monday, 27th of July and this is Morning Madness. Morning Madness में आप सभी का special welcome. इसी घंटे थोड़ी देर बाद आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा according to your horoscopes. आपको बताएंगे राशि vibes में and followed up by that रहेगा आज का हमारा celebrity alarm. एक और एक आवाज आपको सुनाएंगे बड़ी खूबसूरत सी और आपको अनुमान लगाना होगा कि किन की आवाज है और साथ ही साथ 7:30 न्यूज हेडलाइंस जो है ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे एंड डोंट फॉरगेट कि दिस इज द आवर जहां पर हम आपको हैप्पी बर्थडे विश करने वाले हैं तो यू हैव टू बी विद अस फॉर दैट तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए रहेगी बट साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया मौका एक बहुत ही अमेजिंग सा शो होने वाला है नाउ इफ आई पुट इट करेक्टली वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सर्ट्स ऑफ दिस ईयर ये होने वाला है और इसके लिए अगर आपको डबल पासेस जीतने हैं तो करना क्या है जानने के लिए कीप लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा

0: show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho, chup ho ja.
0: Rashi Vibes.
2: तो आज का राशि क्या वाइब दे रहा है आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स, लेट्स चेक दैट आउट. मेष यानी एरीज, आपके लिए कहा गया है कि दिन अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको हासिल होंगे और किसी बड़ी बाधा से दूर होने की वजह से काफ़ी खुश रहेंगे आज आप. नौकरी के मामले में सफलता हासिल करेंगे, पुराना रोग उभर कर वापस परेशान कर सकता है, इसलिए बी अ बिट केयरफुल. वृष यानी कि टॉरस, आपके लिए कहा गया कीमती चीज़ों को संभाल कर रखें, बिजनेस अच्छा चलेगा इफ़ यू आर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस और अ बिग बिजनेस. कुछ एक्सपेंसेस की बातें सामने आ सकती है, यू नीड टू मैनेज योर फाइनेंसेस प्रॉपरली और साथ ही साथ अपनी बातों पर कंट्रोल बनाकर रखिए, अदरवाइज यार बनते रिश्ते बिगड़ जाएंगे. मिथुन यानी जेमिनी, आपके लिए कहा गया है बिजनेस रिलेटेड ट्रिप पर अगर आप जाने वाले हैं, थोड़े से नर्वस है, कंसर्न है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल गो एज यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू. और डूबी हुई रकम भी आपको वापस से मिल सकती है, फायदे के बहुत से मौके हाथ लगेंगे, आइडेंटिफाई देम एंड मेक द मोस्ट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज. कार्यक्रम कैंसर, बिजनेस आपका प्रोग्रेस करेगा एंड ये देखकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, रिस्क उठाने की हिम्मत आप में आएगी फाइनली और कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो है आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होंगे, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर और भी अमेजिंग होता जाएगा. सिंह यानी कि लियो, कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा, राइट एडवाइस राइट लोगों से ले और यू नो गाइडेंस जो है अगर सही प्रोवाइडेड हो तो इस मामले में भी आपको सफलता मिल सकती है. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो है आपकी कोशिशों से आप जरूर नोट करेंगे. कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए कहा गया है पैसे के बहुत से या पैसों से फायदे के बहुत से मौके हाथ लगेंगे. वैसे आपके लिए बताया गया है कि बातों पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और कोई ऐसा काम जो है अगर आप कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें, स्पेशली किचन में अगर कोई काम आप कर रहे हैं आज आपको थोड़ा केयरफुल रहना है. अपनी बातों में किस तरह के शब्दों का टोन का इस्तेमाल आप करते हैं केयरफुल हो जाए, अदरवाइज थिंग्स विल गेट रियली अगली फॉर यू. तुला यानी कि लिब्रा, आपके लिए बताया गया है जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिसकी वजह से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे आप, सुख के साधन मिलेंगे एंड यू'ड बी अ वेरी हैप्पी पर्सन टुडे. नौकरी में भी आपके कलीग्स आपका साथ जरूर देंगे. वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं इसीलिए वर्क ऑन इट, अदरवाइज भविष्य में चलकर फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. कोई बड़ा फायदा आपके हाथ लग सकता है और किस्मत भी आप पर एकदम मेहरबान है जिसकी वजह से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप हासिल करेंगे. धनु यानी सेगिटेरियस, भागदौड़ अधिक होगी, स्टूडेंट है अगर जो आप तो सफलता हासिल करेंगे और किसी हैप्पी ओकेजन में भी भाग लेने का मौका आपको मिल सकता है. मकर यानी कैप्रिकॉन, आज लेन देन में थोड़ा केयरफुल हो जाया, बातों में हल्के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, रिश्ते खराब होंगे एंड आपको परेशानी होगी. कोई यू नो बुरी खबर मिल सकती है जिसके लिए मेंटली आपको थोड़ा तैयार रहना है, चिंता और तनाव आज आपको घेरे रहेंगे. कुंभ यानी कि अक्यूरियस, आपके लिए कहा गया है बड़े काम को करने का आज आप में हिम्मत जो है ये कुछ ज़्यादा आएगा और यू नो आज चोट या रोग से बचने की पूरी कोशिश आप करें. घर में थोड़ा तनाव रह सकता है एंड यू आर द पर्सन हु कैन गेट दिस सॉर्टेड, सो इसीलिए वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर फैमिली. आखिर में मीन यानी पाइसिस, आपके लिए कहा गया है कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम करने के तरीके में आप सुधार लाएंगे, बेसिकली मेंटली आप और भी स्ट्रोंग हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मेक द राइट डिसीजंस. नौकरी में चैन की सांस लेंगे ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है. सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे. उम्मीद तो यही है कि सभी का दिन बहुत ही अच्छा और कमाल का बढ़िया गुजरे और ऑल द बेस्ट हमारी ओर से इस चीज के लिए आपको. बाय द वे आई टोटली फॉरगॉट, पिछले घंटे सवाल भी पूछा था, मूवी आइडेंटिफाई करनी थी आपको, वो कौन सी फिल्म है जहां पर एक राइवलरी शुरू हो जाती है दो लोगों के बीच क्योंकि वन पर्सन टर्न्ड अप लेट फॉर एन इंटरव्यू, जिसके बाद चलकर दीज टू कंप्लीट स्ट्रेंजर्स स्टार्ट लिविंग टुगेदर, शेयरिंग एन अपार्टमेंट टुगेदर एंड वंस दे स्टार्ट डूइंग दैट तो कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज वो फेस करते हैं जिसके बाद दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ. ये कौन सी फिल्म हो सकती है आपको आइडेंटिफाई करनी थी. सो द नेम ऑफ द मूवी इज सलाम नमस्ते. 2005 में फिल्म आई थी एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सैफ अली खान प्रीटी जिंटा वर इन द मूवी. सैफ अली खान हु प्लेड अ शेफ, इनका किरदार इन्होंने प्ले किया था और प्रीटी जिंटा हु वाज आई थिंक एन MBBS स्टूडेंट और अ पार्ट टाइम रेडियो जॉकी एज वेल. सो 2005 में ये फिल्म आई थी और काफी अच्छी चली थी बाय द वे. एनीवेज कमिंग अप नेक्स्ट सेलिब्रिटी अलार्म,
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
4: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के.
3: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
4: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
5: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
7: आज के हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनकी आवाज आपको पहचाननी है, ये अपनी आवाज के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन और भी कई तरह की चीजों के लिए ये जाने जाते हैं, बट पर्टिकुलरली फॉर हिज वॉइस. एंड आई थिंक इट शुड बी वेरी इजी आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि आज के हमारे सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटी अलार्म में आखिरकार है कौन. तो वंस यू लिसन टू दिस पर्टिकुलर वॉइस, उसके बाद अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन है हमारे पास, फटाफट अपना मैसेज आप सेंड कीजिएगा 5599 पर. BF लिखना है सबसे पहले, यानी ब्रेकफास्ट का शॉर्ट फॉर्म, फिर अपना आंसर, अपना नाम, ये भेज देना है हमारे पास, ठीक है. तो दिस इज द वॉइस यू हैव टू आइडेंटिफाई.
8: आंसू रुक नहीं रहे, इसका मतलब उसका खून बह रहा होगा.
9: तैयारी करा बनता.
7: तो बताइए हमें किसकी आवाज है ये, क्या आपके लिए आसान है पहचानना, और अगर हाँ मतलब आसान है. आज तो क्लूज नहीं देने वाली मैं, आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल बिकॉज इट्स अ मंडे एंड मैं अकेली हूँ आज. बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक इट्स रियली इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई, एंड इफ इट इज BF यू आंसर योर नेम 5599% कीजिएगा, ठीक है. एक और बार मैं आपको सुना रही हूँ आज के हमारे सेलिब्रिटी की आवाज इन सेलिब्रिटी अलार्म.
8: आंसू रुक नहीं रहे, इसका मतलब उसका खून बह रहा होगा.
9: तैयारी करा बनता.
7: तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स भेजिए, थोड़ी देर बाद विल रिवील द करेक्ट आंसर फॉर सेलिब्रिटी अलार्म फॉर टुडे. कमिंग अप नेक्स्ट, आज के हमारे न्यूज़ हेडलाइंस, आई फॉरगॉट अबाउट दैट.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
10: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
11: मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में कहा गया है कि न्यूजीलैंड में विंटर वेदर के असर कई इलाकों में अभी भी फेस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्नो, स्ट्रॉन्ग विंड्स और आइसी रोड्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट ट्रेवल इन सम रीजन्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर अभी भी फोकस में है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बार फिर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हायर फ्यूल और हाउस होल्ड कॉस्ट जो है ये कई फैमिलीज को इन न्यूजीलैंड फिलहाल अफेक्ट कर रहे हैं। वैसे अथॉरिटीज ने मांग की है कि लोग अभी भी प्रिपेयर्ड रहे फॉलोइंग सैटरडेज मैग्नीट्यूड 5.8 earthquake, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ aftershocks कैन also बी रिपोर्टेड लेटर ऑन। वैसे साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये रिवील हुआ है कि न्यूजीलैंड मोर देन 1 million टन ऑफ फूड हर साल बर्बाद करता है, जिसकी वजह से अब मांग की जा रही है टू रिड्यूस हाउस होल्ड फूड वेस्ट। अन्य खबरों में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड में अभी भी रायन फॉक्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है आफ्टर हिज हिस्टोरिक ओपन चैंपियनशिप विक्ट्री, जिसकी वजह से वो अब सेकेंड कीवी बन चुके हैं टू विन गोल्फ्स ओल्डेस्ट मेजर। ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
0: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको। इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग। हम Accurate traffic
3: and rep huge savings at Capricorn's birthday celebration sale.
4: A fine one all day, but cool as well. A high of 14 into the city at the moment. Southern motorway 40 minutes Manukau to the CBD. Hour from Drury, we're slow Papakura right through to the city. Northwestern 30 minutes in from Massey, slow from there. Heavy point shift to St Luke's. Northern half an hour in from Constellation, we're heavy in patches from Greville to the bridge and back at Silverdale. Southwestern bit slow northbound through Whitty.
3: Get free installation and free underlay on selected Rhino carpet. Visit Carpet Court today.
5: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
7: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
10: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
11: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
12: The award goes to Indelible Homes.
11: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
13: Kahani of Indelible Homes.
2: The beat of Bollywood.
14: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
15: इसका बर्थडे भाई?
16: मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ।
15: Happy birthday to you.
1: A very very happy birthday आपको विश करने का समय हो रहा है आज, यानी कि the 27th of July को। जितने भी लोग अपना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हमारी ओर से। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज सबसे पहले अ वेरी हैप्पी बर्थडे जो है ये हम विश करना चाहते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं प्रिया। प्रिया आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके हस्बैंड हैं कृष्णील और इन्होंने आज आपके जन्मदिन के खास मौके पर ढेर सारा प्यार जो है ये आप तक पहुँचाया है। वैसे आज हैप्पी बर्थडे मेलविन आपको भी आपके समस्त परिवार वालों की ओर से और दोस्तों की ओर से, खास रूप से हमारी हम टीम की ओर से भी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
2: मॉर्निंग मैडनेस।
1: अगर आपको याद हो तो मैंने इस घंटे की शुरुआत में आपको बताया था ना कि एक बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास विजेता बनने का हमारे साथ, क्योंकि इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सर्ट्स जो है ये बस होने ही वाला है अगले महीने 25 अगस्त को एट स्पार्क रेना। और आपके पास मौका है ग्लोबल सुपरस्टार करण औजला का पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर का हिस्सा बनने का, बिकॉज दिस इज हैपनिंग एट स्पार्क रेना 25 अगस्त को। और इनके साथ रहेंगे स्पेशल गेस्ट इकी, जो उन्हें ज्वाइन करने वाले हैं फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ हिट सॉन्ग्स, इनक्रेडिबल एनर्जी एंड ऑफकोर्स द इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेज जो आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो टिकट्स अगर अभी तक आपने नहीं लिए हैं, यू स्टिल गॉट सम टाइम, आप hum.over.nz विजिट कीजिए या फिर livenation.co.nz आप विजिट कर सकते हैं टू ग्रैब द टिकट्स। और टिकट्स वंस आपने ले लिए तो आपको बस इंतजार करना है 25 अगस्त का और फिर स्पार्क अरेना पहुंचकर इस बहुत ही अमेजिंग शो का हिस्सा बनना है। बट इफ यू थिंक यू नो एवरीथिंग अबाउट करण औजला, तो आपको हम बता दें कि आपको ऐसे बहुत से मौके हमारे साथ मिलेंगे टू विन डबल पासेस, जहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको आंसर करना है उनके बारे में, और फिर आप जब जवाब देते हैं KA स्पेस अपना आंसर और नाम लिखकर 5599 पर आप सेंड कर सकते हैं, जिसके बाद आपका नाम उस ड्रो का हिस्सा बनेगा जहां पर डबल पासेस जीतने का मौका है। एंड राइट नाउ आई एम गोना गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी। आज मैं कोई सवाल नहीं लेकर आने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आपको ये मौका ऑन द ब्रेकफास्ट शो देने वाली हूँ। इट्स फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इट्स मंडे, तो व्हाई नॉट कीप थिंग्स रियली रियली सिंपल, जिसकी वजह से यू ओनली नीड टू डू इज KA यानी करण औजला, इनके नाम का शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है KA सबसे पहले, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और 5599 पर भेज दीजिए। दैट्स इट, KA स्पेस योर नेम, 5599 पर आप टेक्स्ट करें, दैट विल लेट मी नो कि आप इंटरेस्टेड हैं इस शो का हिस्सा बनने के लिए। एंड दैट इज द थिंग जो आपका नाम इस ड्रो का हिस्सा बना सकता है, मतलब आपके नाम को इस ड्रो में शामिल करा सकता है फॉर योर चांस टू विन अ डबल पास। सो गेट गोइंग, KA स्पेस योर आंसर योर नेम, 5599 पर फटाफट हमारे पास आप भेज दीजिए।

0: बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का ये ट्रैक आप सुन रहे थे हमारे साथ आज विद सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल. अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बाय जीत गांगुली और फिल्म जो कि राज 3 मेरे ख्याल से उसका ये गाना है. यस, राज 3 द थर्ड डायमेंशन, जिसे विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था और कहानी थी महेश नहीं शागुफ्ता रफीक की. इट वॉज प्रोड्यूस बाय महेश भट्ट, अपेरेंटली महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट एंड बिपाशा बासु, जिन्हें क्वीन ऑफ हॉरर फिल्म्स भी माना जाता है बिकॉज शी इज़ डन सो मेनी हॉरर मूवीज. तो बिपाशा बासु, इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता इस फिल्म में थे. और अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो चेकआउट कर सकते हैं. 2012 में ये फिल्म आई थी जिसका ये बड़ा ही खूबसूरत सा गाना आज आपके लिए हम पेश कर रहे थे. हमने आपसे कहा था आपने अपनी एंट्रीज हमारे पास सेंड करने के लिए. रिमेंबर, अगर आप करण औजला का जो पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर का अमेजिंग शो देखना चाहते हैं हैपनिंग एट स्पार्क अरेना ऑन द 25th of August, तो KA लिखकर अपने नाम के साथ एंट्रीज आपको सेंड करनी है 5599 पर. आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट तभी आपका नाम जो है हम ड्रो में शामिल कर पाएंगे. सो यू गॉट अनदर 2 मिनट्स अपनी एंट्रीज हमारे पास भेजने के लिए एंड वंस यू डू दैट यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रो. फाइनल 2 मिनट्स, ठीक है? KA स्पेस आपका नाम और हमारे पास 5599 पर आप सेंड कर दें अपने नामों को ड्रो में शामिल कराने के लिए, जहां पर आप जीत सकते हैं एक डबल पास टू वॉच दिस अमेजिंग शो. बट डोंट फॉरगेट, इफ यू नीड टू ग्रैब मोर टिकट्स, hum.rova.nz या livenation.co.nz आप विजिट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए.
1: Mornings made better.
2: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
4: Traffic.
5: Say hello to winter comfort.
6: A chilly start, final day, high of just 14. Coming into the city, Northern Motorway 33 minutes from Constellation Drive, 57 Silverdale to town. Heavy at Silverdale and most of the way in from Greville. Northwestern, 33 minutes messy to the city, slow most of the way in, heavy at times. Southern 46 Manukau to the city, a slow from Papakura with heavy patches building. Southwestern slow northbound through Whitty.
5: Up to 50% off winter sale on now at Hunter Home Wairo, Sylvia Park and Westgate.
7: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
8: IKEA.
9: At Bunnings, we can help you get those easy DIY jobs done.
10: DIY can be the smallest thing. It can be changing shower heads, changing out your drawer handles to something new, whether you're renting or you're on your own home.
9: If you need help with your DIY projects, you pop in and talk to our experienced team members.
11: Or you can jump online to our DIY advice hub.
12: There'll be a lot of videos and inspiration for your DIY projects. We can help you out no matter what your budget is. There is definitely a DIY project for everyone.
13: We're all here to help you. Bunnings makes DIY easy.
14: Bunnings Way!
15: It's Woolworths Half Price Week. Get Makona Coffee Sachets 20-pack for just $7.39 each. And Paseo 4-Ply Ultra Soft Toilet Tissue 6-pack for just $4.90. 1 week only, while stocks last. T's and exclusions apply.
16: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है. अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं. मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.

टेयम देखा गया था लास्ट फ्राइडे को. शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग बर्डवुड रोड वेस्ट ऑकलैंड में, एंड ऑल्दो शी लिव्ड इन ऑकलैंड सीबीडी, शी हैड बीन स्टेइंग विद फैमिलीज इन वेस्ट ऑकलैंड, जहां से ये गायब हुई थी. आफ्टर शी वॉज रिपोर्टेड मिसिंग, पुलिस ने एक सर्च जो है ये कैरी किया टू फाइंड हर, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत सैड एंडिंग के साथ इनके बारे में खबरें जो है ये सामने आई है. इनकी फैमिली ने इनको याद किया और इनको डिस्क्राइब किया एज अ वेरी काइंड एंड केयरिंग पर्सन, फनी एंड पैशनेट अबाउट द पीपल एंड थिंग्स शी लव्ड टू डू. They said she often showed her love through her actions rather than the words, meaning she cared for people by what she did rather than by just saying it. Police abhi bhi filhal is mamle ki jaanch kar rahi hai, and they're determined to find out exactly what happened aur kaise ye pura jo situation hai ye hua hai. And what caused Wolverine's death, जिस पर details जो है जैसे ही सामने आएंगे definitely हम आप तक लेकर आएंगे. It's a very sad situation और इतनी young और खुश मिजाज महिला, एंड शी मस्ट हैव हैड सो मेनी ड्रीम्स एंड इट्स जस्ट एंडेड. सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, न्यूजीलैंड में भी बहुत से सिचुएशंस जो सामने आते हैं जिनसे जुड़े खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. पर फिलहाल ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है, और जितने लोगों ने हमारे पास अपनी अपनी एंट्रीज सेंड की हैं थैंक यू सो मच, आपके नामों को हम डेफिनेटली ड्रो में शामिल कर रहे हैं. थोड़ी देर बाद आपके लिए द रश आवर हम लेकर आएंगे. आज कुछ डिफरेंट, कुछ चेंजेस होंगे रश आवर प्रोग्राम में, जिसे जानने के लिए आप बस हमारे साथ ही बने रहिएगा.

0: madness.
1: ये चांद का रोशन

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: You know, सुबह से हम आपको मौसम के बारे में बताते आ रहे हैं. It was saying that it's going to be a fine day, but right now भी बताया जा रहा है it's going to be a fine day, लेकिन morning frosts कुछ कुछ इलाकों में हम जरूर एक्सपीरियंस करेंगे. और आज उसके अलावा कहा गया है कि afternoon showers ये भी जरूर रहेगा, sunset 5:33 PM पर. और आज overnight temperature रहेगा 13 degrees तक, या माफ कीजिएगा 4 degrees तक, जबकि high of 13 expected है बाद में. चल
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: Trend Patrol आपके लिए on हम playing Bollywood's biggest hits, the breakfast show with Vijay and Pooja हम लेकर आ रहे हैं. और क्या कुछ trend कर रहा है right now New Zealand में. In fact last week if you remember हमने बातें की थी, it would be interesting to find out कि weekend में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो trend कर रही थी when it comes to Google search and all. और इसके बारे में breakfast show पर हम जरूर बातें करेंगे. So I got a chance to explore something and I found out the most trending topic over the weekend. दो topic रही, but I would say कि number one topic जो है, it took the cake, and that was lottery. This was the word that was most trending on Google in the weekend. बहुत सारे लोगों ने इसे सर्च किया, इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की. And next, जो number two पर है, the most trending thing, number two पर in the weekend was Auckland FC, ये लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया. And as you all know, कि Auckland FC और Tottenham के बीच में जो मैच हुआ था over the weekend, उसको लेकर भी काफी ज्यादा excitement जो है, ये बनी हुई थी. पर फिलहाल के लिए talking about the number one trending topic in New Zealand over the weekend, since it was Lotto. If you've missed out, the two Aucklanders jinhone 20.1 million New Zealand dollars each jeeta Saturday Powerball Lotto jo hai ye khelte hue aur jackpot apne naam karte hue. One of the winners jo hai inhone ticket liya tha at Blockhouse Bay Post Shop and Stationers, aur dusra ticket jo hai ye online purchase kiya gaya tha My Lotto par at the Lotto NZ app. Jo numbers draw kiye gaye the was 1, 2, 1, 12, 18, 29, 22 and number 14. Bonus ball was number 32, jibki power ball was number 8. In addition of getting this amazing jackpot jo do logon ne jeeta hai 20.1 million ka, both winners, or 20 million ka, both winners actually also got 100,000 se bhi zyada. It's like a very big number. Lotto first division, which is why their total winning for this particular Lotto was 20.1 million each. My goodness, they were so lucky. यार ये एक ऐसा trending topic होता है जहाँ पर trending word होता है जो every time Google Trends में आता है as far as New Zealand is concerned, क्योंकि जब भी बड़ा amount होता है jackpot का तो बहुत सारे लोग interest लेकर खेलते हैं. In fact, I won't lie to you, I also tried my luck with Lotto this Saturday. I didn't win anything. It was not a winning ticket. वो बुरा तो लगा, will be very honest, बहुत बुरा लगा. पर मैंने खुद को थोड़ा वो क्या बोलते हैं एनकरेज किया, क्योंकि सारे जैकपॉट नंबर्स में से मेरा एक नंबर तो करेक्ट था कम से कम. And the number that I got correct apparently जैकपॉट नंबर में जो नंबर्स मैंने play किए थे was number 22. Interesting, isn't it? Anyways, I hope कि आपके लिए भी ये weekend अच्छा गया हो, interesting गया हो और lucky गया हो. और इसी उम्मीद के साथ जबकि शुरुआत कर रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा पर आज रश आवर की इस घंटे. व्हाट्स योर टेक टॉपिक हम लेकर आएंगे जरूर, बट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि कुछ चीजें हमने नोटिस की हैं. दैट्स व्हाई वी ट्राइंग टू यू नो चेंज अ बिट ऑफ थिंग्स हियर एंड देयर टू कीप द प्रोग्राम गोइंग, बट साथ ही साथ आपका साथ ना छूटे इस वजह से. पर फिलहाल के लिए चलिए इस घंटे की शुरुआत एक बड़े खूबसूरत गाने के साथ, विशाल मिश्रा की आवाज, आप सभी के नाम.

0: Christmas giant deals on at No Leeming.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
3: आज का What's Your Take topic, हमने कहा था कि topic तो रहेगा, तो सबसे पहले topic बताने से पहले, in fact, आपके लिए हम कुछ जरूरी information लिख रहे हैं. Don't really know how many of you still remember this, या how many of you know of this, पर इसके बारे में बातें जो है ये हो चुकी है पहले भी, काफी discussion जो है ये हुआ है, खबरों में भी ये बात जो है सामने आई थी, and this was basically the center, the new mobile addiction center, cell phone addiction center, जो न्यूजीलैंड में खुलने जा रहा है. न्यूजीलैंड इज ओपनिंग इट्स फर्स्ट स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट सर्विस, जहां पर लोगों को हेल्प किया जाएगा हु आर एडिक्टेड टू सेल फोन्स, सोशल मीडिया, गेमिंग एंड एक्सेसिव स्क्रीन यूज. और ये जो सर्विस है इसे टच ग्रास कहा जा रहा है, एंड इट विल ओपन इन ऑकलैंड आई थिंक नेक्स्ट मंथ ऑगस्ट में ये खुलने वाला है. एंड इट इज बींग लॉन्च्ड बाई द प्रॉब्लम गैम्बलिंग फाउंडेशन. इसकी ज़रूरत क्यों मानी जा रही है न्यूजीलैंड में, क्योंकि रिसर्च में ये बात पता चला है कि स्क्रीन एडिक्शन इज़ बिकमिंग अ ग्रोइंग प्रॉब्लम. सम की फाइंडिंग्स इंक्लूड 40% ऑफ यंग पीपल से दे फील एडिक्टेड टू देयर फोन्स, एंड नियरली हाफ ऑफ न्यूजीलैंडर्स स्पेंड 4 or more आवर्स ऑनलाइन एवरी डे अपने पर्सनल यूज के लिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि टू मच स्क्रीन टाइम इज अफेक्टिंग बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है कैन ऑल्सो बी बिकॉज टू मच स्क्रीन टाइम जो है ये लोग अभी फिलहाल यू नो लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ इशूज में नोट किए गए हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, सोशल आइसोलेशन. और फिजिकल हेल्थ में इशूज नोट किए गए हैं शॉर्ट साइटेड, और साथ में ड्राई आईज, पुअर पोस्चर और नेक, शोल्डर एंड बैक पेन. What is TouchGrass? अगर आप सोच रहे हैं तो TouchGrass एक डिजाइंड प्रोग्राम है फॉर 13 to 24 year olds एंड देयर फैमिलीज, जहां पर ऑफर किया जाएगा सेल्फ हेल्प टूल्स ऑनलाइन एंड AI chatbot जो आपको प्रोवाइड करेगा एडवाइस एंड सपोर्ट, और काउंसलिंग, यूथ वर्कर्स जो कि आपसे मिल सकते हैं फेस टू फेस अगर आपको और हेल्प की जरूरत पड़ती है तो. और ये जो प्रोग्राम है इट वॉज एक्चुअली डेवलप्ड इनपुट फ्रॉम यंग पीपल जिन्होंने ये चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए थे खुद, जिसके बाद चलकर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया. व्हाई डू एक्सपर्ट्स से फोन्स आर सो एडिक्टिव, क्योंकि एक क्लिनिकल लीड जो कि फ्रांसिस रसल जो है इन्होंने कहा है इट्स नॉट सिंपली लैक ऑफ विल पावर. इनका कहना है कि एप्स और सोशल मीडिया जो है आर डिजाइंड टू कीप पीपल यूजिंग देम फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जिसकी वजह से लोगों के लिए डिफिकल्टी हो जाती है टू स्टॉप स्क्रोलिंग. So, what are addiction specialists seeing? और इस मामले में एक और एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है जस्टिन हैमिल, जो एडिक्शन ट्रीटमेंट के मामले में काम करती हैं. इन्होंने कहा है कि मैनी पीपल यूज देयर फोन्स टू अवॉइड अनकंफर्टेबल इमोशंस, जैसे कि बोर्ड फील कर रहे हैं अगर, लोनली फील कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं या फिर यू नो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस को अवॉइड करना हो तो अपने फोन का सहारा लिया जाता है. दे आर ऑल्सो कंसर्न कि यंग चिल्ड्रन, यंग एज 5 year olds जो है दे आर शोइंग साइंस ऑफ स्क्रीन एडिक्शन, और ओल्डर एडल्ट्स जो है ये और आइसोलेटेड होते जा रहे हैं बिकॉज दे स्पेंड टू मच टाइम ऑन डिवाइसेज इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स. सो न्यूजीलैंड अपना पहला डेडिकेटेड सेल फोन और स्क्रीन एडिक्शन सर्विस जो है ये लॉन्च करने वाला है फॉर पीपल टू रिड्यूस अनहेल्थी स्क्रीन यूज. और एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सेसिव टाइम ऑन फोन्स एंड डिवाइसेज मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है. एंड दे होप कि ये जो न्यू सर्विस है ये लोगों को वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके और सीरियस ना हो ये प्रॉब्लम उनके लिए. तो ज़रूरी चीज़ें आज के टॉपिक से जुड़ी मैंने आपको बहुत समय लेकर अच्छे से बताई हैं. आज का एक सिंपल सा सवाल, डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर सेल फोन एडिक्शन ट्रीटमेंट सर्विस जो है जिसे टच ग्रास कहा जाता है, इट विल हेल्प पीपल? डू यू थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू इनिशिएट और टू स्टार्ट ऑफ? और अगर आप चाहें तो आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि क्या आपकी फैमिली में दे समवन जिनको आपको लगता है कि इस सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यू विल श्योरली रिकमेंड इट, और यू आर इन सपोर्ट ऑफ इट, और यू आर अगेंस्ट इट. बस सिंपल है, आपको जिस सवाल का जवाब देना हो कि क्या आपको लगता है ये अच्छा है, ये हेल्प करेगा या नहीं करेगा, और क्या आपकी फैमिली में से किसी को इसकी जरूरत है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है आज? कॉल नहीं करना है आज, क्योंकि कॉल्स बहुत कम आते हैं एंड वी डू बिलीव कि पीपल आर काइंड ऑफ बिट शाई। तो हमने एक और एक तरीका निकाला है फिलहाल के लिए। ठीक है, व्हाट वी गोना डू इज वी गो इनवाइटिंग यू टू सेंड मैसेजेस विदाउट योर नेम्स। आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, सिर्फ अपने मैसेजेस भेजने हैं। इफ यू वांट टू रिवील योर आइडेंटिटी, गो अहेड, राइट योर नेम्स एंड आपके जो मैसेजेस हैं, डेफिनेटली सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। इफ यू डोंट वांट टू रिवील योर आइडेंटिटी, आपका नाम नहीं लिया जाएगा इफ यू डोंट सेंडिंग इट। और अगर नाम लिख रहे हैं तो मतलब यू'd लाइक टू योर आइडेंटिटी टू बी रिवील्ड, तो हम आपका नाम लेकर आपका मैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, टेक योर टाइम, 5599 पर अपने मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं हमारे पास। और दो गानों के बाद विल सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेंट इन योर मैसेजेस आज के टॉपिक के बारे में।
1: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आऊं।
5: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरिजीत सिंह और नीति मोहन को आप सुन रहे थे। बहुत ही खूबसूरत रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, फ्रॉम द फिल्म बॉस आपके लिए हम शामिल कर रहे थे। आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक हम लेकर आए, जिसके आंसर्स आपने हमारे पास भेजे हैं। और ऐसे में एक मैसेज है, उन्होंने कहा एक्चुअली थिंक इट विल, वी हैव क्लिनिक्स फॉर गैम्बलिंग, एल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन, सो व्हाई नॉट स्क्रीन एडिक्शन, इट्स बिकम जस्ट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर सम पीपल। ये किसी का मैसेज आया है। हैमिल्टन से हमारे पास विकास, आपने मैसेज किया है, आई थिंक इट विल हेल्प पीपल हु जेन्युइनली वांट हेल्प, बट यू कांट फोर्स समवन टू गिव अप देयर फोन, दे हैव टू एडमिट इट्स अ प्रॉब्लम फर्स्ट। Well, I totally agree with this one. इन्होंने कहा, I'm not convinced. Phones are part of work, banking, shopping and daily life now. We need to learn balance rather than treat phones as the enemy. ये आरती ने कहा है। Thank you so much, आरती, आपके मैसेज के लिए। वैसे हमारे पास एक और एक मैसेज आया, इन्होंने कहा, I'd love to see digital well-being taught in schools. Kids are learning maths and science, but no one teaches them how to manage technology. Ooh, that's interesting. I think social media companies also need to take responsibility. Their apps are designed to keep us scrolling. ना, अगर आपको याद हो जब हमने इस मतलब आर्टिकल के बारे में बातें की थी, टॉपिक डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ पर बताया भी था दैट देयर इज दिस स्पेशलिस्ट जिन्होंने पर्टिकुलरली कहा है, जिनका नाम है जस्टिन हैमिल, कि एडिक्शन जो है ये डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। लोग अपने इमोशंस को कभी कभी टैकल करने के लिए भी फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। बट एक क्लिनिकल लीड है जिनका नाम है फ्रांसिस रसल, इन्होंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिंपली लैक ऑफ विल पावर, लेकिन जो एप्स होते हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि लोग लंबे समय तक स्क्रॉल करते रहे। तो आज हमने आपसे पूछा है व्हाट्स योर टेक टॉपिक में, आप मैसेजेस भेज सकते हैं 5599 पर, बता सकते हैं हमें कि न्यूजीलैंड में जो टच ग्रास कर एक एडिक्शन सेंटर जो है, या डेडिकेटेड सेल फोन एंड स्क्रीन एडिक्शन सर्विस जो है, ये लॉन्च होने वाला है अगले महीने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? विल इट वर्क, इट वोंट वर्क, डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टेप, गुड स्टार्ट टुवर्ड्स फोन एडिक्शन प्रॉब्लम्स फेस बीइंग फेस्ड इन न्यूजीलैंड, या फिर क्या आपकी फैमिली में किसी को इसकी जरूरत है, या समवन यू नो हु नीड्स इट एंड यू रेकमेंड इट टू देम, तो आप जरूर हमारे पास अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ और मैसेजेस हम जरूर देखेंगे।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
3: Hum. Accurate traffic.
4: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
5: Final day today, but staying cool. Got a high of just 14. Coming in on the northwestern motorway, 40 minutes messy to town. We're slow all the way from there, heavy from the causeway to Greyland. Southern, about 45 minutes in from Manukau. Slow from Papakura. Heavy spots from Otahuhu. Southwestern, slow, even heavy northbound through Whitty. Northern, 32 minutes in from Constellation Drive. Heavy from Greville and back at Silverdale.
4: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
6: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
7: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off cabbage.
8: Ooh, yuck.
7: Joining a company with a pyramid-shaped structure. Ordering Happy Meals as an adult. Celebrating your anniversary in the food court. Selling your clean urine to competitive cyclists. DIYing, side hustling, catfishing, cold showering, couch surfing, foraging, freeloading, or joining a thruple.
9: How's it? I'm Dennis.
7: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
10: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here.
11: Now I'm here.
10: Back here now.
11: Here I am.
10: Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
12: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave. Battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
13: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
14: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
13: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
14: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846 9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: The Rush Hour on The Breakfast Show with Vijay and Pooja. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. Thank you so much आप सभी के messages के लिए, आपके साथ के लिए. And it's time to wrap up आज का What's Your Take topic. Messages जो आपने हमारे पास भेजे हैं, I might have missed out a few messages here and there. तो जैसे जैसे समय मिलेगा, I'll definitely be reading it out. But अभी एक message और आया, उन्होंने कहा है, Honestly me, I keep saying I'll check one message, then an hour disappears. I think a lot of adults are in the same boat. तो ये एक चीज़ किसी ने मैसेज की, इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद यू बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पर्सन. आई वोंट लाई टू यू, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आई सिट विद माय फोन आई एम अनएबल टू पुट इट डाउन. इट्स अ बिग प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड इट, बट हु नोज, शायद मुझे भी यू नो हेल्प लेनी पड़े इस चीज़ में. आई हैव ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स, डिफरेंट ट्रिक्स जो है मैंने अपनाए हैं, इट डज वर्क. And it's all about how far am I pushing myself, right? तो कई adults ने भी काफ़ी interesting messages भेजे हैं, and इन्होंने कहा है कि we need to accept it कि adults also have this problem and we are in the same boat. Very interesting. So thank you so much आप सभी के messages के लिए.

0: इश्क वाला लव, बड़ा ही अनोखा सा टाइटल फ्रॉम द फिल्म, नॉट टाइटल मतलब बड़ा ही अनोखा सा टाइटल इस गाने का, और वो भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसी फिल्म से। 2012 में ये फिल्म आई थी, सारे के सारे स्टूडेंट्स बड़े भी हो गए और उनके खुद के स्टूडेंट्स अब तैयारियां कर रहे हैं, मतलब अभी तो नहीं आएंगे इंडस्ट्री में किसी फिल्म में, बट हाँ अभी कह सकते हैं अनदर 10 years और सो शायद वो भी किसी न किसी एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में, फ्रेंचाइज में ज़रूर दिखे। सो 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई, जिससे शुरुआत की अपने फिल्मी करियर की सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, वरुण धवन ने, और इन तीनों ने काफ़ी कमाल का काम किया। ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट तरीके से अगर देखा जाए इंडस्ट्री में, दे हैव मेड प्लेसेस फॉर देमसेल्व्स, बट साथ ही साथ दे आर सो मेनी अदर अमेजिंग एक्टर्स जो कि इस फिल्म का हिस्सा थे, एंड आई थिंक ऋषि कपूर वुड बी वन ऑफ देम। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, जो शायद आपने पसंद की या फिर आपने पसंद नहीं भी की, लेकिन इस फिल्म के गाने जो है ये लोग आज भी इंजॉय करते हैं। तो उस फिल्म का ये ट्रैक आज आपके लिए हम पेश कर रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे अबाउट दिस कमाल के आर्टिस्ट जो कि आ रहे हैं सैटरडे 1st of August को अपना बहुत ही अमेजिंग गरबा वाइब जो है ये लेकर। गरबा अगर आपको पसंद है, यू हैव सीन यार, इट इज़ सो अमेजिंग, और अगर आपने लाइफ में कभी भी गरबा नहीं खेला है एंड यू लव टू डू दैट, देन दिस इज़ द चांस। क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन आ रहे हैं, जानने के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा, थोड़ी देर बाद आपको हम ज़रूर बताएंगे।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: हम वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज है मंडे 27th ऑफ जुलाई और आपने बिल्कुल सही सुना था। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर आपको भी गरबा वाइब्स एंजॉय करने हैं, लाइफ में कभी गरबा नहीं खेला आपने, बट यू वुड लव टू ट्राई दैट आउट, तो क्यों ना आप सैटरडे 1st of August को खुद को फ्री रखिएगा और टिकट्स जो है ये ग्रैब कर लीजिएगा इवेंट tickets.co.nz विजिट करते हुए। इवेंट्स tickets.co.nz आपको विजिट करना है टिकट्स ग्रैब करने के लिए। सैटरडे 1st of August को महात्मा गांधी सेंटर पर आ रहे हैं राज गढ़वी अपना बहुत ही अमेजिंग गरबा एनर्जी ये लेकर। लोटस प्रोडक्शंस, थ्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांशी ग्रुप प्राउडली प्रेजेंट्स इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड गरबा सेलिब्रेशन, जहां पर द सेंसेशनल राज गढ़वी जो है आपके लिए लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। एंड इट्स दिस वन अमेजिंग गरबा नाइट विद हिम। एंड इफ यू वांट टू डांस द नाइट विद लॉट्स ऑफ म्यूजिक, लॉट्स ऑफ डांस, लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, तो आप जरूर इसका हिस्सा बनिएगा। इवेंट्स tickets.co.nz से टिकट्स ग्रैब कर लीजिएगा बिकॉज दे आर सेलिंग क्वाइट फास्ट। डिटेल्स चाहिए तो स्वप्निल शाह से आप बातें कर सकते हैं ऑन 0224394736 पर। रिमेंबर 0224394736 पर।

0: accurate traffic.
1: Matatin Mega Botany Trade.
2: Final day today, but staying cool. I got a high of 14 into the city. Northern Motorway, 26 minutes Constellation Drive to the CBD. Easing up at Silverdale, heavy patches, Greville to the bridge. Northwestern, 32 minutes in from Massey, where slow from Te Aratu, not too bad, but some heavy patches from the causeway to St. Luke's. Southern, 40 minutes Manukau to town, where slow from there, heavy patches from Otahuhu.
1: Matatin Mega Botany Trade event Saturday. Stock up on great deals and meet the suppliers.
3: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
4: Discover the magic at Go Bananas JK, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Bunnings Trade is here to help trade customers with 134 Trade. Get quick quotes and pricing on a wide range of supplies, plus stock inquiries, delivery updates and more. Call 0800 134 872 or jump online and we'll help you get what you need fast. Bunnings Trade.
7: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
9: हम टाइम चेक
10: गुड मॉर्निंग इसमें ठीक 9 बज रहे हैं
9: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Canterbury is emerging as the engine room of the job market, according to new TradeMe data. Listings in the region are continuing to grow, building on a 21% rise in quarter one. Spokesperson Greg Cassidy.
12: Christchurch is a really popular place at the moment. It's probably the most popular city in the country. As a result of that, we're seeing job listings up nearly 15% year on year, which is really building on that strong first quarter.
11: Health NZ is dealing to a reported flea outbreak at Auckland Hospital. It says there have been 142 flea-related incidents across its Auckland sites in the last year. It says these are actively managed through a pest program and have reduced significantly in recent years. An expert in solar power is glad to see political parties adopting policies to promote the renewable form of energy. With New Zealand still lagging behind Australia in uptake, Auckland Uni's Ralph Cooney hopes the tide is turning.
13: Most of the parties have got in behind the idea of a stronger solar energy residential base for New Zealand. There's indications we're turning a corner.
11: More than 300,000 people in Spain and France have been forced to flee raging wildfires. Blazes in southwestern France have burned through an area about three times the size of Paris. More than 240 homes have been destroyed as the fire edges towards the city of Bordeaux, the heart of winemaking region. In sport, New Zealand secured a fifth medal of the Commonwealth Games in Glasgow on Sky Sport.
14: The silver medalist just coming in now, that's Erica Fairweather of New Zealand. There she is. Fairweather, silver on the 4, now silver on the 15.
11: Erica Fairweather finishing second in the 1500 metres freestyle. She now has three of New Zealand's five medals. And the Silver Ferns are currently taking on Jamaica in netball. A short time ago, they were ahead 26-25 at halftime.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari good brands bhi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: सफा मौसम के बारे में जो भी बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट इतना कह सकते हैं वीकेंड जितना खराब मौसम तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ मॉर्निंग फ्रॉस्ट जो है ये आपने जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे, अभी भी कुछ कुछ इलाकों में शायद लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। और लिटिल बिट ऑफ शावर्स इन द आफ्टरनून आज जरूर रहेगा, सनसेट 5:33 PM पर। आज ओवरनाइट टेम्परेचर 13 डिग्रीज रहेगा, हाई ऑफ 13 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे।
9: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
0: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून। एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बकते हो?
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: आज का क्या बकते हो जो आपके लिए लेकर आए हैं, नॉर्मली टैटूज के बारे में अगर बातें करें तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज एंड डिफरेंट यू नो थॉट्स अबाउट टैटूज। जिन लोगों को पसंद है तो वो बहुत पसंद करते हैं एंड दे हैव टैटूज ऑन देयर बॉडी, वेदर वन हो, टू हो या मोर देन दैट हो। जिन लोगों को नहीं पसंद, दे आर बिट अगेंस्ट इट एंड दे आर लाइक कि नहीं अच्छी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। बट आई एम नॉट सेइंग दैट द वंस हु लाइक इट और दैट द वंस हु डोंट लाइक इट ये गलत है, ऐसी नहीं, कुछ नहीं, या फिर जिसको नहीं पसंद है उनको भी पसंद करना चाहिए, जिनको पसंद है उनको नहीं पसंद करना चाहिए। इट्स totally everyone's individual choice. आपका जो भी टेक हो टाटू के मामले में, definitely respecting all that. Just information जो आज आपके लिए लेकर आए हैं, क्या बकते हो में टैटू की बातें करें, लोगों को शौक बहुत होता है तो वो तरह तरह की चीज़ों को अपने शरीर पर टैटू कराते हैं, which actually signifies something. You know, अगर कोई डेट हो, कोई स्पेशल शख्स हो, उनका नाम हो, मॉस कोड में कुछ टैटू कराना, किसी को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं किसी डिवाइन पावर में तो उसके लिए एक टैटू कराना, अलग अलग तरीके होते हैं, उनका पेट हो कोई, उनकी मेमोरी में टैटू कराना। सो देयर डिफरेंट आइडियाज व्हाई पीपल गेट टैटूज डन, और डिफरेंट टैटूज जो है विद डिफरेंट मीनिंग्स पीपल गेट इट डन। बट देन देयर इज दिस महिला जो कि है यूएसए से, इनके पास गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इनका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है नॉट फॉर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ टैटूज बट फॉर हैविंग द मोस्ट शार्क टैटूज ऑन अ वुमेन्स बॉडी। इनका नाम है एमिली मॉरिसन और शी इज़ ऑल्सो नोन एज द शार्क लेडी एमिली। ये एक शार्क बायोलॉजिस्ट है, एक साइंटिस्ट जो कि शार्क्स के बारे में पढ़ाई करती है, एंड शी इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ अ कंपनी दैट टेक्स पीपल ऑन शार्क फॉसिल डाइविंग टूर्स। सो इनके लिए शार्क्स मैटर अ लॉट एंड शी एब्सोल्युटली लव्स देम। इंटरेस्टिंगली एमिली जब बच्ची थी तो वो शार्क से बहुत डरती थी, व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड शी वॉच्ड द मोस्ट फेमस शार्क मूवी जॉज और उनको बहुत डर लगा था, लेकिन उनके पिता ने इनको इनकरेज किया टू लर्न अबाउट रियल शार्क्स बाय रीडिंग बुक्स एट द लाइब्रेरी। और जब इन्होंने शार्क्स के बारे में पढ़ना शुरू किया तो शी बिकेम फैसिनेटेड, द मोर शी लर्न्ड द मोर शी रियलाइज्ड कि शार्क्स वरंट द मॉन्स्टर्स, दे आर ऑफन शोन टू बी, एंड हर फियर टर्न्ड इनटू पैशन। So what has she done with sharks so far? Emily has had some incredible experiences including feeding tiger sharks or great hammerhead sharks Bahamas mein, cage diving inhone kiya hai great white sharks ke sath in Australia, or she has also done swimming with whale sharks off coast of Mexico. And what's next for her? Emily will appear on a new Discovery Channel program called My Strange Shark Addiction. ये जो शो है इट विल बी पार्ट ऑफ चैनल्स एनुअल शार्क वीक जो सेलिब्रेट करेगा शार्क और मरीन लाइफ को। एमिली के पास जो रिकॉर्ड है वो है ये कि इनके शरीर में 106 टैटूज है, लेकिन ये जो 106 टैटूज दे आर नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं कि कहीं पर कुत्ते का टैटू करा लिया, कहीं पर कोई वो टैटू करा लिया, कहीं पर कोई डेट टैटू करा लिया, कहीं पर यू नो पेड़ पौधे फूल पत्ते ये टैटू करा लिए, नहीं। None of her tattoos are of a different species. It's just of one species, which is sharks. So Emily has got 106 shark tattoos all over her body. Different types of sharks, different sizes may sharks, because she feels that she is obsessed with sharks. So ye hai aaj ki hamari kya bakte ho story.
17: Tere kit dhoom, tere kit dhoom, tere kit.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: चलिए देखते हैं आज हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है व्हाट्सअप ऑकलैंड में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको हम याद दिला दें कि होने वाला है ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की ओर से उनकी जो मासिक रामायण कथा है इसी फ्राइडे को 31 जुलाई को ये रहेगा 7:15 PM से, और ARST कम्युनिटी हॉल 53 Skipton Street मैंगरी, इसके लिए आप पहुँच सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप ट्रस्टी ARST के जो ट्रस्टी हैं रवीन कुमार, इनको कॉल कर सकते हैं 02267052711 पर। और दूसरी ओर श्री राम मंदिर 11 Brick Street हैंडरसन, यहाँ पर अखंड रामायण पाठ भी होने को है और ये रहेगा सैटरडे 1 और संडे 2 अगस्त को। सैटरडे सुबह 7 बजे से 1 अगस्त को प्रोग्राम जो ये शुरू होगा और संडे 10:30 AM पर हवन और आरती के साथ समाप्त होगी। तो इसका हिस्सा आप श्योरली बन सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर करना है या पंडित जी से जानकारियां चाहिए इसके बारे में 8364647 पर आप कॉल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आप तक लेकर आ रहे हैं श्री राम लीला और एक डिवाइन थिएटिकल एक्सपीरियंस जो आप 8 अगस्त को कर सकते हैं। और भी डिटेल्स के लिए सुनते रहिएगा और न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इवेंट के दौरान अगर आप भी अपना स्टॉल वगैरह जो है रखना चाहते हैं, इफ यू नीड डिटेल्स ऑन दैट, तो आपको बातें करनी होगी मास्टर अशोक से 02111795459 पर। और इसके अलावा चिन्मय मिशन न्यूजीलैंड भागवत गीता डीकोडेड आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्राइडे 7 अगस्त को। ये 7:30 PM to 9 PM रहेगा न्यू लिन कम्युनिटी सेंटर मेन हॉल 545 टोटारा एवेन्यू न्यूलिन पर। और अगर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं जहां पर जो ट्रेन्ड वेदांता टीचर हैं इनके द्वारा चिन्मय मिशन आपको इनवाइट कर रहे हैं भागवत गीता डीकोडेड मास्टर क्लास जो है ये अटेंड करने के लिए। इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो आप मिस नहीं कर सकते, इनवैल्यूएबल सेल्फ नॉलेज आपको मिलेगा। सो यू नीड टू रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको chinmaya.org.nz विजिट करना होगा। You all are invited for this and it's absolutely free for you to attend. इसके साथ साथ आपको याद दिला दें कि New Zealand Carrom Association आपको invite कर रहे हैं 4th New Zealand National Carrom Tournament के लिए 22nd और 23rd of August को Birkenhead Scouts Hall पर ये रहेगा। सभी players जो है all skill levels they are welcome to participate. Registration और जानकारियों के लिए आप New Zealand Carrom Association का Facebook page visit कर सकते हैं, call या message कर सकते हैं New Zealand Carrom Association के जो president है पंकज मोंगा 02109085067 पर इनसे आप बातें जो है ये कर सकते हैं। आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स है जो अन्य लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं, डिटेल्स हमारे पास आप जरूर ईमेल कर दें buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप तो
5: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: Māori Mā, every day we make choices. Choices that work for us. If you're already enrolled but want to change roles for this year's election, you need to do it by midnight on the 6th of August. After that, it's locked in until after the election. Māori role or general role? No right or wrong, just right for you. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
8: 2 PM call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
9: Go!
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
9: Good news, tradies! This Saturday, Mitre 10 Mega Botany aaiye for a free sausage, supplier demos on site or giveaways, range, convenience aur aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dopahar 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
10: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
11: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
12: क्यों, क्या हुआ?
11: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर आपके लिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं और बॉलीवुड में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है जिससे जुड़ी डिटेल्स थोड़ी देर बाद आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे. लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल जो ये सामने आया है, दिस इज अबाउट रियल रिसर्च बीइंग कैरिड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड का जो सेंटर फॉर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग साइंस है, यानी केज. और यहाँ पर कहा गया है कि केज जो है एक रिसर्च रियल रिसर्च सेंटर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है. डॉक्टर हेनरी विलियम्स इज अ रियल रोबोटिक्स रिसर्चर जो कि फिलहाल एक एक पर्टिकुलर रिसर्च को लीड कर रहे हैं. रोबोट लर्निंग रिसर्चर्स आर डेवलपिंग रोबोट्स दैट कैन लर्न टास्क थ्रू एक्सपीरियंस. एक फील्ड नोन एक्सपीरियंस एज रोबोट लर्निंग या फिर री इन्फोर्समेंट लर्निंग रादर देन सिर्फ फिक्स प्रोग्रामिंग पर रिलाई करने के बजाय. वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जिसमें कहा गया है कि इट इज इन्वॉल्व टीचिंग रोबोट्स टू हार्वेस्ट कीवी फ्रूट which is an important industry in New Zealand because harvesting fruit is intensive labor and requires careful handling as well. In fact, yes, I also remember, I think 2-3 saal pehle ki baat hai aur probably yeah, like roughly 3-4 years saal ke pehle ki baat hai jahan par $60 pe hour offer kiya ja raha tha fruit picking ke job ke liye and now they are teaching the robots to do this. I'm not saying it's a bad thing, it's a good thing because they are trying to make the process easier. I do understand iski wajah se bahut se logo ki naukri ja sakti hai but the people who have done fruit picking jaisa kaam they know ki how hard it is on your body especially. You know, bahut physical toll jo hai ye aapke sharir par iska hota hai and if you have done it you actually know what I mean. But on the other hand kaha gaya hai ki this is one of the those projects jo involve kar raha hai teaching robots to harvest kiwi fruit and the center is also working on robots for agriculture such as orchards or inspecting the hulls of boats, detecting landmines and unexploded explosive or wo robotic hands bhi build kar rahe that can mimic human movement. एक 10 मीटर डेंसिंग जेलीफिश जो है इस पर भी फिलहाल काम जारी है एंड इट्स आल्सो अ जेन्युइन प्रोजेक्ट. इट्स बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग रोबोटिक्स फॉर क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक पर्पसेस एज वेल शोइंग कि रोबोटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. सो ये एक बहुत ही जेन्युइन रिसर्च प्रोजेक्ट है न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में जो इंटेलिजेंट रोबोट्स को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं सो दैट दे कैन लर्न प्रैक्टिकल जॉब्स और ऑल्सो एक्सप्लोरिंग क्रिएटिव रोबोटिक्स प्रोजेक्ट सच एज जैसे कि मैंने डेंसिंग जेलीफिश के बारे में भी आपको बताया. दीज टेक्नोलॉजीज कुड एक्चुअली इवेंचुअली हेल्प इंडस्ट्रीज फेसिंग लेबर शॉर्टेजेस और सेफ्टी और एफिशिएंसी जैसी चीज़ें चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स में कैसे इम्प्रूव होती हैं, दिस इज व्हाट दे आर होपिंग फॉर. सो आई मस्ट से वेरी गुड जॉब डन बींग कैरीड आउट राइट नाउ. कोई और डेवलपमेंट अगर इस स्टोरी में आती है तो आपके साथ हम श्योरली शेयर करेंगे.
0: Hollywood's most wanted.
3: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
4: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: हमने आपसे कहा था ना कि बॉलीवुड में भी बहुत सी चीजें हो रही है जिसके बारे में आपसे बातें हम जरूर करेंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मूवी ओ माई डॉग. इसे UAE सर्टिफिकेट जो है ये मिल चुका है आफ्टर CBFC हैज आस्क फॉर 7 चेंजेस. और ये अपकमिंग फिल्म ओ माई डॉग जो है इसे अमित राय ने डायरेक्ट किया है एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर रिलीज बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. ये फिल्म बेसिकली बच्चों के लिए है. दे कैन वॉच इट बट पेरेंटल गाइडेंस इज एडवाइज्ड. और व्हाट आर द चेंजेस दे हैव आस्क्ड फॉर, उन्होंने कुछ रेफरेंसेस को म्यूट करने के बारे में कहा है फॉर सम पॉपुलर ब्रांड्स. और साथ में कुछ गाली गलौज वाले शब्द हैं इनको म्यूट करने को कहा है. दे हैव शॉट एन अ सीन इन्वॉल्विंग अ डॉग बाय 2 seconds. ओके दैट डजंट मेक सेंस बट या दे हैव डन दैट. और एक फोटो उन्होंने ब्लर करने को कही है विच कुड हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स. और इन्होंने एक डिस्क्लेमर भी ऐड किया है अबाउट चाइल्ड लेबर एज पार्ट ऑफ द स्टोरी. अनदर डिस्क्लेमर अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके ऊपर इन्होंने कुछ बातें जो है ये की है. सो अमित राय ने कहा है दैट ही वॉज हैप्पी विद द सर्टिफिकेशन प्रोसेस. ही सेड कि रिक्वेस्टेड चेंजेस रीजनेबल थे एंड ईजी टू मेक. ही ऑल्सो कम्पेयर टू दिस ओ माई डॉग विद हिज प्रीवियस फिल्म OMG 2, जिसके बारे में कहा था इट हैड मच मोर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस CBFC के साथ. और इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स एन इमोशनल स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अ यंग चाइल्ड और उनके पेट डॉग के बीच में. और इस फिल्म में आपको ह्यूमर, इमोशन, सोशल मैसेज ये सब कुछ मिलेगा. फिल्म में देखने वाले हैं पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, माही राय, राजेश कुमार और गीता अग्रवाल शर्मा. दिस फिल्म ऑल्सो फीचर्स ऑस्कर एंड ब्रूनो अलॉन्ग विद मोर देन 250 डॉग्स. That is going to be amazing. 31st of July ko ye film release ho rahi hai. So let's see once it comes in the cinemas, isko kitna zyada appreciation ya rejection milta hai.
1: Mornings made better.
2: Do frienda, char toast, butter jam aur ek special chai.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हाय एंड वेलकम टू द 80s. We love acid wash jeans and overpowering aftershave as much as the next guy. But we also have some out-of-date notions about HIV you don't want to keep. Fact is, HIV can't be passed on through everyday contact, like shared food, hugging, or kissing. And with your modern-day treatment, people with HIV can stay well and had zero chance of passing it on to partners. Out-of-date on HIV? Get the facts at healthnz.govt.nz/HIV.
2: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here.
3: Now I'm here.
2: Back here now.
3: Here I am.
2: Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
4: Maddie didn't think she needed a DVS system.
5: I've got a heat pump.
4: That should do.
5: But it didn't do it, did it, Maddie?
4: No, my windows wouldn't stop crying condensation. So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
9: Here you go.
10: Thank you.
11: I reckon we should do some advertising.
10: Great. I like doing advertising.
11: I love doing advertising.
10: What about?
11: Thomason Does Advertising.
10: And what should it say?
11: Thomason Does Advertising.
10: Nice. I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
11: Nah, keep it simple, I reckon.
12: Thomason Does Advertising.
13: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest FlowMate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
14: Takanini Auto Group mein electric or hybrid cars or SUVs, brand new, sirf 29,990 se. Leap Motor, Dongfeng or bike ke latest hybrid or EV models. Trade-ins welcome. Finance bhi available hai. Visit Takanini Supersite. Petrol or diesel ke crazy prices ko boliye goodbye. Aur nahi ya quality used EV ya hybrid ghar le jaiye. Aur haan, ye almost sab kuch trade kar lenge. Bas, aapki mother-in-law ke ilawa. Takanini Auto Group, 170 Great South Road, Takanini. Fees, C's, D's and credit criteria apply.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
17: What's going on?
18: चलिए आज का डेली राउंडअप आपके लिए लेकर आने का समय हुआ और आज डेली राउंडअप में आपके लिए जब डेट हम लेकर आए हैं दिस इज अबाउट वेलिंगटन हॉस्पिटल जहां पर एक नया कैंसर ट्रीटमेंट मशीन जो है ये लाया गया है. वेलिंगटन रीजनल हॉस्पिटल हैज इंस्टॉल्ड अ न्यू 12.6 मिलियन कैंसर ट्रीटमेंट मशीन और कहा गया है दिस विल हेल्प डॉक्टर्स ट्रीट कैंसर मोर एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली. इस मशीन का नाम लाइनेक है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विच इज द लाइनिया एक्सेलरेटर. और व्हाट डज दिस मशीन डू इफ यू वांट टू नो, तो लाइनेक जो है इट यूजेस हाई एनर्जी रेडियो जिससे टारगेट करते हैं कैंसर ट्यूमर्स को वेरी प्रिसाइसली. कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है इससे और इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एज मच हेल्थी टिश्यूज एज पॉसिबल. इट इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट कैंसर सच एज ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर और गायनेकोलॉजिकल कैंसर. इट कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस पेन कोज्ड बाय कैंसर. ये मशीन क्यों अच्छा है और हेल्थ मिनिस्टर सिमियन ब्राउन ने कहा है कि ये मशीन इज मच मोर एडवांस देन द ओल्डर वंस इट इज रिप्लेसिंग. इट कैन ट्रैक अ पेशेंट्स मूवमेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, उनका जो रेडिएशन है और एक्यूरेटली एडजस्ट कर सकता है और इट कैन टारगेट ट्यूमर्स विद इन अबाउट 1 मिलीलीटर मेकिंग ट्रीटमेंट सेफर एंड मोर इफेक्टिव. हाउ मच डिड इट कॉस्ट, वो सवाल अगर हम यू नो चेकआउट करें तो द हॉस्पिटल इज गेटिंग टू न्यू लाइनिक मशीन्स टुगेदर, दे विल कॉस्ट अराउंड 12.6 मिलियन इंक्लूडिंग इंसुलेशन, और ईच मशीन इज वर्थ अराउंड $6 million. दे आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड हैवी, सो दे हैव टू बी इंस्टॉल्ड इनसाइड स्पेशली बिल्ट कॉन्क्रीट बंकर्स. कैसे लोगों को बेनिफिट होगा? वेल, वेलिंगटन हॉस्पिटल में 3 रेडिएशन मशीन्स है करंटली. अराउंड 16,000 ट्रीटमेंट्स होते हैं हर साल, और ट्रीटमेंट फॉर मोर देन 1,500 कैंसर पेशेंट्स एनुअली किया जाता है. सो दिस इज समवट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एज फार एज कैंसर ट्रीटमेंट इज कंसर्न. और वेलिंगटन हॉस्पिटल के बारे में कहा गया है, दे हैव रिसीव्ड दिस न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर ट्रीटमेंट मशीन. तो लेट्स सी, होपफुली मोर मशीन्स एंड मोर ट्रेन स्टाफ. अभी भी न्यूजीलैंड में इसकी ज़रूरत है, सो एवरी वन हु नीड्स रेडिएशन थेरेपी दे कैन रिसीव इट विदाउट डिलेज, एंड नियर फ्यूचर में उम्मीद है कि ऐसा ज़रूर हो. और अन्य खबरों में कहा जा रहा है कि जो ग्रीन पार्टी है, दे हैव लॉन्च्ड इट्स इलेक्शन प्लान फॉर 2026, एंड दे आर फोकसिंग ऑन मेकिंग लाइफ मोर अफोर्डेबल, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द वेल्थीएस्ट न्यूजीलैंडर्स टू फंड पब्लिक सर्विसेज. इट इज ऑल्सो कॉलिंग फॉर अ टेम्पररी होल्ड नए AI डाटा सेंटर्स पर, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं दैट दे यूज टू मच वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल क्रिएटिंग फ्यू जॉब्स. और एक व्यू जो है द गवर्नमेंट स्ट्रांगली डिस्प्यूट्स. सो लेट्स सी आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैंपेन लॉन्च क्या कुछ बातें जो है ये सामने आती है इस मामले में. तो दैट्स द डेली राउंड अप फॉर टुडे.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
3: Ruzbe, tickets book ho gaye.
4: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
8: हाय, the boss shouted us coffees this morning from BP.
9: No way.
10: We in trouble?
8: Nah, it's BP Plus.
10: What is that?
8: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
11: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
12: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
13: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
14: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
15: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
16: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating. And now, FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
17: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
18: Join the Tribe!
17: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
18: join the Tribe!
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
19: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. An expert in solar thinks people can reap serious rewards if they make the switch. Around 4% of households currently have it installed here, compared to 4.4 million people across the ditch. Auckland Uni's Ralph Kearney says we're missing out big time.
20: It reduces your power bills, but also, you know, if you're selling a home, having a solar system on board adds value.
19: Dog owners in Auckland have been warned to register their pets or risk penalties. They have until Friday this week before a late fee kicks in. Local councillor Josephine Bartley says pay now or pay more later.
21: If they don't register their dogs in time, they could pay up to $225. But also if you don't register your dog, it could also be picked up and then you can also face more fines.
19: Overseas, five climbers have died on Russia's Mount Elbrus, the highest peak in Europe. The group from Bosnia were caught in a violent storm, three bodies unable to be recovered yet due to the weather conditions there. Two other climbers were rescued and taken for medical care. And D-Day beaches have been added to UNESCO's World Heritage List. The 80-kilometre stretch of Normandy coastline was the site of the decisive World War II victory over Nazi Germany during the war. Greece's Mount Olympus has also been included. In sport, a third medal at the Glasgow Commonwealth Games for Dunedin swimmer Erica Fairweather, the 22-year-old finishing second this morning in the 1500 metres freestyle.
9: Yeah, super stoked. That was my first time swimming the 1500 in a long course pool at this calibre, so I'm really happy with that.
19: Fairweather now has two silvers and a bronze with two events remaining. And in netball, the Silver Ferns have beaten Jamaica 53-48 to make it 2-from-2 at the Games so far.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: The highs of 13, overnight temperature of 4. आज का forecast बताया जा रहा है. Showers जो हैं शायद दोपहर के समय पड़ सकती हैं. It feels like 6 degrees right now. 5:33 पर sunset बताया जा रहा है.
0: Non-stop Bollywood.
22: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
23: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
24: My Time with Kashika.
10: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू. 27 जुलाई आ गई. बताइए, देखिए महीना इसी हफ्ते ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चुटकियों में ऐसे जैसे वक्त निकल रहा है. समझ लीजिए 5 महीने बच जाएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर टू स्टार्ट. काउंटडाउन बिगिंस. लेकिन आपके लिए काउंटडाउन बिगिंस होता है संडे शाम तक, जहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि मैंने ग्रोसरी में इतना खर्चा किया, फ्यूल पे इतना खर्चा किया, ये बिल्स पे किए, वो बिल्स पे किए, यहाँ गए वहाँ गए. बट क्या आपने इसमें अपना कहीं पे थोड़ा सा टाइम निकाला या ऐड किया कि नहीं किया? बस इन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए आपकी रिमाइंडर क्लॉक मैं कशिका आ जाती हूँ 12 बजे तक स्टूडियोज़ में. मंडे टू फ्राइडे 10 से लेके 12 बजे के बीच में कशिश फूड के सौजाने से आपके लिए ये मुमकिन हो जाता है. कैसा गया आपका वीकेंड? क्या क्या किया आपने इस वीकेंड पर? बताइए बताइए. लेकिन हाँ, मैंने तो बहुत कुछ किया. ऑफ कोर्स आई वेंट एंड सॉ द ब्यूटीफुल कॉन्सर्ट ऑफ राहत फतेह अली खान जी. क्या मेस्मराइजिंग अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस. यू नो, टू वॉच लेजेंड्स लाइव एक अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है कि नहीं? चलिए इसी नोट पर बस थोड़ी देर बाद हम अपने लीगल एक्सपर्ट्स की टीम को, यानी लीगल जो हमारी एसोसिएट्स की टीम है, उनमें से किसी को बुलाएंगे टेलीफोन लाइन पर. लेकिन आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं. 5599 पे आप ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं. आई मेक श्योर दैट राजी उसे आंसर ज़रूर करें. सो वेलकम टू माय टाइम मेरे साथ काशिका के साथ.
0: बचाओ क्या?
10: वैसे आज आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू एज वेल. आज आप अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं विद नॉन अदर देन कृति सानोन. क्या कमाल की हम्बल एक्ट्रेस हैं ये. इनसे एक बार नहीं, 2-3 बार मेरी मुलाकात हो गई एंड शी इज़ लाइक वाओ. मतलब आप एक वो ऑरा होता है ना किसी स्टार में, एक हम्बलनेस होती है किसी स्टार में. दैट इज़ द नेम फॉर कृति सानन.

0: Experts Adda.
1: एक्सपर्ट्स अड्डा में मैंने राज प्रदीप सिंह जी को फ़ोन लगाया है. मुझे लगता है काफ़ी दिन से राज जी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक सवाल आया है एंड आई एम ट्राइंग टू सी इफ राज जी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी टेकिंग माय कॉल और नॉट. सो अभी मैंने राज जी को फ़ोन लगाया एंड देखते हैं उठाते कि नहीं. राज जी को फ़ोन लगा दिया. सवाल जो मेरे पास आया है दरअसल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. देखिए, स्टूडेंट्स के बारे में बातचीत हो रही थी और स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया के बारे में आपने लिख के भेजा है एंड व्हाट्स द प्रोसेस एंड गुड कोर्सेज. तो आपका सवाल जो है मैंने डेफिनेटली राज जी तक पहुँचाना है एंड आई एम वेरी कीन. 1149 आपका टेक्स्ट आया है एंड आई एम वेटिंग फॉर राज जी टू कम ऑन लाइन. एंड हेलो
2: कशिका जी, मॉर्निंग, हाउ आर यू?
1: गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं आप?
2: वेरी गुड, जस्ट केम आउट ऑफ द मीटिंग एंड आई एम स्टेड अवे विद यू. वेरी गुड,
1: थैंक यू सो मच. मेरे पास जो सवाल आया है वो सवाल है सर स्टूडेंट वीजा फ्रॉम इंडिया के बारे में एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट डू यू थिंक कुड बी सम गुड कोर्स.
2: देखो, जैसे आपको पता एफटीए हुआ है एंड यू नो लाइक इमिग्रेशन को काइंड ऑफ ये है इंस्ट्रक्शंस और यू कैन से देयर एडवाइस कि भी ज़्यादा से ज़्यादा जो मास्टर डिग्री की कोर्सेज हैं, बैचलर डिग्री की कोर्सेज हैं, ग्रीन लिस्ट के जो कोर्सेज हैं वो स्किलफुल लोग कंट्री के अंदर आने चाहिए. तो हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट आपको पता है वो स्किल्ड लोगों से भरा हुआ है. तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको 2 साल का 3 साल का 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ यू नो ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, फिनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छी ऑप्शंस हैं. और आपको पता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेटवर्किंग है, वो आजकल काफी डिमांड में है. तो वो बहुत सारे कोर्सेज हैं न्यूजीलैंड में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, पॉलिटेक्निक्स के पास, जो पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं. मीन्स अगर वाइफ पढ़ रही है तो हस्बैंड ओपन वर्क वीजा पे प्लस बच्चे स्टूडेंट वीजा पे, और अगर वाइफ अगर हस्बैंड पढ़ रहे हैं तो वाइफ ओपन वर्क वीजा पे. तो वो कोर्सेज हैं 1 से 1.5 साल के कोर्सेज, उनमें दोनों ऑप्शन है, फुल टाइम स्टडी, फुल टाइम वर्क, जैसे पीएचडी में होता था पहले, तो मास्टर डिग्री में भी अलाउड है ये. एंड फुल टाइम स्टडी एंड पार्ट टाइम वर्क मींस 25 आवर्स पर वीक. और साथ में उनको जैसे ही वो कंप्लीट करते हैं 3 साल का पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीजा मिलता है. और जैसे आपको पता है कि अब इमिग्रेशन की पॉलिसी अगस्त में नेक्स्ट मंथ चेंज हो रही है. इफ यू गॉट अ मास्टर डिग्री इट मींस यू विल क्वालिफाई स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस वीजा विदाउट वर्क एक्सपीरियंस. इट मींस वो जो आपका 3 साल का ओपन वर्क वीजा होगा उसमें जब भी उनको स्किल्ड पोजीशन मिलेगी वो स्टेट अवे रेजिडेंस वीजा अप्लाई कर सकते हैं. तो जो मास्टर डिग्री सेम ऐसे ही बैचलर डिग्री वाले हैं उनका भी ऐसे ही है कि 3 साल पढ़ेंगे, 3 साल का उनको पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीजा है. न्यूजीलैंड की बैचलर डिग्री है तो सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंस वीजा. और कई चीजें ऐसे हैं जैसे काफी लोग बैचलर डिग्री वहां पे की हुई है या इवन पॉलिटेक्निक के डिप्लोमाज उन्होंने किए हुए हैं, तो हम उनका क्रॉस क्रेडिट यहाँ करा के तकरीबन 2 साल की भी यहाँ बैचलर डिग्री है और 1.5 साल का और 1 साल की भी 1 साल का क्रॉस क्रेडिट यहाँ पे मिल जाता है, तो वो भी शॉर्ट हो जाता है. और उसके अंदर भी ऐसी जब आपको पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीजा मिलता है तो आपके पार्टनर को 3 साल का पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीजा. इंडिया से हम काफी बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन्स यहाँ पे कर रहे हैं, बैचलर ऑफ टीचिंग में कर रहे हैं, जो ग्रीन लिस्ट कोर्सेज हैं जिसमें पीआर का पाथवे काफी इजी है. तो इसके लिए वो हमारा कॉन्टेक्ट आपको पता ही है. दे नीड टू कॉन्टेक्ट अस, अवर ऑफिस हियर इन ऑकलैंड, हैमिल्टन और इन इंडिया, और अब तो हमारा श्रीलंका में भी ऑफिस है.
1: आप पहुंच सकते हैं 09279-9439 इज द मैजिक नंबर जहां लीगल एसोसिएट्स की टीम से आप संपर्क कर सकते हैं. legalassociates.co.nz इनका वेबसाइट एड्रेस है. थैंक यू सर एंड अगले हफ्ते आपसे फिर बात होगी.
2: थैंक यू कशिका जी, हैव अ गुड डे.
1: यू टू, बाय.
0: My time with Kashika.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं.
4: Lady.
0: Unfiltered with Sandy and Rusbe. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: And if you're just joining us after the break, we're talking about holy $10 deals on Uber Eats. Find $10 ding dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
5: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki. All together Auckland.
6: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
7: We've got double glazing.
6: Have you still got that cold, damp feeling?
8: Yeah, we do.
6: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
10: क्यों? क्या हुआ?
9: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
11: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. दैट्स 0800-564-424.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
11: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
12: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
11: Available at selected branches. T's and C's apply.
13: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
4: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.

0: ऑफिस शाउट आउट की जब मैं बात करती हूँ तो भाई आज मेरे पास ऑफिस शाउट आउट में जेबल आपका मैसेज आया हुआ है एंड थैंक यू सो मच. यू आर लिसनिंग टू मी फ्रॉम एयर पार्क ड्राइव मैंगरी. थैंक्स अ टन आपके मैसेज के लिए. एंड या कभी कभी जब नए टेक्स्ट आते हैं या नए लोग मैसेज करते हैं दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लेकिन अभी के लिए एक बात बता देती हूँ, एक ऐसे कलाकार इसी आने वाले सैटरडे के दिन आपका दिल लुभाने वाले हैं. अगर आप फैन है गरबा के तो ये होने वाला है बेलोटिस प्रोडक्शंस श्री इवेंट न्यूजीलैंड विनय मेहता प्रांची ग्रुप आपके लिए राज गढ़वी लाइव लेकर आने वाले हैं एट द महात्मा गांधी सेंटर. अब ये महात्मा गांधी सेंटर में आप पहुंच सकते हैं. events.tickets.co.nz के जरिए टिकट्स भी बुक कर सकते हैं. सो अपनील शाह का नंबर है 0224394736 पर, जहां वो वन नाइट वन सेलिब्रेशन और काउंटलेस मेमोरीज क्रिएट करने में इस समय व्यस्त हैं.
1: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
0: इस गाने को सुनने के बाद ऐसा ही लगा कि अरिजीत सिंह जो है वाकई ही इज बैक.

एक बात तो है कि हैवी रेन और जो थंडर स्टॉर्म्स हैं नॉर्थ आइलैंड में कल से जो हैं वो बढ़ते चले गए. फोरकास्टर्स ने कहा है कि एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड के कुछ पार्ट्स में जहां माइनस में टेम्परेचर जाने वाला है. और ये भी पता चल रहा है दैट कुछ शावर्स जो हैं आज सुबह ज़रूर पड़ सकती हैं. लेकिन मेट सर्विसेज का यही कहना है कि मॉडरेट से रिस्की थंडर स्टॉर्म्स जो है नॉर्थलैंड और ग्रेट बैरियर आइलैंड की तरफ पड़ सकते हैं और जो बारिश है और हवाएं जो हैं वो भी बढ़ सकती हैं. ये जो है ये प्रोग्रेस जो हुई है ऑफकोर्स ऑकलैंड में जहाँ पर यू नो जो मैच हो रहा था जो प्रीमियर लीग के साथ जायंट्स के साथ, तो वहाँ पे भी जो बारिश थी वो कम हुई और फोरकास्ट जो था हल्की हल्की बारिश का वो चलता चला जा रहा था. मोस्टली संडे का दिन ऐसा ही निकला. लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ, वैसे अगर मैं ठंड की बात करूँ, ये फ्रीजिंग हवाएं जो हैं ये एंटार्क्टिक से आ रही हैं और दे विल बी देयर टिल दिस कमिंग वेडनेसडे. सो द कोल्डेस्ट स्पॉट इन द कंट्री इज़ गोइंग टू बी माउंट कुक, जहाँ पे जो टेम्परेचर है गिरने वाला है अराउंड -9 degrees, और टोकोरोआ और साथ में तो मारानोई में भी -5, और टापो एंड क्राइस्ट चर्च विल बी अराउंड -4. माई गॉड, ये सोच के भी ठंड लगती है ना. The beat of Bollywood. World's best, हमारी good brand.

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बातें करें तो ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर हमें कभी कभी कुछ अमेजिंग बातें पता चलती हैं और साथ में जब हमें ये भी पता चलता है कि कुछ खास बॉलीवुड में हो रहा है एंड दैट्स एक्चुअली गेटिंग यू नो सम काइंड ऑफ अ बैकिंग फ्रॉम द बॉलीवुड स्टार्स. ऐसे में शबाना आज़मी को पता चला उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया जब वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गई हुई थी. लेकिन वो डेफिनेटली यू नो ये बॉलीवुड में बहुत बहुत बहुत बड़ा आई कैन से दैट थिंग्स जब होती है. लेकिन एक विक्रांत मासी की मैं भी काफ़ी अच्छी बड़ी फ़ैन हूँ और वो अब कोलैबोरेट करने वाले हैं विद नन अदर दैन अजय देवगन. अब ये है चौहान. इट्स अ वेरी नाइस मूवी जो बहुत सारा डिस्कशन इसका हो रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू पुट सम कॉन्वर्सेशन अक्रॉस विद द जेन ज़ी. ओके. लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेस विक्रांत मैसी जो हैं इसमें भाग लेने वाले हैं इन अ नेवर एवर सीन बिफोर अवतार ऑफ हिज, जहाँ एक्शन थ्रिलर एक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है और एक ग्रे कैरेक्टर जो हैं वो अदा करने वाले हैं और उनका टशन होने वाला है विद नन अदर देन अजय देवगन. बॉलीवुड के सोर्सेज के अनुसार पता चला है दैट जैसे ही उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी ना उन्होंने कहा ओ माय गॉड, अजय देवगन के साथ उनको काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. चौहान जो है ये अराउंड अक्टूबर के आसपास जो है ये कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और अगले अक्टूबर तक ये फिल्म ख़त्म भी हो जाएगी. भाई ड्रीम डायरी, कोई सवाल है, कोई ड्रीम है तो मेरे साथ आप कॉल करके 800 00 हम पर बात कर सकते हैं, 5599 पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं.
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने. हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने.
3: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
5: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
6: Join our tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
6: join our tribe!
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: अब ये ड्रीम काफ़ी हैरत अंगेज ड्रीम है. द रीज़न इज़ कभी मैंने वैसे सुना नहीं था बादाम आमंड्स. तो अगर आप ड्रीम कर रहे हैं अबाउट आमंड्स तो ये कह सकती हूँ दैट आपकी जो एक आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बादाम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये फीलिंग होती है जहाँ पे आप कुछ अफोर्ड कर सकते हैं और भी. और ये इंटरेस्टिंगली आप एक शायद क्वालिटी लाइफ, सब्सटेंस और रिचनेस जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू ड्रीम ऑफ अ चॉकलेट जिस पे बादाम लपेट कर आया है, देन यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ विद अ मोर बिगर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब्सटेंस, रिचनेस, जिसके लिए मैं कह सकती हूँ ओ माई गॉड विथ चॉकलेट एंड बादाम की आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं सॉरी, आई कैन से जस्ट अ चॉकलेट वुड बी फैबुलस. तो इनका ड्रीम था कि ये बादाम जो है इनको सपने में आया था, और जब ये उठी तो उनको ऐसा फील हुआ कि अभी बादाम इन्हें खा लेना चाहिए. ऑल राइट, बट दैट्स फाइन, बादाम सपने में आ रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन. हो सकता है आपका कोई ऐसा यू नो डिजर्विंग, आपका एक पहले कुछ रह गया हो जो अब पूरा होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है. चलो, ऐसे में आपने अगर यू नो हमारे साथ सपोज़ कीजिए कम्युनिटी में कुछ नहीं शेयर किया, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. और ये हमें buzz@humfm.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. दिल से

ये पर्टिकुलर फ्रेज जो है ना वो बहुत ज्यादा हिट हो गया था, और प्रोबेबली ये सॉन्ग 1996 के बॉलीवुड का जो था फ्रॉम द मूवी रक्षक सुपर टूपर हिट हो गया था। सुनील शेट्टी करिश्मा कपूर इस फिल्म में थे, और इस आइकॉनिक ट्रैक को जो था कंपोज किया था नान अदर देन आनंद मिलिंद ने। हाई एनर्जी रोमांटिक ट्रैक, और विनोद राठौर सपना मुखर्जी ने इसे गाया था। और स्पेसिफिकली इस फिल्म ने, पर्टिकुलरली इस मूवी ने करिश्मा कपूर को एक ग्लैमरस वेस्टर्नाइज्ड अपीयरेंस में दिखाया, और 90s के यू नो बॉलीवुड के क्लासिक सॉन्ग्स में से और डांस सीक्वेंस में से अपबीट रिदम में से ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो था वन ऑफ द बेस्ट वॉज ऑफ 90s।

0: पेट्रोल पंप देखते ही टेंशन हो जाती है। अब टाइम है उसके पास से मुस्कुराते हुए निकलने का। टाटा नैनो ऑटो ग्रुप ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट में ब्रांड न्यू ईवीज और हाइब्रिड्स सिर्फ 29,990 से 7 साल की वारंटी के साथ। अवार्ड विनिंग लीप मोटर बाइक एसयूवीज एंड द फेमस डोंगफेंग रेंज। ट्रेड-इन्स वेलकम। फाइनेंस भी अवेलेबल है। फ्यूल पर पैसे बचाइए। ग्रेट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स। विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाटा नैनो। फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
1: Time check. Hum News brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. There's concern that New Zealand continues to lag behind Australia on rooftop solar despite similar hours of sunshine. Roughly just 4% of Kiwi households have panels installed, compared to around a third over the Tasman. Auckland Uni solar expert Ralph Kearney says the Aussies have more financial incentives.
3: Federal government provided discounts to reduce the installation costs, and there were some state programs which offered rebates and interest-free loans.
2: An Auckland councillor believes dog control officers are worth their weight in gold. Registrations are due by Friday for dog owners before late fees push the price up to at least $171, maybe higher. Josephine Bartley says it's a win-win.
4: They help keep the area safe by dealing with roaming dogs, educated, irresponsible dog owners. So there are benefits to everyone.
2: And in the UK, relief for passengers needing to use the loo at Gatwick Airport. Long queues expected to clear now the water supply is back up and running. It's been disrupted for several hours due to a power outage at a local treatment plant. It also forced the closure of all bars and restaurants at the airport too. In sport, another medal for Kiwi swimmer Erica Fairweather at the Glasgow Commonwealth Games, this time in the 1500 metres freestyle. On the netball court, the Silver Ferns passed their first big test. They beat Jamaica 53-48. Coach Dame Noeline Totua pleased on Sky Sport.
5: For our own confidence, probably knowing that we're heading in the right direction, knowing that there's more that we can do to keep possession of the ball, but it's massive for us in regards to that overall performance and obviously the win.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
6: Hum par shok soochnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
7: सूचित किया जाता है कि रवि रवि बा फिजी के स्वर्गीय अरमोगम रेड्डी की पुत्री सिमला लातुका फिजी के स्वर्गीय यंकतेश परमल अर्जुन सामी की पत्नी पापाटोय के अरविंद सामी की मां शेख मनोर सामी की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज अभी 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशन में किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 021-0437-348 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, रवि रवि बा फिजी के स्वर्गीय अरमोगम रेड्डी की पुत्री सिमला लाउटुका फिजी की स्वर्गीय यंकतेश परमल अर्जुन सामी की पत्नी पापाटोय के अरविंद सामी की मां शेख मैनर सामी की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार बस अभी थोड़ी देर में एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशन में शुरू होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 021-0437-348 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि शेरो संजेश और शीमल कुमार के पिता सुशीलावती कुमार के पति सांबेतु नांदी फिजी के भूतपूर्व निवासी वैली कंक्रीट लेयर्स के सत्येंद्र कुमार उर्फ बादू की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे किया जाने वाला है एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में। ज़्यादा जानकारी के लिए 021-0244-5080 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, शेरों संजेश और शीमल कुमार के पिता सुशीलावती कुमार के पति सांबेतु नांदी फिजी के भूतपूर्व निवासी वैली कंक्रीट लेयर्स के सत्येंद्र कुमार उर्फ बादू की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-0244-5080 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
6: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम की जानकारी दे तो दी हाइज ऑफ 13 ओवरनाइट टेंपरेचर 4 आज का फोकस बताया जा रहा है. ये शावर्स जो है दोपहर के समय डेवलप होती चली जाएंगी. साउथ वेस्टर्न की हवाएं जो हैं बढ़ रही हैं. इट फील्स लाइक 8 डिग्रीज राइट नाउ. 5:33 पर सनसेट बताया गया.
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर लिव बेटर.
2: मिड मॉर्निंग मजा.
3: Ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठे क्योंकि आ रही है
2: My Time with Kashika.
1: माई टाइम लेकर मैं काशिका हाजिर हूँ. 12 बजे तक 11:05 हो रहे हैं. और अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो माई टाइम आपके लिए कशिश फूड्स के सौजन्य से हम लेकर आ जाते हैं. वैसे आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको बता देती हूँ कि आप अपना बर्थडे कृति सानन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. और अब ऐसे में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं नन अदर देन संजीव जी. अब संजीव जी कौन है आप सोच रहे होंगे. तो भाई आपको पता है रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स. हाँ, तो रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स के जो कर्ता धरता है संजीव जी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. अपनी फैमिली स्टाफ और जो कस्टमर्स हैं और विनी आप भी हैं, आप भी सभी लोग इन्हें विश करना चाहते हैं. एंड थैंक यू विनी आपका मैसेज जो आया है. सो संजीव जी आज बर्थडे की सेलिब्रेशंस कहाँ हो रही हैं चलिए हमें बताइए. वैसे सुपर से डुपर तो आप हमारे साथ स्पॉन्सर करते ही चले आ रहे हैं. और राइट, वैसे कृति सानन भी इनके साथ मेरी आइफा पे मुलाकात हुई. इनके साथ बहुत बहुत सारी बातें हुई तो मैंने एक फ़ोटो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है. हैव अ लुक एट इट एंड स्टे ट्यून्ड कीप हमिंग.

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: You know, ये सर्दी का महीना होता है ना, ऐसे में एक स्किन जो है एक अलग सी टाइटनेस इसमें आने लगती है. अब ये टाइटनेस होती है स्पेशली जब आप शावर लेते हैं उसके बाद, तो ये आप सीजन पे ब्लेम कर सकते हैं. एंड द एक्सपर्ट्स आर सेइंग के दिस इज समथिंग विच वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. ये ड्राइनेस होती है जो एक्सटर्नली और इंटरनली होती है. आप विंटर के कोल्ड टेम्परेचर्स में आर्टिफिशियल हीटिंग और बाइटिंग विंड्स, ये थैंक्स टू इन सबको कह सकते हैं आप. हर रोज़ हम वॉश करते हैं, एक्सपोज करते हैं अपने आप को डिटर्जेंट्स के साथ, और जिससे क्या होता है जो स्किन की जो एक बायलेयर होती है वो जो निकलनी शुरू हो जाती है. और इसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर है बहुत जल्दी निकलता चला जाता है और अपनी जगह पर टिकता नहीं है. इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल हीटिंग है, आपका वेदर है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, कभी कभी हेल्थ भी, यू नो, ये इस तरह की चीज़ें इस पर रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं. और स्किन जो है ये प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा लिपिड नहीं करता. इससे क्या होता है कि एक जो बायलेयर होती है वो थिन होती चली जाती है, मॉइस्चर एस्केप होता चला जाता है, आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन ज़्यादा आने लगता है, फ्लेकिंग ब्रेकिंग बढ़ने लग जाता है. विंटर में क्या होता है, इट्स अनअवॉइडेबल, वी नो दैट. और एक स्किन बैरियर जो होता है वो आपको एक कम्फर्ट जोन पे लेकर चला जाता है, हाइड्रेट करना स्किन को रेडियंट बनाना. एंड इसके साथ साथ स्किन केयर के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं आपके बेटर ऑफर करने लग जाते हैं. अब एक ख़ास चीज़ जो है, एक आइडियल वे जो है, अगर हम कहना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर सीरम होता है, एक बॉटल के अंदर सीरम जो आपको आता है वो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, एक कंफर्ट जोन में आपको लेके चला जाता है, एक रिपेयर मोड में आ जाता है. और ऐसे में जब आप एक सेमी जेल शीट मास्क अपने स्किन पे, बॉडी पे अगर आप लगाते हैं, अपने फेस के ऊपर लगाते हैं, तो ये आपका जो कॉलेजन होता है ये हेल्प करता है आपकी स्किन को रिवाइव करने के लिए. ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं अगर आप इन्हें कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे, आप नोट करेंगे कि आपकी स्किन डेफिनेटली बेटर फील करने लग जाएगी. वो जो एक ड्राइनेस वगैरह होती है ना वो डेफिनेटली कम होती चली जाएगी.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
7: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
8: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
0: Word story.
1: All right, my six word story is something different. Okay, इन्होंने लिख के भेजा है. Chronic smoker reborn as a tobacco tree. Really? Oh my God! I've never heard of a tobacco tree. Is it true? मालूम नहीं. मगर chronic smoker reborn as tobacco tree. कितना सिगरेट पीते होंगे आप? Oh my God! But you have to be very, very careful. You know, it's very injurious to health, isn't it? चलिए कोई बात नहीं. यहाँ तो मैं अपना ज्ञान नहीं देने वाली हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि ये कितना ज़्यादा हानिकारक हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हो सकता है. टॉप हिट आपके लिए लेकर आती हूँ, उसके बाद आपसे और बातें करती हूँ.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

सर जब होता है ना कि इस तरह के गाने बजते हैं तो एक अपने आप ही बीट बनने लग जाती है, लेकिन एक जगह तो भाई टू मच हो गया। अब ये टू मच हो गया कहाँ पे कि स्टाफ जो है ऑकलैंड हॉस्पिटल के, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ रिपोर्ट्स ऐड करी हैं जहाँ पे उनके हिसाब से फ्लीज इंसेक्ट्स ये सब बहुत ज़्यादा हैं अभी इस समय हॉस्पिटल में। और एक पेशेंट तो लगभग शायद शावर के टाइम गिर ही पड़े थे। एक पेशेंट जिनका नाम क्लॉडिया है, वो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में थी एंड उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। उन्होंने क्लिनिकल केयर की बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, लेकिन उन्होंने अपनी सीरियस कंसर्न बताई अबाउट दी हॉस्पिटल कंडीशंस और उसके रिसोर्स के लिए। इन्होंने बताया कि 10 साल तक वो यूनाइटेड नेशंस में थे और कई जगह ऐसे वो गई हैं जहाँ पर थर्ड वर्ल्ड का एक कलर उन्होंने देखा है। बट शी सेड दैट जब ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के शावर में जारी रिकवरी वार्ड था वहाँ पे गई तो वहाँ बहुत छोटे छोटे कॉकरोचेस उनको वहाँ पे नज़र आए। उन्होंने कोशिश की उन्हें पैर से मारने के लिए, लेकिन उसके बाद वो फिर गिर पड़ी। उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और अराउंड 10 स्टाफ मेंबर्स जो थे वहाँ पे आए और उनको लेके गए MRI के स्कैन के लिए। फॉर्चुनेटली उनके हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन वॉज कॉकरोचेस। जब इन्होंने कहा कि अपने आप को मॉनिटर किया, सब कुछ सब सही था, लेकिन स्टाफ ने बताया एक तो स्टाफ में शॉर्ट सप्लाई, प्लस ये जो है पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स जो थे जो वार्ड में होते हैं वहाँ पे, उनकी फिजियोथेरेपी ने बताया कि ज़्यादा लोग शिफ्ट पे काम नहीं कर रहे। तो एक नर्सिस का ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि ये एक जो इंक्रीज़ है फ्लीज का, कॉकरोचेस का, बाकी इंसेक्ट्स का विद इन द वार्ड, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कई जगह पे कार्पेटिंग जो है वहाँ नहीं है, लेकिन ये ब्रीड कर जाते हैं। जब फ्लीज जब ब्रीड करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होने लगते हैं। ये अनहेल्थी एनवायरनमेंट जो है ये दरअसल काफ़ी हद तक लोगों को परेशान कर रहा है। सो पेशेंट्स जो है अपने आप को एक अलग कमरे में लेके जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन जो है, अब इट्स एक्चुअली देखा जाए तो सीरियस। अब बताइए एक पर्टिकुलर पेशेंट के जिसका केस मैं आपको बता रही हूँ, उनके साथ बेचारी के साथ क्या हाल हुआ। वो तो फॉर्चुनेटली God was with her, I can say that. लेकिन जो हेल्थ न्यूजीलैंड के ग्रुप डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस जो माइकल, उन्होंने बताया कि काफ़ी लार्ज कैंपसेस में फ्ली एक्टिविटी टाइम टू टाइम होती रहती है। इन्होंने बताया 142 फ्ली रिलेटेड इंसिडेंट्स जो है रिपोर्ट किए गए थे एट द साइट। इनको बहुत एक्टिवली पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के जरिए सिग्निफिकेंटली कम कर दिया गया, बहुत ज़्यादा। और ये ऑपरेट करते हैं 24/7, 7 days a week। अब अच्छा है, वेरी गुड, बट डू यू स्टिल फील, कभी आप कभी गए हैं उस हॉस्पिटल में जहाँ पे आपने ऑकलैंड हॉस्पिटल में ये फ्लीज को या फिर कॉकरोचेस को देखा है, अनुभव किया है? यू हैव टू ब्रिंग इट अप टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ डेफिनेटली।

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाँ,
1: अद्भुत।
3: भाई अद्भुत बात तो ये है कि एक ऐसा आर्टिस्ट आ रहा है यहाँ पर जो मैं कह सकती हूँ कि इसके इनके नाम से एक सेंसेशन है, एंड दैट्स नन अदर देन करण औजला। ये अपना पी पॉप कल्चर लेकर स्पा करीना में 25 अगस्त के दिन, आप देखिए काउंट डाउन बिगिंस, एक स्पेशल गेस्ट है इनके साथ इक्की जो है ये आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। इसका डबल पास अगर आप जीतना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, के ए लिखना है। और करण औजला का रियल नेम क्या है, क्या आपको पता है? इनका रियल नेम लिखिए, अपना नाम लिखिए, हम तक पहुंचा दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है आज, कल थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 5599 पे के ए लिखना है, करण औजला का रियल नेम लिखना है, अपना नाम लिखना है, पहुंचा देना है हम तक। आपकी एंट्रीज जो हैं हम इनवाइट कर रहे हैं और ड्रॉ होगा, शायद डबल पास आप जीत सकते हैं। हम rova.nz के ज़रिए आप क्लिक करिएगा या livenation.co.nz के ज़रिए। याद रहे स्पा करीना में ये अपना रंग जमाने के लिए आने वाले हैं, सो डेफिनेटली try and be there for his most electrifying live performance. और अब ये डबल पास जीतने के लिए टाइम शुरू होता है एकदम से अभी।
0: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Kya baat hai us khane mein jo pure ghar ko dining table par le aaye? Wo khushbu aur wo asli masalo ka swaad. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken core. या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
12: Jen didn't think she needed a DVS system.
13: Oh, I've got insulation in that.
12: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
13: Ah, yeah.
12: So Jen got DVS Home Ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
14: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओल्टुगेदर ओकलैंड।
15: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
16: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.

जब मैं बात करती हूँ रेस्क्यू मी रिसाइकल मी, तो आपको एक बात बता देती हूँ, पैन फ्राई लेफ्ट ओवर अगर आपके पास मैश्ड पोटैटोज़ हैं तो आप इन्हें चीज़ और हर्ब्स के साथ क्रिस्पी पोटैटो केक्स आप इनको बना सकते हैं. इनको इनफैक्ट आप क्या कर सकते हैं, ब्रेड में लगा के स्टफिंग बनाकर, और जैसे आलू की सब्ज़ी भी होती है, बस इसकी स्टफिंग बना के ग्रिल कर लीजिए टोस्ट को, अमेजिंग रहता है भाई. ऐसा मुझे याद है, क्यों, क्योंकि मेरी खुद के मम जो थी ना, उन्होंने क्या किया था, जब भी कुछ सब्जी वब्जी बच जाती थी वो उसकी ब्रेड में वो बना के, वो पुराने ज़माने में एक वो होता था ना, दूसरे तरह के टोस्टर होते थे जो गैस पे लगा देते थे, ऊपर से क्लिप कर देते थे, एक टोस्ट एक बारी में बनता था है. उसमें आप पहले मक्खन लगा देती थी, वो फिर उसमें कोई भी सब्जी लेके ऐड कर देती, एंड दैट वाज इट. मैं कहती थी भाई और कोई नाश्ता आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. ये चीज़ें जब होती हैं ना तो एक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है, बट टुडे आई रियलाइज हर वैल्यू, व्हाई डिड शी यूज टू डू दैट. ओके, अभी मैं आपकी वैल्यू बता देती हूँ कितनी बढ़ गई. आपने सही कहा सिमरन, लेकिन आपने के ए नहीं लिखा, करण औजला का शॉर्ट फॉर्म शारन आपने भी, एंड अनुपम आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर लिया, साथ में कृणाल आपका नाम मैंने ऐड कर दिया, हरदीप मैंने आपका नाम भी ऐड कर दिया, एंड अजय आपका नाम भी मैंने ऐड कर दिया, प्रशांत मैंने आपका नाम भी ऐड कर दिया. एंड आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि दरअसल इनका नाम करण औजला का जस करण सिंह औजला है. अब उन्होंने करण औजला के लिए जस हटा दिया और करण औजला कर दिया, इतना सिंपल. अब जब कनाडा में रहकर आए ना, वो कनाडा में, वहाँ पे वैसे भी लोग जब बाहर जाते हैं ना उनके नामों के पीछे नाम ही चेंज हो जाते हैं. जैसे आई कैन से दैट माई हस्बैंड ऑफ कोर्स हिज नेम इज़ प्रभजोत, बट हिज नाम इज़ प्रभु, तो वे शॉर्ट फॉर्म बना दिया. अब ऐसे कितने नाम होते हैं जो आप देखो, अच्छा सैंडी का नाम ले लो, संदीप सैंडी, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म नामों के बन जाते हैं. तो सही आपने पकड़ा, जस करण सिंह औजला, ओके दैट्स द नेम. दिल से दिल तक.

वैसे थ्रोबैक की तरफ जाने से पहले मुझे आपको रिमाइंडर बताना है, मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक जो हूँ, ऑकलैंड रामायण संस्था जो है अपना मासिक कथा जो है यह कर इसे करने वाले हैं इस आने वाले फ्राइडे के दिन 7:15 बजे ARST कम्युनिटी हॉल में। आप ज़्यादा जानकारी के लिए 02267052271 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी आने वाले सैटरडे और संडे के दिन अखंड रामायण पाठ जो है ये होने वाला है एट द श्री राम मंदिर हेंडरसन। आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है। सुबह के समय जो है ये बहुत खूबसूरती के साथ वहाँ पर पूजा है, आरती है और रामायण का पाठ 8:45 पे स्टार्ट होने वाला है। अगले दिन रामायण का पाठ जो है सुबह 10 बजे ख़त्म किया जाएगा। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट श्री राम लीला जो है 8 अगस्त के दिन लेकर आने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको एक कम्युनिटी के लिए 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट में इनवाइट कर रहे हैं 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त के दिन बकिनहेड स्काउट्स हॉल में। और आप के स्किल्स जो हैं अगर आपके पास हैं कैरम की तो आपको पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है। आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक के पेज पर आप पहुँच सकते हैं या 02109085067 पर संपर्क

इस काशी का साइनिंग ऑफ बाय सेइंग हम साथ साथ हैं, कहीं पे भी जाएं हमको साथ लेते चले जाएं। रोवा ऐप के जरिए आप हमें दुनिया में कहीं पे भी चाहें तो सुन सकते हैं। एक हमका परिवार है आप, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ये आपके लिए एक हमारा एक जो कनेक्शन है बना रहे। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज। बाय।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: कॉफी, द यूजुअल?
10: हाउ अबाउट द अनयूजुअल?
11: कांट वेट फॉर कॉफी? देन डोंट। Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
15: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognized qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time,